श्रोताओं सुप्रभात। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। आज शुक्रवार है, शक सम्वत 1948 के ज्येष्ठ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 5 जून सन 2026। सुबह के 5:58 हुए हैं। आज की पहली सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम व्यू पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। सुबह के 6 बजने को है समाचार। कुछ ही पलों में हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरण अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आज का सुविचार। आकाशवाणी जबलपुर से अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं मातृवंदना।

समूह स्वरों में आप सुन रहे थे रमेश यादव का लिखा ये देशभक्ति गीत। और अब कार्यक्रम का पहला भक्ति गीत स्वर है अनूप जलोटा का।

भजन में भाव हैं, जैसे जैसे मनुष्य की अवस्था बढ़ती है विभिन्न अवस्थाओं में वो संसार के झंझटों में फंस जाता है। केवल एक काम करना वो भूल जाता है, वो है भगवान का नाम लेना, हरि का सुमिरन करना। तो किस अवस्था में कौन कौन से झंझट हैं जिनमें मनुष्य फंस जाता है,

ये भजन आपने सुना मधु मुद्गल की आवाज में। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं पंडित जसराज की आवाज में तुलसीदास कृत ये भक्ति गीत।

0: इस भक्ति गीत के साथ ही आज की वंदना अब संपन्न होती है। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। अब सुनिए चिंतन। आलेख डॉक्टर अंशुजा तिवारी का है और वाचक हैं माधवी येंडे।
1: मानव के लिए आदिकाल से प्रकृति एक जीवनदायिनी माता के समान कृपाकारिणी रही है। ईश्वर ने प्रकृति के उपादानों के रूप में वन, पर्वत, नदी, झरने और सुरम्य वादियां दी हैं। वर्षा के द्वारा संपूर्ण धरती को रसमय बनाती हुई प्रकृति पूर्ण चेतन जगत को प्राणदान देती है। शीतकाल में जमी बर्फ पृथ्वी का रक्षा कवच होती है, तो ग्रीष्म में पकती है अनाज की सुनहरी बालें। समुद्र से उठते वाष्प के कण ही तो बादल बनकर बरसते हैं। ऐसी सुंदर प्रकृति के संरक्षण के लिए मनुष्य क्या कर रहा है? संरक्षण तो दूर, जो संपदा हमें वर्तमान में प्राप्त है उसे विनष्ट करने में हम जी जान से लगे हुए हैं। क्या ये कम चिंता की बात नहीं है? हमने सीमेंट कंक्रीट के गगनचुंबी भवन तान दिए, हमारे बच्चे सूर्य के प्रकाश के लिए तरस गए, संसाधनों से कई गुनी जनसंख्या का विस्फोट हो गया है। वनों की तेजी से घटती संख्या और उतनी ही तेजी से बढ़ते सीमेंट के जंगल, परिणाम स्वरूप वर्षा कम हुई। कम वर्षा के कितने दुष्परिणाम हो सकते हैं, कभी हमने सोचा? फसलों को नुकसान तो होता ही है। नदियों जलाशयों का जल सूख चला है, जमीन का जल स्तर नीचे चला गया है। आज से 20-30 साल बाद हमारी भावी पीढ़ियों को पानी की कितनी भीषण समस्या का सामना करना पड़ेगा, ये तो गहन चिंतन का विषय है। पर्यावरण रक्षा में संसाधन संरक्षण का विशेष महत्व है। भारत जैसे विकासशील देश में एक ओर गरीबी और बेरोजगारी का संकट है, तो दूसरी ओर भविष्य की दूरगामी प्रभाव की दृष्टि से पर्यावरण रक्षा का प्रश्न है। कितने आश्चर्य की बात है कि गंगा जैसी पतित पावनी भारत की जीवनधारा सूख रही है। विशेषज्ञ चिंतित हैं कि कहीं ऐसा दिन ना आ जाए कि गंगा भारत के नक्शे से विलुप्त ही हो जाए। यही हाल अन्य छोटी बड़ी नदियों का है। क्या हमने कभी नर्मदा के घटते हुए पाटों को देखा है? क्या हमने कभी उनके तटों पर हरियाली के घटते अस्तित्व को देखा है? 52 तालों के शहर जबलपुर में ही तालों को पाट पाट कर परिसर बना दिए गए और दुर्गावती की नगरी में 2-4 ताल ही नाम के लिए शेष रह गए। उत्तम तकनीक द्वारा प्रकृति संसाधनों का संरक्षण आज की महती आवश्यकता है, ताकि उनका बहुआयामी उपयोग बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए मानव समाज की उन्नति के लिए हो सके। प्रकृति में स्वयं की रक्षा और पुनर्निर्माण की अद्भुत शक्ति है। उसकी इसी स्वसंरक्षण की विशेषता को जीवित रखना आवश्यक है। मिट्टी, पानी, हवा और वनस्पतियों को उनके सामान्य स्वाभाविक स्वरूप में रखा जाना आवश्यक है, तभी जीव जगत की रक्षा हो सकेगी।
0: आपने सुना चिंतन। आलेख डॉक्टर अंशुजा तिवारी का था और वाचक थी माधवी येंडे। मीडियम व्यू पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

चित्रकूट की महिमा का बखान कर ऋषि वाल्मीकि ने उसे सभी प्रकार से निवास के योग्य स्थान बताया। लक्ष्मण ने पयस्विनी नदी के उत्तर वाले ऊंचे कगार की ओर दृष्टिपात किया, जिसे अपने घेरे में लिए हुए धनुष के आकार का एक नाला था। मंदाकिनी नदी मानव उसकी प्रत्यंचा है और शम, तम और दान उसके बाण हैं। कलयुग के समस्त पाप ऐसे हिंसक पशु हैं जिनका निशाना चित्रकूट रूपी शिकारी कभी नहीं चूकता। जब देवताओं को यह प्रतीति हुई कि वो मनोरम स्थान श्री राम के मन को भा गया, तो वे कोल भीलों के वेश में विश्वकर्मा सहित वहां पहुंचे और पत्तों तथा घास से वहां अत्यंत सुंदर दो कुटियों का निर्माण किया। श्री राम वहां ऐसे अवस्थित हैं मानो स्वयं कामदेव मुनि वेश धारण करके पत्नी रति तथा सखा ऋतुराज वसंत के साथ सुशोभित हैं। देवलोकवासी चित्रकूट आकर अपने स्वामी के दर्शन करते हैं।

आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, स्वर था श्रीकांत पारगांवकर का। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। अब सुनिए कृषि सामयिकी, विषय है सोयाबीन की।

0: आधुनिक खेती।
1: किसान बहनों भाइयों, आज बात होगी सोयाबीन की उन्नतशील खेती की। सोयाबीन की खेती के लिए गर्म और नम जलवायु अच्छा रहता है। इसकी खेती के लिए जो अच्छा तापमान माना गया है वो 26 से 32 डिग्री सेल्सियस है। अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ दोमट मिट्टी, इसमें यदि आप सोयाबीन लगाएंगे तो पैदावार आपको अच्छी मिलेगी। इस मिट्टी का पीएच मान 6 से 7.5 अच्छा माना गया है। हम हमेशा आपको बताते हैं कि मिट्टी की जांच करवाते रहना चाहिए। अच्छे उत्पादन के लिए मिट्टी की जांच बहुत जरूरी होती है। इसका मुख्य उद्देश्य खेत की जरूरत के अनुसार उसे पोषक तत्व प्रदान करवाना होता है, जिससे कि उत्पादन तो बढ़ेगा ही, साथ में आपकी जो लागत है वो कम हो जाएगी। हमारे क्षेत्र के लिए अनुमोदित जो प्रजातियां हैं वो हैं JS 335, JS 9560, प्रतिष्ठा, PK 1024, MAUS 47, NRC 7 जिसे कि अहिल्या 3 के नाम से भी जाना जाता है, MUS 9315, और भी कई प्रजातियां हैं जो कि आप कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्रों से प्राप्त कर सकते हैं। देशी हल या ट्रैक्टर से 2 या 3 बार खेत की गहरी जुताई करके पाटा चलाकर खेत को समतल कर लें। सोयाबीन की बिजाई या बुआई, इसके समय माइकोर 4 किलो प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। यह मिट्टी में जड़ की सतह क्षेत्र को बढ़ाता है, फसलों को अच्छी वृद्धि और उच्च उपज प्राप्त करने में मदद करता है। बीज दर 20 से 30 किलोग्राम होना चाहिए। बिजाई का समय अभी चल रहा है, ये जो जून का पहला पखवाड़ा है इसमें आप शुरू करके जुलाई के पहले हफ्ते तक कर सकते हैं। बीज उपचार के लिए हम हमेशा बताया करते हैं FIR विधि है, जिसमें कि फफूंदनाशी जो कि भूमि जनित और बीज जनित दोनों प्रकार की बीमारियों के लिए रहता है उसका उपयोग करें। आप फफूंदनाशी के रूप में ट्राइकोडर्मा का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद कीटनाशी के रूप में थायोमेथॉक्सम 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से ले लें। आखिरी में राइजोबियम कल्चर को 15 मिलीलीटर नैनो DAP प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से मिलाकर उपचारित करें। सोयाबीन में नत्रजन 20 से 30 किलोग्राम, स्फुर या जिसे हम फास्फोरस कहते हैं 60 से 80 किलोग्राम, पोटाश 20 से 30 किलोग्राम और सल्फर भी इसमें लगेगा 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। खरीफ मौसम की फसल होने के कारण सामान्यतः हम ये देखते हैं कि सोयाबीन को सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। फलियों में दाना भरते समय यदि खेत में नमी पर्याप्त ना हो तो ऐसी स्थिति में 1 या 2 हल्की सिंचाई कर दें। वर्षा जल को नष्ट होने से बचाने के लिए खेत के बगल में एक गड्ढा बनाकर वर्षा जल को एकत्र किया जा सकता है और इस पानी का उपयोग हमारी फसल के लिए आप कर सकते हैं। सोयाबीन की अच्छी पैदावार लेने के लिए खरपतवारों का नियंत्रण बहुत आवश्यक है। सोयाबीन की फसल में नुकसान करने वाले जैविक कारकों जैसे कि खरपतवार, कीट, बीमारियां, इनमें सबसे अधिक खरपतवार ही हानिकारक होते हैं। सोयाबीन में पाए जाने वाले चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जैसे कि बौखना, दूधी, केना, केनी और सकरी पत्ती वाले खरपतवार जैसे कि सांवा, छोटा सांवक, बांस, घास, ये मुख्य हैं। तो इनके लिए डाइक्लोसुलम 84% WDG, यह एक चयनात्मक और अंतः प्रवाही निंदानाशी है। इसका प्रयोग खरपतवार उगने से पहले 10.5 ग्राम से 12.5 ग्राम प्रति एकड़ की दर से किया जा सकता है। इसी प्रकार विजालोफॉप इथाइल 4.68% और इसके साथ साथ फोमेसाफेन 12.5%, जो कि एक बहुआयामी अंतः प्रवाही और चयनात्मक खरपतवार नाशी है, इसका प्रयोग चौड़ी और सकरी पत्ती के खरपतवारों के लिए 2 से 4 पत्तियों वाली अवस्था में 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से करें। क्विजालोफॉप इथाइल 5%, ये भी शाकनाशी अच्छा है, इसका उपयोग सकरी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है और 2 से 3 पत्ती वाली अवस्था में इसे 300 से 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें।
0: सोयाबीन की आधुनिक खेती। कृषि सामिखी में आप सुन रहे थे इस विषय पर जानकारी, प्रस्तुति थी विपिन यादव की। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। कार्यक्रम विवरण।

इस सभा में सुबह 7:20 पर सुनिएगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर। 8:30 पर आनंद उठाइए फिल्म संगीत का। 9:00 लोक संगीत के कार्यक्रम लोक रसधार में आज हम आपको सुनवाएंगे मनीषा जैन के गाए बुंदेली लोकगीत। 9:15 पर गांधी चर्चा हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे और 9:30 से एक बार फिर आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। दस बजकर 5 मिनट पर सुनिएगा वंदे मातरम गौरव गान की 1.5 सदी। 10:10 पर समाचार बुलेटिन विश्व दर्पण हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और 10:20 से आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा।

दूसरी सभा की शुरुआत में शाम 5:02 पर कार्यक्रम युववाणी हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। शाम 5:30 से सुनिएगा फिल्म संगीत। शाम 6:00 आपको सुनवाएंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। मल्लूलाल सेन के गाए बुंदेली लोकगीत आप सुन सकते हैं शाम 6:30 पर। शाम 6:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार हैं मानस राय चौधरी। शाम 7:21 पर किसान श्रोताओं के लिए कृषि जगत कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में औषधीय पौधों का प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के बारे में जानकारी देंगे डॉक्टर ज्ञानेंद्र तिवारी। रात 8:00 सुर्खियों में ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे। 8:15 से आनंद उठाइए फिल्म संगीत का। रात 9:15 पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके मैसेज हमारे गीत। रात 10:00 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा पंडित भीमसेन जोशी का गायन। और रात 10:30 पर होगा फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। वक्त हो रहा है संस्कृत समाचारों का। हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको नरेन्द्रदत्तसेमवालः। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य गुजरातस्य

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में

0: 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज ही दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: योग भोग से भी मुक्ति देता है और रोग से भी मुक्ति देता है, और सबसे अहम बात कि मिनिमम बजट में हेल्दी लाइफस्टाइल का ये सबसे उत्तम उपाय है। इसलिए आपको ये मंत्र याद रखना है, हर रोज योग भगाएगा सारे रोग।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येवेट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने इसके विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा तथा शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की। दोनों नेताओं ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों तथा राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई शोध रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुकरण ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर, कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश फोरम की बैठक आज। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिए निर्देश, समय पर पूरा हो मेट्रो रेल परियोजनाओं का काम। और भाजपा ने प्रदेश के दो और कांग्रेस ने एक राज्यसभा सीट के लिए प्रत्याशी घोषित किए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सबसे पहले हजीरा जाएंगे और औद्योगिक तथा अवसंरचना परियोजना की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरे का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात कर रहे हैं इज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में। पेश है एक रिपोर्ट।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार।
0: प्रदेश आज इंदौर के एक निजी होटल में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश फोरम 2026 की मेजबानी करेगा। ये फोरम मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम द्वारा मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। इस फोरम में लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के 15 देशों के वरिष्ठ राजनयिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये फोरम भारत और लैटिन अमेरिका तथा कैरेबियन क्षेत्र के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को सुदृढ़ करने तथा मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश के प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा,
2: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
0: इंदौर में 9 जून से प्रारंभ होने वाले अंतर्राष्ट्रीय महत्व के ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश शासन की कृषि विभाग के सचिव निशांत परमड़े इंदौर पहुंचे और आयोजन से जुड़े विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। श्री वरवड़े ने होटल शेरिटन, मैरिट होटल और ग्रामीण हाट बाजार सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल संचालन के प्रथम चरण के कार्य पूरा होने के बाद परियोजना के आगामी चरणों के कार्य समय सीमा में पूरे किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय में भोपाल और इंदौर के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजधानी भोपाल और प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र इंदौर में मेट्रो रेल यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग का आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जाए। दोनों नगरों की मेट्रो रेल परियोजना के सभी चरणों के संपूर्ण कार्यों में तेजी से पूरा किया जा रहा है। समग्र प्रगति की दृष्टि से दोनों परियोजनाओं के 2/3 कार्य पूरे हो चुके हैं। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और प्रदेश सचिव रजनीश अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को टिकट दिया है। इन सीटों के लिए नामांकन जमा करने की तिथि 8 जून है। जरूरी हुआ तो 18 जून को मतदान कराया जाएगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल लोकभवन में लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण और आयुष विभाग के साथ चर्चा करते हुए विश्व सिकल सेल दिवस के तारतम्य में सिकल सेल उन्मूलन गतिविधियों को सघनता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज विश्व पर्यावरण दिवस पर भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में 8 श्रेणियों में 11 राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। उक्त पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, सतत विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली औद्योगिक इकाइयों, शैक्षणिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और व्यक्तियों को वर्ष 2024-25 के लिए दिए जाएंगे। आज पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। यह हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1973 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी। इस दिन का उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश में पहली बार नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं को नाम जोड़ने, कटवाने और नाम संशोधन के लिए ऑनलाइन सुविधा दी गई है। इस सुविधा का लाभ लेते हुए कुल 8,317 आवेदकों ने ऑनलाइन आवेदन किया। इन सभी आवेदनों पर नियम के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले की सभी विकासखंड और नगरीय निकाय मुख्यालयों पर 12 से 14 जून तक जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। आगर मालवा जिले में आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान और स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान चलाया जाएगा। डिंडौरी में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। इंदौर में शासकीय सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने की मुहिम में खुड़ैल तहसील के ग्राम गारी पिपलिया में देव धर्मराज मंदिर की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। सिंगरौली कलेक्टर की अध्यक्षता में कल आपदा प्रबंधन कार्य की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने पंचायत विभाग और जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को चमन सालवार का नमस्कार। दोस्तों, नौतपा के दिन गुजर चुके हैं, जून का महीना लग चुका है और इंतज़ार अब अगले मौसम का है, जिसकी वानगी के बतौर कल जबलपुर और आसपास के इलाकों में अच्छी खासी बारिश हुई। भले ही कम अरसा बरसात हुई, लेकिन माहौल तो अच्छा भीना भीना गीला गीला हो गया। और आज सुबह से ही जबलपुर में मौसम बड़ा खुशगवार बना रहा, ठंडी ठंडी बयार चल रही थी और हल्के बादल छाए थे। ये सुबह की बात है जब मैं स्टूडियो आ रहा था। अभी क्या मौसम है मुझे पता नहीं, क्योंकि लंबे अरसे से मैं बाहर नहीं निकला हूँ। और आते समय एक गाना जहन में चल रहा था, तो अब वही गाना सुन लिया जाए।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों आज का जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है। जब भी कोई खास दिन आता है, कोई खास दिवस आता है, किसी की जन्मतिथि आती है, पुण्यतिथि आती है, तो सोशल मीडिया उस दिन के रंग में रंग जाता है। तो आज भी सोशल मीडिया बिल्कुल हरे रंग में नज़र आएगा और जमकर लोग पौधरोपण करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर। और ये जो ज़मीनी हकीकत है, ये आज की सबसे बड़ी चिंता भी है, क्योंकि अब सब कुछ कृत्रिमता के आवरण में उलझ चुका है। और अगर ज़मीनी हकीकत की बात की जाए तो नदियाँ और आसपास का जो माहौल है वो बहुत बुरी तरह से प्रदूषण का शिकार होते जा रहा है। और सुधार की जो गुंजाइश होती है, सुधार की जो उम्मीदें होती हैं, आम तौर पर लोग सरकारी संस्थाओं की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पर्यावरण में हम सारे लोग अहम भूमिका निभाते हैं, हम भी इसी पर्यावरण का हिस्सा हैं। और पर्यावरण के सुधार में और पर्यावरण के बिगाड़ में भी एक आम नागरिक की बहुत बड़ी भूमिका होती है।

दोस्तों याद कीजिए, आकाश की गहराई में पतंग की तरह मंडराते गिद्ध पिछली बार आपने कब देखे थे, या फिर शाम ढले पेड़ों से आते गौरैया के झुंड के कलरव को आपने कब सुना था। आखिर ये दृश्य आज दुर्लभ क्यों हो चुके हैं? इन सारे सवालों का सिर्फ और सिर्फ एक जवाब है, और वो है बिगड़ता पर्यावरण, जिसने सहज ही दिख जाने वाले गिद्धों और गौरैया को विलुप्ति की कगार पर पहुंचा दिया है। विकास की सरपट भागती गाड़ी अपने पीछे प्रदूषण का जो धुआं छोड़ती जा रही है, उसने पर्यावरण संतुलन को विनाश की कगार पर पहुंचा दिया है। दोस्तों, प्रकृति का तरल स्नेह जब धरती की धमनियों में प्रवाहित होता है तो जीवनदायिनी नदियां बनती हैं, और कड़वी सच्चाई यह है कि देश की 70% नदियां आज प्रदूषण की मार झेल रही हैं, और ये उस देश में हो रहा है जहां मां मानकर आदिकाल से उनकी पूजा करने की परंपरा है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा, जो सदियों से मानव के पाप धोते आई हैं और आगे भी धोती रहेंगी, बशर्ते हम उन्हें इस लायक रहने दें। आज हवा में इतना जहर घुल चुका है कि सांस लेना भी भारी पड़ने लगा है। दोस्तों, इंसान का आखिरी सच 2 गज जमीन से बड़ा नहीं है, पर जमीनी हकीकत ने शायर की इस शिकायत को जैसे सच साबित कर दिया है कि ऐ खुदा, तूने मुझे कब्र से भी कम जमीन दी, पांव फैलाऊं तो दीवार से सर लगता है। दोस्तों, फैलते शहरों ने पहले गांवों को निगला, फिर खेतों को, और अब उन्होंने जंगलों को निगलना शुरू कर दिया है। जरा सोचिए, जब जंगल ही नहीं होंगे तो फिर पर्यावरण का मंगल कहाँ से होगा।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, पर्यावरण का मतलब सिर्फ पेड़ पौधे नहीं होते, लेकिन पेड़ पौधों का पर्यावरण में सबसे अहम रोल, अहम भूमिका होती है। और

देखा जाए तो जितनी भी प्रकृति प्रदत्त सौगातें हैं वो सब पर्यावरण का हिस्सा होती हैं। नदी, पहाड़, झरने, धरती, जमीन और जमीन से ऊपर जितना कुछ है वो सब पर्यावरण का हिस्सा है। और सबसे अहम हिस्सा तो हम सारे लोग यानी हम मनुष्य ही हैं। और ये जो एक इकाई है मनुष्य की, सारे पर्यावरण में सबसे अहम भूमिका रखती है, उसके सुधार में और उसके विनाश में भी। और आज के माहौल की बात की जाए, आज के परिदृश्य की बात की जाए, तो जिस तरह से पर्यावरण बिगड़ते जा रहा है उसमें बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को हम कैसी दुनिया, कैसा माहौल सौंप कर जाने वाले हैं। आज तमाम कानूनों के बावजूद प्लास्टिक का उपयोग कम नहीं हो पा रहा है। आज भी लोग बाज़ार जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, जबकि अब ज़रूरत आ गई है कि वो पुराना जो दौर था जब हम कपड़े के थैले लेकर बाज़ार जाया करते थे, हमें फिर वापस लाना होगा। और सारी बातें, सारे कानून सिर्फ सरकारी एजेंसियों के सर पर छोड़ देना भी बिल्कुल ठीक बात नहीं होगी। जिम्मेदारियां आत्म अनुशासन से आती हैं और अभी जो ज़रूरत है वो आत्म अनुशासन की है। हम कचरे के निष्पादन को लेकर कितने सजग और कितने ईमानदार हैं, जहाँ पर नियत जगह है कचरा फेंकने की, क्या वहीं हम कचरा फेंकते हैं या यहाँ वहाँ कहीं भी फेंक देते हैं। कभी आप ट्रेन की यात्रा करें तो आपको पता चल जाएगा कि लोग साफ सफाई को लेकर कितने जागरूक हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी मूँगफलियाँ खाते हैं और रेलवे के कंपार्टमेंट में यहाँ वहाँ फैला कर रखते हैं। तो ये सारी बातें ऐसी हैं, जब तक हम आत्म अनुशासित नहीं होंगे तब सुधार की बहुत ज़्यादा उम्मीद करना मुझे लगता है कि बेकार होगा।

श्रोताओ, आज रात में 9:30 से 10 के बीच प्रसारित होना है कार्यक्रम आपके मैसेज हमारे गीत। इस बार की 5 फिल्में जिनके लिए आपको व्हाट्सएप संदेश भेजना है वो भी शाम 4 तक इस प्रकार हैं। मेरा साया फिल्म का गाना, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, यादों की बारात फिल्म का गीत, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, सागर फिल्म का गाना, सागर किनारे दिल ये पुकारे, सलामी फिल्म का गीत, तुम्हें छेड़े हवा चंचल, आशिकी 2 फिल्म का गाना, आसान नहीं। हमारा मोबाइल नंबर है 9425149342, 9425149342। याद रहे कि ये संदेश हमें शाम 4 तक मिल जाना चाहिए। गाने और फिल्में एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूँ। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, फिल्म मेरा साया, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, फिल्म यादों की बारात, सागर किनारे दिल ये पुकारे, फिल्म सागर, तुम्हें छेड़े हवा चंचल, फिल्म सलामी, और आसान नहीं, फिल्म आशिकी 2। फोन नंबर एक बार फिर सुन लें, मोबाइल नंबर है जो कि 9425149342, 9425149342। ये संदेश हमें अपराह्न 4 तक मिल जाना चाहिए।

दोस्तों, रुकना बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपको याद दिला दें कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। ऐसा ना हो कि हम सोशल मीडिया में इस दिन को मनाएं और भूल जाएं। देखा जाए तो आने वाले जो दिन हैं, जून और जुलाई का जो महीना है, पेड़ पौधों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण साबित होता है। अगर कोई पौधा हम लगाते हैं तो बहुत कम देखभाल में भी वो बढ़वार की स्थिति में आ जाता है। और अगर हम विरासत की बात करें तो सबसे अच्छी विरासत तो यही होगी, हर व्यक्ति एक पेड़ छोड़ कर जाए। और आमतौर पर ऐसा होता है कि एक पीढ़ी मेहनत करती है, फल अगली पीढ़ी के हिस्से में आते हैं, लेकिन ये भी ना भूलें कि आज जो फल हम खा रहे हैं उसके लिए मेहनत किसने की थी। और अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ चुका है, तो दीजिए अनुमति अपने दोस्त चमन सालवार को। नमस्कार।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 8 बजने को है समाचार प्रभात। कुछ ही पलों में हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व

0: योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4-लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जन कल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज PCPIR और सरिगाम GIDC में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड़ में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
2: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक

0: बदलाव नहीं किया था।
1: खुदरा मुद्रास्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2 से 6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसा।
0: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
3: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर

0: शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे स्तर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
1: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा न हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says US pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament in Japan today. Prime Minister Narendra Modi will visit Surat in Gujarat today to launch multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in road, power and industrial sectors. Mr. Modi will first visit Hazira and will review the ongoing industrial and infrastructure projects before addressing a large public gathering in the afternoon.

दशहरा फिल्म का ये गीत आपने सुना कैलाश खेर और साथियों की आवाज़ में। आकाशवाणी जबलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आपको बता दें, रात 9:30 से 10 बजे के बीच प्रसारित होगा कार्यक्रम आपके मैसेज हमारे गीत। इस बार की 5 फिल्में और गाने इस प्रकार हैं जो आपको व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से भेजना है, वो भी शाम 4 बजे तक। गीत के बोल हैं, तू जहाँ जहाँ चलेगा फिल्म मेरा साया, चुरा लिया है तुमने फिल्म यादों की बारात, सागर किनारे दिल ये पुकारे फिल्म सागर, तुम्हें छेड़े हवा चंचल फिल्म सलामी, और आसान नहीं आशिक हो जाना फिल्म आशिकी 2। मोबाइल नंबर है 9425149342, 9425149342। ये संदेश हमें शाम 4 बजे तक मिल जाना चाहिए। गीत एक बार फिर सुन लें, तू जहाँ जहाँ चलेगा फिल्म मेरा साया, चुरा लिया है तुमने यादों की बारात, सागर किनारे दिल ये पुकारे फिल्म सागर, तुम्हें छेड़े हवा चंचल फिल्म सलामी, और आसान नहीं फिल्म आशिकी 2। नंबर है 9425149342। ये संदेश हमें शाम 4 बजे तक मिल जाना चाहिए। अगला गाना कुमार सपन की आवाज़ में है, फिल्म का नाम है बाबा बाबा ब्लैक शीप।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी जबलपुर है। आइए सुनते हैं न्यूज हेडलाइंस, हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार निवेश फोरम की बैठक कल इंदौर में आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि होंगे। इस फोरम में लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के 15 देशों के वरिष्ठ राजनयिक भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल और इंदौर के मेट्रो रेल परियोजनाओं से जुड़े कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कल समीक्षा बैठक में कहा कि मेट्रो रेल यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग का सहयोग लिया जाए। प्रदेश के 3 राज्यसभा सीटों के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और प्रदेश सचिव रजनीश अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को टिकट दिया है। आज पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है। ये दिन का उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल में पर्यावरण दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होंगे। वे इस अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम 2.2 अभियान का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में 8 श्रेणियों में 11 राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलो हर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 9 बजे हैं, लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसथार। आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं मनीषा जैन के गाए बुंदेली लोकगीत।

लोक दस्तार कार्यक्रम में आप सुन रहे थे मनीषा जैन के गाए बुंदेली लोकगीत। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। आपको बता दें आज रात 9:30 से 10 बजे के बीच प्रसारित होगा कार्यक्रम आपके मैसेज हमारे गीत। इस बार के लिए 5 गाने और उनकी फिल्मों के नाम इस प्रकार हैं जो कि आपको व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से भेजना है, वो भी अपराह्न 4 बजे तक। गाने के बोल हैं, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, फिल्म मेरा साया, चुरा लिया है तुमने यादों की बारात, सागर किनारे दिल ये पुकारे फिल्म सागर, तुम्हें छेड़े हवा चंचल फिल्म सलामी, और आसान नहीं फिल्म आशिकी 2। हमारा मोबाइल नंबर है 9425149342, 9425149342। ये संदेश हमें अपराह्न 4 बजे तक मिल जाना चाहिए। गाने फिर सुन लें, तू जहाँ जहाँ चलेगा फिल्म मेरा साया, चुरा लिया है तुमने यादों की बारात, सागर किनारे दिल ये पुकारे फिल्म सागर, तुम्हें छेड़े हवा चंचल फिल्म सलामी, और आसान नहीं फिल्म आशिकी 2। मोबाइल नंबर 9425149342, 9425149342। ये संदेश हमें शाम 4 बजे तक मिल जाना चाहिए। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 9:15 होने को है गांधी चर्चा। कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे।

सत्याग्रह ऐसा बल है जिसका प्रयोग व्यक्ति भी कर सकते हैं और समुदाय भी। इसका प्रयोग जितना अच्छी तरह राजनीतिक मामलों में किया जा सकता है, उतनी ही अच्छी तरह घरेलू मामलों में भी किया जा सकता है। इसकी सार्वभौम प्रयोज्यता इसके स्थायित्व और अपराजेयता का प्रमाण है। इसका प्रयोग पुरुष, स्त्री, बच्चे सभी समान रूप से कर सकते हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये एक ऐसा बल है जिसका प्रयोग दुर्बल लोग उस समय तक कर सकते हैं जब तक कि वे हिंसा का जवाब हिंसा से देने में समर्थ न हो जाएं। सत्याग्रह का बल तो हिंसा, सभी प्रकार की क्रूरता और सभी प्रकार के अन्याय को इस तरह मिटा देता है जैसे अंधकार को प्रकाश। राजनीति

में इसका प्रयोग इस अटल सिद्धांत पर आधारित है कि किन्हीं लोगों पर शासन करना तभी तक संभव है जब तक कि वे जाने अथवा अनजाने अपने ऊपर शासन किए जाने के लिए सहमत हैं। मैंने कभी मौलिक सत्याग्रही होने का दावा नहीं किया है। मेरा दावा तो सिर्फ ये है कि सत्याग्रह के सिद्धांत का प्रयोग प्रायः सार्वभौम पैमाने पर किया जा सकता है, किंतु अभी ये देखना और प्रदर्शित करना बाकी है कि क्या ये ऐसा सिद्धांत है जिसे सभी युगों और प्रदेशों के हजारों लाखों लोग आत्मसात कर सकते हैं। सत्याग्रह सार्वभौम प्रयुक्ति का नियम है। परिवार से आरंभ करके इसका विस्तार प्रत्येक क्षेत्र तक किया जा सकता है। मान लीजिए कि कोई जमींदार अपने काश्तकारों का शोषण करता है और उनकी मेहनत के फल से उनको वंचित करके उसे अपने इस्तेमाल में लाता है। काश्तकारों के सविनय विरोध करने पर भी वो उनकी बात नहीं सुनता और आपत्ति करते हुए कहता है कि उसे इतना पैसा अपनी पत्नी के लिए चाहिए, इतना पैसा बच्चों के लिए चाहिए आदि आदि। काश्तकार अथवा उनकी ओर से पैरवी करने वाले ऐसे लोग जिनका कुछ प्रभाव है उसकी पत्नी से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने पति से बात करे। पत्नी संभवतः कहेगी कि उसे पति द्वारा शोषित धन की अपने लिए आवश्यकता नहीं है। बच्चे भी शायद ऐसा ही कहें कि उन्हें जरूरत होगी तो वे खुद अपनी कमाई कर लेंगे। ये भी मान लीजिए कि वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है या उसकी पत्नी और बच्चे भी काश्तकारों की खिलाफत करने के लिए एकजुट हो जाते हैं तो काश्तकार उनके सामने झुकेंगे नहीं। अगर जमींदार उन्हें निकालना चाहेगा तो वे निकल जाएंगे, लेकिन वे साफ तौर पर यह बात कह देंगे कि जमीन उसी की है जो उसे जोतता है। जमींदार चूंकि सारी जमीन खुद नहीं जोत सकता, इसलिए उसे काश्तकारों की जायज मांगें माननी ही होंगी। लेकिन हो सकता है कि जमींदार उन काश्तकारों को निकालकर दूसरे काश्तकार रख ले। ऐसी सूरत में अहिंसक आंदोलन छेड़ा जाएगा जो तब तक जारी रहेगा जब तक नए काश्तकार अपनी गलती न मान लें और पहले वाले काश्तकारों के साथ आंदोलन में सम्मिलित न हो जाएं। इस प्रकार सत्याग्रह जनमत को शिक्षित करने की एक प्रक्रिया है जो समाज के सभी तत्वों को अपने में समाहित करती है और अंततः अदम्य बन जाती है। हिंसा इस प्रक्रिया में विघ्न उपस्थित करती है और समूचे सामाजिक ढांचे की सच्ची क्रांति को लंबा कर देती है। गांधी चर्चा में ये था आज का प्रसंग और अब प्रस्तुत है भजन।

मीडियम व्यू पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवा रहे हैं बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में अनजान का लिखा ये नगमा, जिसे गाया है आशा भोसले, बप्पी लहरी और शशि कपूर की आवाज़ है। फिल्म का नाम है नमक हलाल।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें? हैं? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

शंकर एहसान लॉय के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर के बोल अभी आपने सुने। आवाजें थी अलीशा चिनॉय, महालक्ष्मी अय्यर और सोनू निगम की फिल्म का नाम डॉन। अगला गीत आशा भोसले की आवाज में है, गीत मजरूह सुल्तानपुरी का, संगीत एस टी बर्मन का, फिल्म का नाम है ज्वेल थीफ।

आपने सुना अनजान का लिखा ये नगमा, जिसे बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में गाया था आशा भोसले और किशोर कुमार ने। फिल्म का नाम शराबी। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। फिल्म संगीत का अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:20 पर सारंगा। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 10 बजने को है जिले की चिट्ठी, कुछ ही पलों में आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित की जाएगी।

0: आणि भोपाल है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है खंडवा जिले की चिट्ठी, आलेख हीरा लाल लोंगरे, वाचन स्वर दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति ने निमाड़ंचल को बड़ी सौगात देते हुए 4,415 करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके तहत एनएच 347 पी के हिवारखेड़ी रोशनी आशापुर रूधी मार्ग को 2 लेन और देशगांव जुलवानिया मार्ग को 4 लेन में अपग्रेड किया जाएगा। परियोजना से खंडवा बैतूल खरगोन बड़वानी जिलों में यातायात सुगम होगा, क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति भी मिलेगी। प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने हाल ही में वनग्राम आवलिया में वन विभाग और L&T कंपनी के संयुक्त तत्वाधान में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पूर्व कालीभीत परिक्षेत्र के वन परिक्षेत्र अधिकारी वीरेंद्र सिंह अचालिया ने युवाओं से अपील करते वे कहा है कि वन क्षेत्रों में रहने वाले अधिक से अधिक युवा कार्यक्रम का लाभ उठाएं। युवा कार्यक्रम के तहत वन क्षेत्रों के 18 से 35 साल के युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। डॉ. शाह ने कहा कि सरकार युवाओं को और स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत खंडवा जिले ने राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। नगर निगम खंडवा ने 20,490 कंटूर ट्रेंच बनाकर देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि जिले ने ग्रामीण क्षेत्रों में 4,22,000 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण कर देश में 5वां स्थान हासिल किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानून को आज खंडवा जिले के दौरे पर रहेंगे। वे खालवा और खंडवा में मानवाधिकार से जुड़े मामलों की समीक्षा करेंगे तथा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। खंडवा में आयोजित जिला विकास समन्वय तथा निगरानी समिति दिशा की बैठक में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने अधिकारियों को जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने किसानों को उर्वरक वितरण के ई टोकन सिस्टम की जानकारी देने और पेयजल योजनाओं के बेहतर संचालन पर विशेष जोर दिया है। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय

0: शर्मा ने गत दिनों खालवा विकासखंड के ग्राम रोशनी में 1,36,00,000 रूपये लागत के इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर का लोकार्पण किया। इस परियोजना से 160 आदिवासी महिलाओं को मछली पालन, पशुपालन, बतख पालन और फल सब्जी उत्पादन के माध्यम से रोजगार मिलेगा। कृषि विभाग ने किसानों से खरीफ फसलों की बुआई के लिए प्रमाणित और गुणवत्ता युक्त बीजों का उपयोग करने की अपील की है। विभाग द्वारा खाद और बीज की गुणवत्ता की लगातार निगरानी की जा रही है और नमूनों की जांच भी कराई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को जिले भर में मनाया जाएगा। जिला मुख्यालय सहित सभी विकासखंडों और नगरीय निकायों में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। खंडवा में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार पुलिस कंट्रोल रूम में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक अगम जैन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तारेगण की उपस्थिति में 60 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रथम बैच को भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, आधुनिक तकनीकों के उपयोग संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। ये प्रशिक्षण जिले के सभी अधिकारी कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से प्रदान किया जाएगा। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत आयोजित कार्यशाला में किसानों को जैविक प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य सुधार और कृषि आधारित उद्यमिता की जानकारी दी गई है। वहीं श्रम विभाग ने असंगठित श्रमिकों से 13 जून तक अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी पूरी कराने की अपील की है। उधर पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती पर माणिक के स्मारक वाचनालय में संगोष्ठी और सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। खंडवा जिले में आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभाओं में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, स्वच्छता, ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीणों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इधर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत नगर निगम द्वारा झीलोद्यान और नमो वन क्षेत्र में विशेष वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही विद्यार्थियों द्वारा तैयार सीड बॉल के उपयोग की भी तैयारी की जा रही है। मछलियों के प्रजनन काल को देखते हुए मध्य प्रदेश में 16 जून से 15 अगस्त तक नदियों और उनसे जुड़े जलाशयों में मत्स्याखेट पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आपने सुनी खंडवा जिले की चिट्ठी, आलेख हीरालाल लोंगरे का, वाचिका दीपा सिंह। ये
2: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। अब सुनिए कार्यक्रम वंदे मातरम, गौरव गान की डेढ़ सदी।

मातरम। एक उद्घोष जो आजादी के संग्राम का जय घोष बन गया, इसका अर्थ है माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। बंकिम चंद चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1875 को ये मातृवंदना रची थी। बाद में इसे 1882 में प्रकाशित उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इस गीत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया था। 1905 के बंग भंग आंदोलन में ये गीत देशभक्ति, एकता, त्याग और बलिदान की भावना जगाने वाला प्रतीक बन गया। स्वतंत्र भारत में इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकृति दी गई। इस तरह से ये मातृवंदना अब तक 1.5 सदी का सफर तय कर चुकी है।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम गौरव गान की 150वीं सदी। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 10:10 होने को है समाचार बुलेटिन विश्व दर्पण। अब हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को एक विश्वसनीय साझेदार बताया। कहा, अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। अहमदाबाद में 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का एक अवसर है।
2: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में

0: हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं।
2: प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमेरिका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि रूस ने भारत को पांचवीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। श्री पुतिन ने भारत की आर्थिक वृद्धि और उसकी स्वतंत्र विदेश नीति की प्रशंसा करते हुए कहा कि रूस भारत के साथ अपने आर्थिक संबंधों को और बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा किए गए अथक परिश्रम का परिणाम है। श्री पुतिन ने कहा कि भारत एक महान राष्ट्र और लोकतंत्र है और रूस उसके साथ संबंधों का विस्तार करना जारी रखेगा। विश्व दर्पण के लिए आकर्षिता सिंह।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव यवेट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने इसके विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा तथा शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है।
3: दोनों नेताओं ने आर्थिक और व्यापार समझौते के शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की। साथ ही AI और महत्वपूर्ण खनिजों सहित भारत ब्रिटेन प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल के अंतर्गत विभिन्न पहलों में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में उन्होंने दोनों देशों के प्रशिक्षण संस्थानों में सैन्य प्रशिक्षकों के आदान प्रदान सहित नई प्रगति का स्वागत किया। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने हरित विकास पर भारत ब्रिटेन जलवायु वित्त पहल सहित भारत ब्रिटेन जलवायु साझेदारी के महत्व को भी स्वीकार किया। यात्रा के दौरान शिक्षा मंत्रालय ने लिवरपूल विश्वविद्यालय को बंगलुरु परिसर खोलने के लिए स्वीकृति पत्र सौंप दिया। इसके साथ ही यात्रा के दौरान किंग्स कॉलेज लंदन और राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन के बीच क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन का भी आदान प्रदान किया गया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
4: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति की। यह भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: विश्व दर्पण समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
5: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास

0: विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस अवसर पर देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। फाइनल में पहुंचने वाली टीम का सामना जापान या पूल बी की शीर्ष टीम से होगा। भारत का पूल ए में 9 अंकों के साथ दूसरा स्थान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रूस के राष्ट्रपति ने भारत को एक विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 10:20 हुए हैं। अब सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा।

फिल्मी गानों के इस हरे भरे कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। स्वीकार करें चमन सालवार का नमस्कार। दोस्तों, आज विश्व पर्यावरण दिवस हम पूरी दुनिया के साथ मना रहे हैं और आज के दिन एक सवाल हम सारे लोग खुद से करें कि अभी तक के जीवन में हमने क्या एक पौधा लगाकर उसे बड़ा किया है, और अगर किया है तो कहीं ना कहीं हमने अपनी सार्थकता साबित की है, और अगर नहीं कर पाए हैं तो ये मान के चलें कि एक जिम्मेदारी अभी भी हम पर बाकी है। बहरहाल पहले गाने का रुख करते हैं। ये गाना श्रीनिवास की आवाज़ में है, बोल जावेद अख्तर के शंकर एहसान लॉय का संगीत है, फिल्म का नाम है दिल चाहता है, और इस गाने को सुनना चाहते हैं हमारे आप सब श्रोता। परिमहल काजगंज से हैं आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, आफरीन खान और जमीर खान। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या और करिश्मा कामले। कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति शिवानी और मीनूराज श्रीमाली। लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिबा कौर। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वलीउल्लाह फ़कीर, डबलुल्लाह फ़कीर और परवीन आसमा फ़कीर। बुलंदशहर से बद्रू वली अंसारी, फर्जू वली अंसारी और फर्जी वली अंसारी। गयाजीपुर मंडला से वीरेंद्र कुमार पंजाबी, राधेश्याम चावला और उनके दोस्त। मेहरनगर उमरखेड़ से अभिजीत गवाणकर, सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत, प्रणिता और अर्जुन गवाणकर। बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश, सुमित और कुमारी ध्वनि गवाणकर। आप सबको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का यह पहला गाना श्रीनिवास की आवाज़, फिल्म दिल चाहता है।

ग्राम रजौनी जिला महोबा से उदय भान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश बघेल और उनके बहुत सारे दोस्त, राजपुर से घीसु दिलवारे, लक्ष्मी माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ और कुणाल दिलवारे, बन्ने बुजुर्ग पलेरा, टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा, पुणे से पंकज वाडोदे, आर्या, प्रियंका, बीटी वाडोदे, चंद्र प्रभा वाडोदे और परिवारजन, पिंडरे जिला मंडला से सुमत कुमार जैन, कमला प्रसाद शर्मा, संजय जैन, राधेश्याम केवट, मोहम्मद मोहराली, प्रदीप पटेल और शरद गुप्ता, ग्राम पंचायत बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा, चटौदा सारा गांव से सुजान वर्मा, सोहद्रा, आयुषी और कृत वर्मा, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश, गुरु नानक नगर मलोट पंजाब से राजीव सेतिया, रजनी, आरती और तनीश सेतिया, जौनपुर लपरी ग्राम मुंडेला से चंदा चांदनी, आकाश कुमार, कन्हैया लाल और रीता देवी, आदर्शनगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरव, शाइना और निवान शर्मा, गड़िया मौजे उस्तू से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन मंडल, करीना कुमारी, पूजा कुमारी, आरती कुमारी और सुनीता देवी। ये गाना अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में है, गीत समीर का, संगीत नदीम श्रवण का, फिल्म का नाम है फूल और कांटे।

तनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश भत्ता, नीलम भत्ता, नितिन पलक, करण गीतू निहारिका और वंश भत्ता, सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शोएब खान, साइमा खान, मुस्ताबा खान, अफिया खान, राउफ और शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारनी, सूरज, सुजला, ज्योति और रेयांश ठाकुर, सर्रई केवलारी से कमला प्रसाद शर्मा, संजय जैन, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबेहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय, अम्बेडकर चौक खुरी से राम सखी, परमानंद, सौरभ, गौरव, किशोरी, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूनन रोहित, छोटू और डुंडुन, चांदनी चौक घंटई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र सेन और खुशी रौनक सेन। ये गाना मोनाली ठाकुर की आवाज़ में है, गीत अमिताभ भट्टाचार्य का, संगीत अमित त्रिवेदी का, फिल्म का नाम है लुटेरा।

बिरसे पूर्ण पाली उमरिया से संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई, विकास, ओम प्रकाश, शुभम विश्वकर्मा और अरुण विश्वकर्मा, अनूपपुर से जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी और कृष्ण केवट, मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट, बिजनौर से मोहम्मद बकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू, साजदा रानी और हिना कौसर, ऊपरकोट मोहल्ला चखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरसान और अबान अब्बासी, बिलहरी बड़खेरा कटनी से संतोष ठाकुर, अवधेश दुबे, सुमीर पटेल, सुदामा सेन, बारेलाल, शेख जमील मंसूरी, नर्मदा कॉलोनी मंडला से सिया शरण ज्योतिषी, पुष्पा ज्योतिषी, गोल्डी रोली लकी, श्वेता और परू, बंडा बेलेज से लक्ष्मण रैकवार, हल्ले विनीता रैकवार, लल्लू ऋषि रैकवार, वैशाली और वैष्णवी, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक और मीका बिरक, अलीका डब्बाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी और उनके दोस्त, नागचंद रोड खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर और मोहम्मद उमर डावर, रामलोहारी खंडवा से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार, विशाल कुमार, शीला और गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय बैद, रानी बैद, महिमा बैद और नीतू बैद, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राना, मीना राना, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। आप सबकी पसंद पर आई सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। गीतकार स्वानंद किरकिरे, संगीतकार अजय अतुल। इस गाने को अतुल ने श्रेया घोषाल के साथ गाया है। फिल्म का नाम है सिंघम।

सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत हेमेंद्र और सदमती पंचोलिया, इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री, इंदिरा बिहार रायगढ़ से अकरम नूरजहां, डब्ल्यू नूरजहां, वसीम और वलीउल्लाह नूरजहां,

राजनाथ गांव से याकूब आसमा, यूसुफ इमरान और इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिबा तिवारी, इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया, नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चित्रंजन, कमल उमेश, सरोज आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी सागर, रिया रीत, ऋषभ राजावत और उनके परिवारजन। ये गाना सुखविंदर सिंह की आवाज़ में है, जावेद अख्तर के बोल, विशाल शेखर का संगीत, फिल्म का नाम है ओम शांति ओम।

अवधपुरी भोपाल से शोभना जॉर्ज, शालीन शाह, मनीष मार्टिन, मनीषा, मानसी और माही, क्रिश्चियन कॉलोनी सागर से डैनी मार्टिन, अर्चना मार्टिन, अश्मिका, अंशिका और विमला मार्टिन, बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमड़े, वैष्णवी ढोमड़े, चंचल ढोमड़े, अर्जुन गवनेकर और धीरज सब्बाशेरे, जवाहरगंज जबलपुर से जिनेन्द्र जैन, महेंद्र जैन, सत्येंद्र जैन और उनके परिवारजन, बर्गीनगर जबलपुर से रविंद्र गदरे, सुभाष गदरे, दिगंबर, राजेश, शिवम, शुभांग और सृष्टि गदरे, बिलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जैबुन निशा बेगम, अकरम सैफी और आबाद खान, आज़ाद

लक्सर, हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। आप सबकी पसंद पर आखिरी गाना, श्रेया घोषाल और मीनल जैन की आवाज़, इरशाद कामिल के बोल, यार रहमान का संगीत, फिल्म का नाम है रांझना।

मीडियम व्यू पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 10:58 होने को है। न्यूज़ हेडलाइंस कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे।

0: आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि यह दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पित सभी लोगों के प्रयासों की सराहना भी की है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अब से कुछ देर में भोपाल में आयोजित पर्यावरण दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होंगे। वे इस अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में 8 श्रेणियों में 11 राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के दूसरे सरसंघ चालक माधव सदाशिव राव गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा है कि उनके नेतृत्व में संघ ने हर क्षेत्र में जनता को जागरूक करते हुए राष्ट्रीय चेतना को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। प्रदेश के 3 राज्यसभा सीटों के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और प्रदेश सचिव रजनीश अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को टिकट दिया है। और मानसून के दस्तक से पहले प्रदेश में आंधी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज 45 जिलों में तेज हवाएं चलने और बारिश की चेतावनी जारी की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आज का कार्यक्रम छाया पाठक की प्रस्तुति है।
2: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज आपके साथ हूं मैं छाया पाठक। श्रोताओं, हमसे बातचीत करने के लिए हमारा फोन नंबर है 2660902, भोपाल का STD कोड 0755। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से, और कार्यक्रम का प्रसारण होता है अगले दिन 11 से 12 बजे के बीच। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार है। आइए बात करते हैं हमारे पहले श्रोता से।
3: हेलो।
2: हेलो
3: जी मैडम, नमस्ते।
2: नमस्ते,
3: समद सिंह बात कर रहा हूँ, MP धार से।
2: समद सिंह,
3: सौमद सिंह जी।
2: अच्छा, एकाद मत नहीं है, सीधे सौमत है।
3: सौमत है मैडम, एकदम सही बात कही आपने, सीधे सौ मत।
2: एकाद मत नहीं है, सीधे सीधे सौ मत है। चलिए, आपके नाम के पीछे कुछ आपने कभी पूछा नहीं कि भाई ऐसा नाम क्यों रखा?
3: अब कभी सोचा तो नहीं, मैं मतलब यूं जनरल तो ख्याल आया, लेकिन कभी घर वालों से पूछा नहीं।
2: भाई इसका अर्थ कुछ और भी हो सकता है मेरे हिसाब से।
3: हाँ नहीं, बात तो आपकी बिल्कुल सही है
2: ना, सीधे ये मत से मतलब नहीं है, विचार से सौ मत।
3: नहीं नहीं, मैं समझता हूँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
2: चलिए,
3: मेरी किनसे बात हो रही है?
2: मैं छाया पाठक बोल रही हूँ।
3: अच्छा, छाया जी, चलिए, अच्छा लग रहा है आपसे बात करके
2: जी। आज कार्यक्रम का नाम है फोन करें गीत सुने
3: जी। बिल्कुल
2: हाँ।
3: तो आप मुझे सुनवाइए, अभी अभी सुमन कल्याणपुर जी हमारे बीच से गई है, तो एक इनका गीत है रफी साहब के साथ में, मोहब्बत इसको कहते हैं, फिल्म का गीत है वो। वो गीत आप मुझे सुनवाइए, खयाम साहब ने इसका संगीत निर्देशन किया है।
2: इसका कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
3: ठहरिए होश में आलू तो चले जाइएगा।
2: अरे बहुत बढ़िया गाना आपने पसंद किया।
3: हाँ, वो

0: तो कहा मैंने मोहब्बत इसको कहते हैं, फिल्म का गीत है ये।
1: कार्यक्रम का आरंभ भी इतने अच्छे गीत से हो जाए तो फिर कार्यक्रम का मज़ा दुगना हो जाता है ना।
0: जी,
1: मोहब्बत इसको
0: बिल्कुल।
1: कहते हैं, ठहरिए होश में आऊँ तो चले जाइएगा।
0: हाँ,
1: जी,
0: ठहरिए, होश में आ लूँ तो चले जाइएगा।
1: आपने फिल्म देखी है?
0: नहीं मैडम, मैं फिल्में सुनता हूँ। मैं शायद आपको याद नहीं होगा, पहले भी आपसे बात हुई है, मैं
1: हाँ,
0: मतलब
1: हुई है, हुई।
0: है ना।
1: जी जी
0: हाँ,
1: हाँ
0: तो मेरा
1: जी
0: संगीत का क्षेत्र है और मैं टोटली ब्लाइंड हूँ मैं। तो
1: जी।
0: हम लोग को जब कोई भी फिल्म को हमें मतलब सुनते हैं, तो हम उसको बिल्कुल ऐसे इस हिसाब से सुनते हैं कि हम लगता है कि हम उसको देख रहे हैं।
1: देख रहे हैं, फील करते हैं उसको।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
1: बिल्कुल
0: और
1: जी
0: अब आप यूं समझें कि एक म्यूजिक का तो एक अपना जादू है, क्योंकि आप दूसरे रूम में अगर बैठे हैं और अगर कोई म्यूजिक चल रहा है, तो म्यूजिक खुद अपनी कहानी कह देता है कि सीन क्या चल रहा होगा,
1: पहले के गीत इसी तरह बनते थे
0: है ना।
1: सारा। हाँ, हम महसूस करते थे उन गीतों को, समझते थे, जैसे सारी पूरी एक कहानी बयां हो जाती थी।
0: बयां हो जाती थी,
1: हाँ,
0: बिल्कुल।
1: आजकल के गीतों में वो बात नहीं है।
0: हाँ, वो तो है, जीता जागता संगीत
1: जी
0: का अपना जादू था, जो सारा चढ़कर बोलता था हमेशा।
1: जी जी
0: तो मैं इस गीत को मेरे आ, आ, मेरी श्रीमती जी हैं अनसुईया जी, मेरे मित्र हैं ब्रजमोहन जी, और भी मेरे जो चाहने वाले हैं, उन सबको मैं सुनाऊंगा आपके माध्यम से इस गीत को।
1: बिल्कुल सुनिएगा। फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
0: जी नमस्कार, जी नमस्कार।

0: नमस्ते, अपना नाम बताएंगे?
1: मैडम जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। मैडम
0: जी, आज कार्यक्रम है, फोन करें, गीत सुने।
1: हाँ जी बिल्कुल मैडम जी, आज
0: हाँ
1: जैसे कि कार्यक्रम की जब रिकॉर्डिंग हो रही है, कल 5 जून है।

0: कि एक पेड़ या पौधा जो भी अपने गार्डन है आसपास वहां जरूर लगाएं। आज एक एक पढ़कर लगाएंगे तो ऐसे बहुत सारे लाखों करोड़ों पेड़ लग जाएंगे, और इस पर्यावरण से जो ये ग्लोबल वार्मिंग का जो परिवर्तन आ रहा है, गर्मी ज्यादा हो रही है, दिन प्रतिदिन जो वाहन है बहुत ज्यादा हो गए, जिससे धुआं निकलता है उससे पर्यावरण को नुकसान होता है।
1: जी
0: अगर पेड़ अधिक से अधिक रहेंगे तो उससे पर्यावरण को भी हमें बचाना है, और जगह जगह आपके पास में गार्डन है कहीं पर तो वहां पर पेड़ पौधे लगाना है भैया।
1: कहीं ना कहीं तो लगाएं पेड़। बहुत अच्छा
0: जी
1: संदेश आपने दिया। पेड़ पौधों के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं जिनसे हम पर्यावरण बचा सकते हैं।
0: हाँ जी मैडम जी
1: जी
0: बिल्कुल। अभी अपन जहाँ कॉलोनी में रहते हैं, कहीं भी आज नई कॉलोनी का निर्माण होता है तो वहां पर गार्डन जरूर बनाया जाता है। तो आसपास जब आप घर के सामने चाहते हैं कि हमारे गार्डन हो, तो उस गार्डन में आपको पौधा भी लगाना है, उसकी देखरेख भी करना है। जैसे हम हमारे छोटे बच्चे का देखरेख करते हैं, वैसे उस पौधे का भी
1: देखभाल
0: देखरेख
1: जरूरी
0: करेंगे
1: होती
0: तो
1: है।
0: वो बढ़ सकता है, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। उसको सिर्फ 4-5 साल सींचने की आवश्यकता है मैडम।
1: जी, चलिए,
0: जी मैडम
1: आपके विचार सब तक पहुंचे होंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। कुछ श्रोता तो जागेंगे इससे। बताएं,
0: हाँ जी
1: आज
0: मैडम
1: कुछ
0: बिल्कुल।
1: पर्यावरण से ही संबंधित गीत सुनना चाहेंगे क्या?
0: हाँ मैडम जी, गीत है, फिल्म का नाम है, आपको थोड़ा सर्च मारना पड़ेगा, थोड़ा पुराना गाना है। गाने के फिल्म का नाम है एक बार फिर।
1: एक बार फिर।
0: हाँ,
1: जी
0: और गीत के बोल हैं, ये पौधे ये पत्ते ये फूल ये हवाएं दिल को लुभाए मन कहे।

0: हेलो,
1: हेलो
0: फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
1: जी, नमस्कार
0: नमस्कार।
1: जी। मैं तहसील चंदवा मध्य प्रदेश से देवीदास वाड़ीले बोल रहा हूँ
0: देवीदास जी
1: जी।
0: जी बताएं कुछ अपने बारे में।
1: बढ़िया है मैडम जी, अरे मौसम बदल रहा है। हाँ
0: मौसम बदल रहा है, कुछ ठंडक हुई आपके यहाँ?
1: हुई ना मैडम जी, एक दो बार हुई है अभी।
0: कल बारिश हुई आपके यहाँ?
1: हाँ,
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। और आज कौन सा गीत आप पसंद करना चाहते हैं?
1: मुझे आज सुनना है मैडम जी, फिल्म का नाम है सरगम,
0: सरगम का।
1: जिसके बोले कोयल बोली दुनिया डोली, समझो दिल की बोली।
0: जी, कोयल
1: ये
0: तो
1: मुझे सुनना
0: गर्मियों में ज़्यादा बोलती है।
1: है। हाँ, अभी भी कोयल बोल रही है मैडम जी।
0: अच्छा, अभी कोयल बोल रही है, उसी को देख करके आपने गीत सुनना चाह रहे हैं,
1: हाँ,
0: ये
1: उसी को
0: वाला?
1: देखकर मैंने गीत चुना है
0: जी चलिए, तो सुनवाएंगे कल आपको ये गीत। नमस्कार।
1: जी।

0: हेलो जी,
1: हेलो।
0: नमस्कार मैम। राम बाबू मालवीय, कोलार रोड, भोपाल।
1: भोपाल से ही बोल रहे हैं आप?
0: हाँ
1: भोपाल से
0: जी,
1: बहुत कम फोन लगते हैं हमारे पास।
0: हाँ, भोपाल से लगाते कम है क्योंकि मीडियम में कम सुनते, अपने FM पे ज्यादा सुनते ना विविध भारती।
1: हाँ, ये जरूर हो गया।
0: हाँ,
1: पर
0: ये है
1: अब
0: और
1: जब
0: कुछ
1: से
0: भी नहीं होता
1: मोबाइल
0: है।
1: पे आने लगा है तो
0: देखिए,
1: श्रोता,
0: FM सीट पे जिस दिन FM सीट पे मीडियम वेव भी चलने लगेगा तो बहुत ज्यादा आएंगे भोपाल से।
1: हाँ वो तो है, पर अब मोबाइल में सुविधा उपलब्ध हो गई है तो अब कोई दिक्कत तो है नहीं। कहीं भी
0: इतना
1: कैसे
0: कोई
1: भी आप सुन सकते हैं।
0: वो क्या आजकल सुनते नहीं ना भोपाल वालों को, आपको याद है ना
1: तो आप किस में
0: बताइए।
1: सुनते हैं?
0: जी, मैं ऐप के माध्यम से सुनता हूँ, रेडियो भी है मेरे पास।
1: अच्छा, रेडियो भी है आपके पास?
0: हाँ, है ना, मीडियम वेव भी सुनता हूँ उसी से। हाँ,
1: चलें बताएं आज गीत कौन सा सुनेंगे।
0: इसकी फिल्म का टाइटल सॉन्ग इसके है। जी
1: इश्क फिल्म का टाइटल सॉन्ग सुनेंगे।
0: जी
1: ठीक है, फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
0: जी मैम, नमस्कार।

0: हेलो,
1: आदमी दीदी सादर नमस्कार।
0: नमस्कार। किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी दीदी, मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति। जी,
0: शारदा प्रजापति जी।
1: शारदा प्रसाद प्रजापति। दीदी,
0: जी हाँ, अच्छा जी, बताएं क्या करते हैं आप?
1: मैं घर पर रहता हूँ, आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनना मेरा शौक है, दीवानगी है, जुनून है, और थोड़ी दृष्टिहीनता का शिकार हूँ, इसलिए घर पर रहते हुए आकाशवाणी से जुड़ा रहता हूँ।
0: तो कुछ काम तो होगा आपका, कुछ
1: नहीं, मैं
0: व्यवसाय
1: कुछ
0: कोई?
1: काम नहीं करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ रेडियो सुनना हूँ।
0: अच्छा, तो घर में कौन कौन है आपके?
1: मेरे दो बेटे हैं, दो बहुएं हैं, और बेटे दोनों सीनियर इंजीनियर हैं और अपना काम करते रहते हैं और हमारा भरण पोषण करते हैं।
0: अच्छा, तो आपने काम से विश्राम ले लिया मतलब, है ना?
1: जी, बिल्कुल,
0: अवकाश पे चल
1: मैं
0: रहे हैं।
1: पूरी तरह से सेवानिवृत्ति का आनंद ले रहा हूँ।
0: हाँ, पूरे सेवानिवृत्ति का पूरा आनंद ले रहे हैं जी।
1: जी,
0: बताएं आज कौन सा गीत सुनेंगे?
1: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है गीत गाता चल, जसपाल सिंह साहब ने गीत गाया है, गीत गाता चल और साथी गुनगुनाता चल। जी
0: टाइटल सॉन्ग
1: जी
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो,
1: हेलो
0: नमस्ते।
1: जी, नमस्ते मैम
0: हाँ, नाम बताएं अपना।
1: जी। मैं अरविंद अग्रवाल जी,
0: अरविंद अग्रवाल,
1: श्रीनगर
0: कहाँ से?
1: जिला महोबा, उत्तर प्रदेश से। जी
0: श्रीनगर से। श्रीनगर जिला महोबा। अच्छा, आप महोबा से बोल रहे हैं, यूपी से बोल रहे हैं।
1: जी
0: चलिए, वहाँ पे आप क्या काम करते हैं?
1: मेरी किराने की दुकान है, वहीं बैठ के आपको सुनता रहता हूँ।
0: अच्छा, और कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: बस केवल फोन इन जी,
0: सिर्फ फोन इन, ऐसा क्यों?
1: और इतना टाइम नहीं है, बच्चे भी ले लेते हैं मोबाइल, चार्ज में भी लगाना पड़ता है फिर।
0: फोन से कार्यक्रम जब हम सुनते हैं तो उसमें कुछ टाइम थोड़ी देना पड़ता है। कहीं से भी सुने, रेडियो में सुने, श्रोता
1: रेडियो
0: इसमें
1: में नहीं आता ना आपका भोपाल सीधा, छतरपुर रिले करता है
0: नहीं।
1: 11 बजे।
0: वो तो आपने ठीक कहा, लेकिन जब हम फोन से भी सुनते हैं उसके लिए हमें अलग से टाइम थोड़ी देना है। वो चलता रहे अपने, भले चार्जिंग पे भी लगा है।
1: नहीं वो तो बनता नहीं है, अंदर लगाए हैं चार्जिंग का। सुनते
0: अच्छा, अंदर है।
1: हैं छतरपुर राग, वंदना है, चिंतन है, ये सुन लेते हैं जी।
0: वो भी तो यहाँ से आता है, सुबह आकाशवाणी भोपाल से। वंदना, चिंतन सब यहाँ से भी आता है। उसे भी कभी सुनिए, ठीक है? तो गीत आपको जब बहुत पसंद है तो जो गाना आप आज सुनना चाहें जरा गुनगुना के भी बताएं।
1: जी हमराज फिल्म का है, तू मेरी जिंदगी में आई, जिंदगी बदल दी जी।
0: नई वाली हमराज, मेरी जिंदगी
1: और
0: में
1: उसके बाद
0: आकर।
1: लक्ष्य खन्ना, मनीष, वो हमीशा पटेल।
0: जी, सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। नमस्कार।
1: नमस्कार मैम, धन्यवाद फोन लेने के लिए।

0: हेलो, फोन करेंगे तो
1: नमस्कार
0: सुने।
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलोनी जिला कोरा छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह
1: जी मैडम, और
0: जी।
1: मैं ड्यूटी परेड में हूँ मैडम, और आपका कार्यक्रम में फोन किया हूँ। और यहाँ तो मौसम कल पानी गिरा मैडम, और यहाँ तो एकदम उमस गर्मी भी है, धूप भी है, और हवा भी चल रहा है, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है मैडम। इस टाइप का मौसम बना है, और बादल भी किनारे किनारे किया है मैडम। मौसम में तो परिवर्तन हुआ है यहाँ मैडम।
0: आप कोरबा में ही रहते हैं?
1: चिरमिरी कुरासिया कॉलोनी, चिरमिरी कुरासिया
0: अच्छा,
1: कॉलोनी जिला
0: चिरमिरी।
1: कोरिया छत्तीसगढ़।
0: अच्छा, छत्तीसगढ़ में। तो ये क्या जिला है?
1: जी कोरिया जिला है
0: कोरिया जिला है।
1: जी।
0: तो आपके यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ती है।
1: जी मैडम, यहाँ तो गर्मी खूब पड़ी मैडम। कल तो मेरे को लगता है कल कल शायद नौतपा भी समाप्त हुआ है। कल
0: हाँ, परसों हुए नौतपा। कल
1: परसों परसों परसों परसों परसों
0: जी
1: नौतपा
0: जी
1: समाप्त हुआ।
0: हाँ,
1: बहुत
0: परसों
1: गर्मी
0: नौतपा।
1: बढ़ रहा था मैडम।
0: गर्मी बहुत थी, पर कल थोड़ी बारिश हुई है। आपके इधर भी शायद हुई होगी।
1: जी इधर हुई है,
0: उससे
1: पानी
0: उससे
1: गिरा
0: थोड़ी सी
1: गिरा है
0: ठंडक तो आ गई।
1: जी।
0: बताएं, आज गीत बारिश से संबंधित ही सुनेंगे।
1: फिल्म का नाम है सर।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
1: जी, नमस्ते मैडम, मैं जगदीश चौहान पेंटर मुखर्जी नगर इंदौर से बोल रहा हूँ।
0: कार्यक्रम में
1: मुझे
0: स्वागत
1: गाना
0: है
1: सुनना है
0: आपका।
1: मैडम।
0: हाँ, गाना सुनवाने के लिए ही हम बैठे हैं। बताएं
1: जी
0: कौन सा
1: जी
0: गाना सुनना चाहते हैं।
1: ये कर्तव्य पिक्चर का, चंदा
0: कर्तव्य का।
1: मामा से प्यारा मेरा मामा।
0: जी, आप मामा बन गए लगता है।
1: जी मैंने आज पहली बार फोन लगाया। राजू अग्रवाल जी ने मेरे को नंबर दिए है देवास से।
0: हाँ
1: उन्होंने नंबर दिया था कि 10:30 बजे से 11 बजे तक की फरमाइश होती है, मतलब
0: हाँ
1: तो मैंने आज पहली बार फोन लगाया है।
0: पहली बार लगाया हो। पहली बार में लग गया,
1: जी,
0: बहुत
1: मैडम पहली
0: भाग्यशाली
1: बार
0: हैं आप
1: लगाया,
0: तो।
1: पहली बार।
0: नहीं तो लोगों का तो दिन भर लगाते रहते हैं, लगता नहीं है फोन। कई श्रोताओं की
1: जी
0: यही शिकायत रहती है कि हम हमेशा फोन लगाने का प्रयास करते हैं लेकिन लगता नहीं है।
1: हाँ,
0: जी चलिए, आपको पहली बार में लग गया, अब आप 1 हफ्ते बाद लगाएंगे,
1: जी मैडम,
0: है ना? ठीक है,
1: जी, थैंक
0: चलिए, नमस्कार।
1: यू मैडम।

0: जाओ अब तुम अपने घर जाओ। देखो मुन्नी बच्चे ज्यादा शरारत नहीं करते, जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: देखो रात बहुत हो चुकी, मैं कहता हूँ जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, जाए तो कैसे नहीं जाएगी, कैसे नहीं जाएगी।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं
1: हाँ जी, मैं श्रीपाद जाकरे बोल रहा हूँ, पुणे महाराष्ट्र से। पुणे
0: जी?
1: से बोल रहा हूँ मैं,
0: हाँ, पुणे
1: महाराष्ट्र से।
0: महाराष्ट्र से
1: श्रीपाद
0: बोल रहे हैं। नाम फिर से बताएं अपना।
1: जाकरे, श्रीपाद
0: श्रीपद जाखड़े
1: जाकरे। हाँ जी,
0: जी, पुणे में रहते हैं आप?
1: हाँ जी, पुणे में रहते हैं। पुणे में वृद्धाश्रम में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं मैडम जी।
0: तो वहाँ कार्यक्रम सुनते हैं आप, आकाशवाणी मध्य प्रदेश?
1: आप बहुत दूर का तो नहीं आता है, कभी कभी आता है। मतलब
0: तो वहाँ कब से रह रहे हैं आप आश्रम में?
1: आश्रम में रह के मुझे 11 साल हो गए मैडम जी। हम वैसे इंदौर भोपाल के रहने वाले हैं,
0: भोपाल के रहने वाले हैं। तो
1: इंदौर।
0: आपके आप अकेले हैं?
1: हाँ, यहाँ आश्रम में तो अकेले रहते हैं ना, अभी घर में कोई नहीं है। अभी कोई
0: वैसे आपके परिवार में और कोई?
1: नहीं है, अभी सब चले गए। जब भी तो आश्रम में रहना पड़ रहा है मैडम,
0: जी,
1: मजबूरी है
0: तो
1: वर्क लाइफ है
0: आश्रम में अच्छा
1: थोड़ा।
0: लगता है आपको?
1: हाँ जी, हाँ
0: आपको अच्छा लगता है, आपके साथी, आपके हम उम्र सब रहते होंगे तो, है ना?
1: वैसे तो हमसे सभी बड़े ही हैं, मैं ही सबसे छोटा हूँ
0: जी
1: उम्र
0: जी
1: में।
0: चलिए, तो ये जो भी आप गीत आज सुनेंगे वो सबको सुनाइएगा,
1: जी
0: और
1: जरूर,
0: सबको भी कहिएगा फोन लगाने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताएं कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: हाँ। मुझे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में शिकारी फिल्म का गाना सुनना है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने गाया हुआ।
0: उसके तो बहुत से गाने लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी ने गाए। आपको शिकार करने
1: नहीं,
0: को आए शिकार हो गए वो,
1: शिकारी
0: वाह।
1: नहीं, शिकारी फिल्म का
0: हाँ, शिकारी का ही ये गाना है, तो आप बताएं कौन सा सुनेंगे?
1: मतलब। हाँ जी, अगर मैं पूछूं जवाब दोगे, दिल
0: जी
1: क्यों मेरा तड़प रहा है, ये वाला गाना है।
0: ठीक है, सुनवाएंगे आपकी पसंद का गीत। सबको सुनवाइएगा
1: शुक्रिया।
0: आप ये गीत, और सब लोगों को भी प्रेरित करिएगा।
1: आप कौन बोल रहे हैं मैडम जी?
0: मैं छाया पाठक बोल रही हूँ।
1: हाँ जी, तो हम तो वैसे बहुत रोज में फोन करते हैं, तो हमको सुनने को मिलेगा ना कल?
0: बिल्कुल मिलेगा, कल आप सुनेंगे आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी, एक बात कहना चाह रहे हैं आपसे, निवेदन है, मतलब हमारा सुनवाइएगा। कारण पहले हमारा 3-4 बार ऐसा हुआ है कि हमारा बजाया ही नहीं, प्रसारण हुआ ही नहीं
0: नहीं,
1: हमारा।
0: कई बार ऐसा होता है देखिए कि श्रोता, हम जैसे कुछ एक्स्ट्रा में भी कॉल हम रिसीव कर लेते हैं, कभी किसी का कुछ टेक्निकल मिस्टेक के कारण उनका नहीं ले पाते हैं, या कभी समय ज़्यादा हो जाता है। 1 घंटे का टोटल प्रोग्राम बनता है हमारा, तो कभी समय ज़्यादा हो जाता है, कोई गीत लंबा हो जाता है, तो इस वजह से कई बार कोई श्रोता छूट जाते हैं। ऐसा नहीं है कि

0: उसका इंटेंशनली नहीं लेते हम।
1: वो 3-4 बार हुआ है तो अभी
0: नहीं,
1: मतलब टाइम क्या है वैसे आप कह रहे रिकॉर्डिंग का
0: 11 से 12 आपको सुनवाएंगे कल ये गीत।
1: मिलेगा ना सुनने
0: जी
1: को
0: बिल्कुल
1: आप?
0: बिल्कुल मिलेगा आपको, बिल्कुल सुनवाएंगे।
1: ओके हाँ
0: हाँ 11 से 12 पूरा सुनिएगा।
1: जी
0: चलिए,
1: जी
0: फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार धन्यवाद।

0: आज कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नए गीतों और नए श्रोताओं के साथ। आज्ञा दीजिए छाया पाठक को कार्यक्रम से। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और प्रदेश सचिव रजनीश अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को टिकट दिया है। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश फोरम की बैठक कल इंदौर में आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि होंगे। इस फोरम में लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के 15 देशों के वरिष्ठ राजनयिक भी शामिल होंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भोपाल स्थित स्मार्ट सिटी पार्क में पौधरोपण किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया और पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किए। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान की काकामेगाहारा हॉकी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को साधना जैन का नमस्कार और विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। पहला गीत हमने आपके लिए लिया है ब्लैकमेल फिल्म से। किशोर कुमार की आवाज़ है, राजेंद्र कृष्ण ने इसका गीत लिखा है और कल्याण जी आनंद जी ने संगीत दिया है। इस गीत को पसंद किया है सोनागिर दतिया से शशि जैन, श्रेयांश जैन, विपिन जैन और खंडवा से बबली वंदना जैन, डॉक्टर प्रतीति जैन, संदीप जैन और माघदी जैन ने। तो आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं ब्लैकमेल फिल्म का ये गीत।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश और मैं हूं आपके साथ साधना जैन। इस समय दोपहर के 12:06 हुए हैं। अगला गीत हमने लिया है बंदनी फिल्म से। एसडी बर्मन ने इस गीत को गाया है, शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा है और संगीत से संवारा है एसडी बर्मन ने। इस गीत को पसंद किया है हमारे इन सभी श्रोताओं ने बहुत दूर से। दोस्तों, जब हम मोबाइल ऐप पर आ गए हैं तो बहुत दूर दूर से भी, सात समंदर पार से भी लोग हमें सुन रहे हैं और अपनी फरमाइश हमारे लिए भेज रहे हैं। तो इस गीत का बंदनी फिल्म को सुनना चाहा है बॉस्टन यूएसए से डॉक्टर विजय प्रकाश जैन, डॉक्टर प्रियंक जैन, डॉक्टर पुनीता जैन, आर्य अंकुर जैन। आपने बॉस्टन यूएसए से ये गीत पसंद किया है। इसी गीत को पसंद किया है प्रीत बिहार दिल्ली से, ज्योतिषाचार्य बिंदु जैन, पंडित अशोक जैन शास्त्री, नमन जैन, शुभम जैन ने। तो आप सभी के पसंद पर बंदनी फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।
1: माझी

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश। सूरज फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। गीत लिखा है हसरा जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का। इसकी फरमाइश इस गीत के बाद हम आपको बताएंगे।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश साधना के साथ। अगला गीत हमने लिया है धरती फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत है शंकर जयकिशन का। दोनों ही गीतों की मिली जुली फरमाइश इस तरह से है, अशोकनगर से ममता राकेश जैन, कोटा से सरोज सुरेश योगी, रेलवे कॉलोनी बठिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने, पालीताना से शशि जैन ने इस गीत को पसंद किया है। इन दोनों गीतों को पसंद किया था हमारे इन सभी श्रोताओं ने। राजाराम नगर देवास से राजू अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन, उपाध्याय नगर देवास से मुरारी लाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा, सुपर मार्केट देवास से प्रकाश चंद जसवानी, पंकज जसवानी, सनी जसवानी और मोहसिनपुरा देवास से जमील खान, इमरान और फुरखान ने इसी गीत को पसंद किया है। गंगेड़ी जिला उज्जैन से गोपाल बागवान गोविंद, सालग राम, दशरथ बागवान और लोकेंद्र वर्मा ने इसी गीत को पसंद किया है आप सभी ने। तो आइए आपको धरती फिल्म का ये गीत आपको सुनवाते हैं, अपने साथियों के साथ सुनिएगा।

और लीजिए कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं तीसरी मंजिल फिल्म में आशा भोसले के साथ मोहम्मद रफ़ी को। गीत लिखा है मजरू ने, संगीत है आर डी बर्मन का। इस गीत को पसंद किया है लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। और इसी गीत को पसंद किया है सिंधी कैंप पक्की खोली अकोला से आशा संतानी, श्यामली संतानी, नैन्सी संतानी और संतानी सभी सखियों ने। तो आप सभी की पसंद पर भेज रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे साधना के साथ आपकी फरमाइश। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम अंतराल के बाद है।

0: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सिसकियों का भाग 10।
2: वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

तो प्रस्तुत है धारावाहिक की 10वीं कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुना, सारे और मुश्ताक एक दूसरे से मिलते रहते हैं। फाता के न चाहने पर भी उनका मिलना जारी रहता है। सारे बगावत पर उतर आती है और रसूल के जुल्म सहने से इनकार कर देती है। मुश्ताक सारे को तलाक दिलवाने के लिए वकील के पास जाता है और अब

0: वकील साहब, तो क्या रसूल और साराय का तलाक हो जाएगा?
1: मुश्ताक, कानूनी तौर पर तलाक की कोई वजह होनी चाहिए।
0: तो तलाक की वजह है? साराय खुद चाहती है कि वो रसूल के साथ ना रहे।
1: ये कोई सटीक वजह नहीं, कुछ और सोचना होगा।
0: वकील साहब, जब साराय उसके साथ रहना ही नहीं चाहती तो इससे ज्यादा तलाक की और क्या वजह होगी?
1: तलाक के लिए कोई ठोस वजह चाहिए भाई, इसके बिना तलाक संभव नहीं है।
0: वकील साहब, रसूल से सारे प्यार नहीं करती, रसूल सारे को मारता पीटता रहता है, क्या ये बड़ी वजह नहीं है तलाक के लिए?
1: ये तो सारे कह रही है, रसूल क्या कहता है हमें ये भी जानना होगा। एक पक्ष की बात पर हम केस नहीं जीत सकते।
0: वकील साहब, रसूल सारे को तलाक नहीं देगा।
1: अगर रसूल तलाक को राजी नहीं तब तो मुश्किल है, क्योंकि रसूल सारे का शौहर है और उसके कहे पर ही अदालत कार्रवाई करेगी।
0: लेकिन वकील साहब, रसूल अच्छा आदमी नहीं है, उसके कई औरतों से शहर में ताल्लुकात है, वो नशा करता है, मारपीट करता है, क्या इस वजह पर सारे को तलाक नहीं मिल सकता?
1: देखो मुश्ताक, मर्द अगर घर से माह दो माह के लिए बाहर रहे तो ऐसा संभव है, फिर भी आपको सबूत के तौर पर उन औरतों को अदालत में गवाही के लिए लाना होगा। अगर वो औरतें ये कबूल करें कि रसूल से उनके संबंध हैं, तो शायद तलाक मिल जाए। लेकिन एक दिक्कत और होगी, अगर रसूल ये साबित कर दे कि सारे उसके शारीरिक जरूरतों को पूरा नहीं करती और वो इसलिए उन औरतों से संबंध रखता है, तो सारे को तलाक नहीं मिल सकता।
0: लेकिन वकील साहब, ये सब साबित कैसे होगा?
1: अच्छा एक बात बताओ, सारे का कोई बच्चा है?
0: नहीं।
1: सारे कभी गर्भवती हुई?
0: नहीं।
1: सारे ने कभी रसूल को औरतों के साथ हम बिस्तर होते देखा है?
0: वकील साहब, ये लोग कहते हैं, सारे ने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन हम ये जानते हैं कि रसूल के ताल्लुकात औरतों से हैं।
1: मुश्ताक, अदालत सबूत देखती है, अगर तुम सबूत ला सको तभी ये संभव है, और बिना सबूत के अदालत सारे को तलाक नहीं दिला सकती।
0: वकील साहब, तो क्या अदालत सारे के जज्बात को नहीं सुनेगी?
1: मुश्ताक साहब, अदालत भावनाओं पर नहीं चलती, अदालत सबूत देखती है, और बिना सबूत के अदालत कोई फैसला नहीं करती। अगर आप चाहते हैं कि सारे का तलाक हो जाए तो ठोस सबूत के साथ आइए, तभी तलाक हो सकता है।
0: ठीक है वकील साहब, अच्छा मैं चलता हूं।
1: ठीक है,
0: खुदा हाफिज।
1: खुदा हाफिज।
0: वकील साहब ने तो मना कर दिया, अब ऐसा करता हूं कि मौलवी साहब के पास जाता हूं, देखता हूं उनकी क्या राय है। हाँ ये ठीक रहेगा।

0: अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब।
1: वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे।
0: मौलवी साहब, एक जरूरी मसले पर आपसे मशवरा लेना था।
1: आओ आओ बैठो। कहो क्या बात है?
0: वो तलाक के सिलसिले में।
1: तलाक? किसका तलाक?
0: सारे और रसूल का।
1: तलाक कौन देना चाहता है?
0: जी सारे।
1: और रसूल?
0: रसूल नहीं चाहता मौली साहब।
1: ओ तो ये मुश्किल है। देखो भाई, रसूल की इजाजत के बगैर सारे को तलाक नहीं मिल सकता।
0: लेकिन मौलवी साहब, सारे उसके साथ नहीं रहना चाहती।
1: देखो, एक बार निकाह हो जाने के बाद जब तक मर्द ना चाहे तलाक नहीं मिल सकता।
0: सारे उसके साथ खुश नहीं है मौलवी साहब, और रसूल कई औरतों से ताल्लुकात रखता है और सारे से अच्छा सलूक भी नहीं करता।
1: देखो भाई, हमारे इस्लाम धर्म के कानून के मुताबिक तलाक मर्द की इच्छा पर मुनसर करता है, और एक मर्द अगर चार निकाह भी कर ले तो भी वो जायज है। जायज है। औरतों को पाक साफ होना चाहिए। ऐसे में सारे को तलाक नहीं मिल सकता। अरे हम इस्लाम मजहब के खिलाफ नहीं जा सकते। और सुनो, औरतों का अपना धर्म है, उसे निभाना चाहिए। और अगर कोई औरत उसे नहीं निभाती तो धर्म उसकी रक्षा नहीं कर सकता। और जहां तक मैंने सुना है,

0: सारे रसूल को छोड़कर किसी और के साथ रहना चाहती है। अरे अरे, ये तो मजहब के खिलाफ है। एक औरत को ऐसी आजादी नहीं दी जा सकती।
1: कोई और रास्ता है मौलवी साहब?
0: देखो भाई, अगर सारे का खामिंद उसे तलाक देने को राजी हो तभी हो सकता है, लेकिन उस पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो तलाक नहीं माना जाएगा।
1: तो क्या एक औरत को आजादी से रहने का हक नहीं है?
0: देखो मुश्ताक, एक औरत की आजादी उसके परिवार वालों के हाथ होती है। उसका खामिंद अगर चाहे तो आजादी दे, नहीं तो उसके कहने पर चले। ये हमारा इस्लाम मजहब कहता है और हम उसी मजहब पर चलते हैं। और सुनो, इस्लाम मजहब को छोड़कर हम कोई और बात नहीं कर सकते, और अगर कोई औरत हमारे मजहब के खिलाफ जाती है तो हमारा मजहब सख्त सजा की वकालत करता है।
1: अच्छा मौलवी साहब, आपकी सलाह के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज।
0: खुदा हाफिज।

0: तो क्या हमारा मजहब एक औरत को जुल्म सहने के लिए ऐसे छोड़ सकता है? सारे तुम यहां?
1: आओ अंदर आओ।
0: तुम्हारी ये हालत?
1: वो
2: रसूल ने मारा है बेटा, लेकिन अब ठीक है। मुश्ताक बेटे, तलाक की क्या बात हुई? कब तक काम हो जाएगा?
0: अब्बू, जब तक रसूल तलाक देने को राजी नहीं होता तब तक तलाक नहीं हो सकता। हमें रसूल से कबूल करवाना होगा कि वो सारा को तलाक दे।
2: बेटा, मदरसे में जाकर मौलवी साहब से कुछ मशवरा करते, शायद वो हमारी कुछ मदद करें।
0: मैं उनसे मिल चुका हूं अब्बू। उनका कहना है कि अगर रसूल तलाक देना चाहे तभी सारे को तलाक मिल सकता है। वो हमारे बीच मजहब को आड़े ला रहे हैं, ऐसे में हम कभी भी नहीं मिल सकते अब्बू।
2: तब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है बेटा, कि हम रसूल से बात करें।
0: ठीक है अब्बू, ये काम आप खुद करें तो बेहतर होगा।
2: हाँ बेटा, मैं खुद ही रसूल से बात करता हूं।

0: ऐसा हरगिज नहीं हो सकता।
1: क्या?
2: लो चाय पियो।
1: देखो रसूल, मैं साफ साफ लफ्जों में कहना चाहता हूँ कि तुम सारे को तलाक दे दो।
0: मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता।
2: अम्मा मियाँ पागल हो गए हो क्या? अपनी बेटी को तलाक दिलवाओगे?
1: हाँ मैं पागल हो गया हूँ, मुझे बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। अरे तुमने तो सारे को जीते जी मारने का काम किया है, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगा।
0: मैं सारे को तलाक नहीं दे सकता।
1: रसूल, सारे अब तुम्हारी बी बनकर नहीं रह सकती, सारे तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, इसलिए अब तुम सारे को तलाक दे दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा।
0: जब तक सारे को मैं तलाक ना दूं, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और सारे को पाने के लिए मैंने बहुत पैसे

0: खर्च किए हैं। फाता, फाता तुम क्यों नहीं बोलती? मैंने तुम्हें कितना पैसा दिया है और इसी लालच में तुमने अपनी बेटी सारे का निकाह मुझसे करवाया और अब तलाक देने को कहती हो?
1: देखो रसूल, अगर तुम सारे को तलाक देने को तैयार हो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूँ।
0: सारे का हुस्न तो मेरा हो ही गया था, अब उसे छोड़ने के लिए देखो भाई, कम से कम 10,000 रुपए दो तो मैं सारे को तलाक दे दूंगा।
1: ठीक है, मैं जल्दी ही 10,000 रुपए तेरे हाथ में दूंगा।
0: तो ठीक है, जिस दिन पैसा दोगे उसी दिन तलाकनामे पर दस्तखत करूंगा मैं।
1: ठीक है, मैं अभी जाके मुश्ताक को बताता हूँ कि हमें जल्द से जल्द 10,000 रुपयों का इंतजाम करना होगा ताकि हमें इस नामुराद से छुटकारा मिल सके। चाहता हूँ

0: मुश्ताक बेटा।
1: हाँ अम्मी।
0: खाना खा ले।
1: अम्मी रख दो, मैं खा लूंगा, पहले काम खत्म कर लूं।
0: अरे क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, अपनी सेहत का तो ख्याल कर।
1: अम्मी मुझे जल्द ही 10,000 रुपए जमा कर रसूल को देने हैं।
0: मुश्ताक बेटा, मुझे तो लगता है रसूल सबको झांसा दे रहा है, वो ठीक आदमी नहीं है बेटा।
1: अम्मी उसने सारे को तलाक देने के बदले 10,000 रुपए मांगे हैं।
0: अल्लाह तेरी मुराद पूरी करे बेटा, जल्दी से सारे का तलाक हो जाए, पर अपनी सेहत का भी तो ख्याल रख। चल खाना खा ले।
1: अम्मी तू बस अल्लाह से दुआ कर कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं।
0: हाँ, अल्लाह तेरी मुराद जल्द पूरी करेगा। तू सिर्फ सारे को ही नहीं बचा रहा बेटा, बल्कि उस जैसी कई औरतों के लिए एक नया रास्ता बना रहा है। लोग रिश्तों पर यकीन करें, उनमें एतबार बढ़े और वो एक दूसरे के जज्बात समझने की कोशिश करें, तो फिर किसी भी औरत की हालत सारे जैसी नहीं होगी।
1: अम्मी कोशिश तो मेरी यही है, पर पहले पैसे का इंतजाम हो जाए।
0: अकेला कितने पैसों का इंतजाम कर पाएगा, इसमें तो बहुत देर हो जाएगी बेटा।
1: अम्मी मेरे साथ हसन मियां भी तो हैं, वो भी पैसे का इंतजाम कर रहे हैं, जिससे मेरा काम और आसान हो जाएगा।
0: अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हसन भाई जान ने भी बहुत दुख देखे हैं, चलो अब उन्हें भी थोड़ी राहत मिल जाएगी।
1: अम्मी अब तू जा, थोड़ी देर सो ले, अभी मुझे बहुत काम करना है।
0: ठीक है, पर खाना खा लेना।
1: हाँ हाँ खा लूंगा।
0: हाँ,
1: तू जा।
0: रख दिया है।
1: सलाम अब्बू।
2: वालेकुम सलाम। अरे मुश्ताक आओ बेटा आओ, कैसे हो?
1: मैं ठीक हूँ अब्बू, आप कैसे हैं?
2: खैरियत है।
1: अब्बू आपने जैसा कहा था, मैंने कुछ पैसों का इंतजाम कर लिया है, अब हमें रसूल को पैसा देकर तलाक नामे पर उसके दस्तखत ले लेने चाहिए।
2: मैंने भी कुछ पैसों का इंतजाम कर लिया है बेटा।
1: अब्बू फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए।
2: हाँ मैं अभी उसके पास जाता हूँ और तलाक नामे पर उसके दस्तखत लेकर आता हूँ।
1: अब्बू आज मेरे लिए बहुत ही मुबारक दिन है।
2: हाँ बेटा।

0: सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, मेरे और सारे के लिए भी मुबारक दिन है। आज से सारे के दुखों का अंत हो जाएगा। आज वो रसूल के जुल्म और सितम से मुक्त हो जाएगी।
1: अब्बू, ये आप जैसे पाक दिल अब्बू की दुआ है कि हम फिर से एक बार मिल पाएंगे।
0: हाँ बेटा, ये तो तुम्हारी और सारे की पाक मोहब्बत है जो एक बार फिर तुम दोनों एक हो रहे हो। अल्लाह ताला तुम्हारी मोहब्बत को बरकरार रखे। अच्छा बेटा, तो मैं रसूल के पास जाता हूं और उसे पैसे देकर आता हूं।
1: मैं आपका यही इंतजार करता हूं।
0: ठीक है बेटा, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। मेरा इंतजार करना, इस मुबारक दिन का इंतजार मुझे भी था। जाता हूं बेटा।
1: इंशाल्लाह। तलाकनामे पर दस्तखत तो करवा लिए, लेकिन सारे, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। सुनो भाई,
2: हाँ
1: तुम एक काम करोगे?
2: रसूल भाई, जैसा कहो करूंगा।
1: तुम्हें एक आदमी को खत्म करना है
2: भाई। पैसा खर्च करो तो काम हो जाएगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो इस काम में माहिर हैं।
1: लेकिन इस काम को गुप्त तरीके से करना होगा कि हम पर किसी को शक भी ना हो।
2: इन वादियों में ऐसी घटना आम बात हो गई है। आप फिक्र ना करें, काम हो जाएगा।
1: तो ठीक है, काम के बाद पैसे मिल जाएंगे। फिलहाल ये रखो।
2: ठीक है, लेकिन मारना किसको है?
1: सारे और मुश्ताक को।
2: भाई लेकिन सारे तो आपकी बीवी है।
1: बीवी थी, मुझसे तलाक लेकर उस मुश्ताक से निकाह कर बैठी। आज तक औरतों को अपने पैर की जूती के नीचे रखता आया हूं, पर इस सारे ने मुझसे तलाक लेकर मुश्ताक से निकाह कर लिया।
2: ये तो बहुत बुरी बात है, एक औरत की इतनी हिम्मत कि मर्द के फैसलों के खिलाफ जाए। अरे उसे तो घर का काम करना है और शोहर की देखभाल करनी चाहिए, और वो आपको छोड़कर दूसरे के साथ चली गई। ये तो बहुत बुरा है। आप फिक्र ना करें, हम आपका काम करवा देंगे।
1: ठीक है, अब जाओ, काम होने के बाद मिलना।
2: लेकिन वो लोग मिलेंगे कहाँ?
1: हसन भट्ट की कोठरी में वो दोनों होंगे। आज ही उनका काम तमाम कर दो।
2: ठीक है, हो जाएगा।
1: जाओ।

0: कौन? मुश्ताक, आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी।
1: सर, आज हम एक बार फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर पाएंगे।
0: अब मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं?
1: नहीं सारे, नहीं। बस हमने अपनी परेशानियों को खुलकर नहीं रखा और यही वजह थी कि हमारे बीच दूरियां बढ़ी।
0: अब ऐसा कभी नहीं होगा मुश्ताक, मैं तुमसे वायदा करती हूँ, अब हम अपने परिवार को संभालने की कोशिश करेंगे।
1: सारे, परिवार की ताकत को समझो। अगर तुम्हारे अब्बू और मेरे अम्मी अब्बू ने हमारी मदद ना की होती तो शायद हम कभी ना मिल पाते।
0: हाँ मुश्ताक, ये मुझे एक खौफनाक ख्वाब सा लगता है, पर अब ऐसा नहीं होगा मुश्ताक, हम एक रहेंगे, हम हर हाल में एक रहेंगे, मैं वायदा करती हूँ मुश्ताक।
1: सारे, हमें एक दूसरे पर एतबार रखना होगा, तभी हम अपने ताल्लुकातों में आने वाले पलों को अपने हिसाब से रख पाएंगे। और इसी से हमारे बीच कभी

0: नूरिया नहीं आएंगी।
1: आप ठीक कहते हैं मुश्ताक, पर एक बात मैं जानती हूँ कि आपका प्यार जहाँ भी होगा वहाँ हम हर मुश्किल को आसान कर लेंगे। पर वायदा करो कि तुम मुझ पर भरोसा रखोगे और मुझे इसी तरह प्यार करते रहोगे।
0: सारे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, और इसके लिए मुझ पर किसी का दबाव नहीं है, और मैं तुमसे कभी जुदा नहीं होऊंगा।
1: मुझे विश्वास नहीं होता कि हम फिर से एक हैं। हमारे जीवन में ये मुबारक दिन भी आएगा, मैं तो इसका विश्वास ही खो बैठी थी मुश्ताक।
0: आज हमारे लिए मुबारक दिन है, बहुत मुबारक दिन।
1: मुश्ताक, आज अगर आपने मेरी मदद ना की होती तो मैं कभी की मर गई होती।
0: सारे, इस मुबारक घड़ी में ऐसे तो ना बोलो।
1: आप नहीं जानते मुश्ताक, ये दिन मैंने किस तरह गुजारे हैं।
0: वो सब एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। सारे, अब हमें अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी है, और पुराने दिनों को याद कर यूं दुखी होने की जरूरत नहीं है।
1: मुश्ताक, अगर मुझे आपका प्यार ना मिला होता तो रसूल के जुल्म और उसके लिए जख्मों को मैं कभी ना सह पाती।
0: छोड़ो भी ये सब बातें, अब हमें नई जिंदगी शुरू करनी है। और ये देखो, ये लाल रंग का फेन मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। इसे मैंने अपने इन्हीं दोनों हाथों से तैयार किया है। जाओ जल्दी से इसे पहन लो।
1: इसे आपने बनाया है?
0: हाँ सारे, सिर्फ तुम्हारे लिए।
1: इसकी क्या जरूरत थी?
0: नहीं, तुम्हें हो या ना हो, पर मुझे थी। मैं चाहता हूँ कि दुनिया की सारी खुशी तुम्हारे कदमों में रख दूँ।
1: ऐसा ना कहो।
0: क्यों ना कहूँ, आखिर तुम मेरी बीवी हो।
1: मुश्ताक, आप अब मेरा साथ कभी ना छोड़ना। मैं अपने रास्ते से भटक गई थी और उसका नतीजा मैं भुगत चुकी हूँ।
0: अरे अरे सारे, तुम रो रही हो।
1: नहीं मुश्ताक, मैं रो नहीं रही, ये तो खुशी के आंसू हैं।
0: तुम ऐसा ना सोचो सारे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
1: ये आपका ही तो विश्वास है कि सारे आज आपके सामने खड़ी है, वरना मैं तो कभी की हिम्मत हार चुकी थी।
0: ओहो सारे, अब यूं ही बातें करती रहोगी या ये फेरे पहन कर भी दिखाओगी?
1: हाँ, मैं अभी इसे पहन कर आती हूँ, बस अभी आई।
0: सच कहूँ सारे, इस जोड़े में तुम बिल्कुल रानी लग रही हो। खुदा किसी की नजर न लगाए।
1: ओहो, देखो तो कौन आया है।
0: हाँ देखता हूँ।
2: तुम मुश्ताक हो?
0: जी कहिए।
2: और घर में कौन कौन है?
0: घर में मैं और मेरी बीवी सारे है।
1: मुश्ताक,
2: ये भी मारो।
0: सारे,
3: संग्रहालय से इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे धारावाहिक सिसकियां की 10वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के 65 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। पिछले महीने श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे।

रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है। भारत और लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन व्यापार एवं निवेश फोरम की बैठक कल इंदौर में आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि होंगे। इस फोरम में लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन देशों के वरिष्ठ राजनयिक भी शामिल होंगे। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और प्रदेश सचिव रजनीश अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को टिकट दिया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में शामिल हुए। उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया और पर्यावरण पुरस्कार भी प्रदान किए। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामेगाहारा हॉकी स्टेडियम में शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए बहनों का कार्यक्रम महिला सभा, प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की है।

क्यों न थोड़ा सा अलग बने, खुश रहने की सलाह न देकर खुश रहने की वजह बने। और देखिए आपके होठों पर एक मीठी सी मुस्कान सजाने हम लेकर एक बार फिर हाजिर हैं आपका अपना कार्यक्रम महिला सभा। तो स्वीकार कीजिए हेमलता खरे का प्यार भरा नमस्कार। वृक्ष नदियां और ये नीला आकाश धरती माँ का है मानो आशीर्वाद। जो करे निस्वार्थ प्रेम उससे, उसे प्रकृति सब कुछ दे देती है, अपने आंचल में हमें ममता से ढक लेती है। हाँ बहनों, प्रकृति ने स्वच्छ पर्यावरण के रूप में हमें मानो अपना आशीर्वाद दिया है। ये पर्यावरण ही है जो हमारा संरक्षण करता है, हमें जीवन देता है। मगर हम ही ना जाने क्यों स्वार्थवश पर्यावरण का विनाश करने में लगे हुए हैं। प्रकृति तो अपना प्यार दुलार हम पर लुटाती ही है और हमें यह सीख देती है कि खुशियां बांट देने से खुशियां कम नहीं होती। प्रकृति का हर रंग एक नई कहानी सुनाता है, जो दिल से महसूस कर सके वही समझ पाता है। आज हम अपनी खुशी के खातिर न केवल पर्यावरण से खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि अपने अस्तित्व को ही समाप्त करने में लगे हुए हैं। हाँ बहनों, यही वजह है कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने, उसकी सुरक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1972 में पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी और 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तभी से यह समुद्री प्रदूषण, अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग, टिकाऊ विकास और वन्य जीव अपराध जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने का एक मंच रहा है। वास्तव में पर्यावरण प्रकृति का हिस्सा है और मानव जीवन प्रकृति के साथ अनुकूलता में ही संभव है। हम प्रकृति के पोषण और संरक्षण के साथ ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, न कि उसे क्षति पहुंचाकर। इसीलिए पर्यावरण का संरक्षण बहुत जरूरी हो जाता है। हमारी अच्छी आदतें जैसे वृक्षों को सहेजना, जलवायु प्रदूषण रोकना, साथ ही हमारी बुरी आदतें जैसे पानी प्रदूषित करना, बर्बाद करना, वृक्षों की कटाई, प्लास्टिक का उपयोग पर्यावरण को प्रभावित करता है, जिसका नतीजा हमें प्राकृतिक आपदाओं का सामना करके भुगतना ही पड़ता है। तो बहनों, आज केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे, पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाना होगा। पौधारोपण, जल संरक्षण, ऊर्जा बचत, प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे, हरित क्षेत्र बढ़ाने होंगे और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन पर भी रोक लगानी होगी। हमारे पूर्वज प्रकृति को ईश्वर स्वरूप मानकर पूजते थे, उसका संरक्षण करते थे, मगर आज आधुनिकता की दौड़ में हम अपनी संस्कृति और संस्कार मानो भूलते से जा रहे हैं। हमें एक बार फिर अपनी सनातन संस्कृति की ओर लौटना होगा, अपनी परंपराओं की ओर लौटना होगा, तभी हम पर्यावरण के प्रति अपना कर्तव्य निभा पाएंगे, प्रकृति का ऋण चुका पाएंगे। तो क्यों ना सहेज कर रख लें इस प्रकृति को आने वाले कल के लिए, आने वाले अपनों के लिए। और आज बदलते परिवेश और बदलते समय में क्यों ना एक बार फिर संवार लें हम ये रिश्ते, ये मौसम और ये पल।

अभी बहनें सुन रही थीं मोनाली ठाकुर के स्वर में लुटेरा फिल्म का ये गीत। गीत लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया था अमित त्रिदेव ने। खिलते हुए फूलों में रंग हजार नजर आते हैं, खिलते हुए फूलों में रंग हजार नजर आते हैं, प्रकृति के खूबसूरत से नज़ारे सीधे दिल में उतर जाते हैं। सुबह की ठंडी हवा जब चेहरे को छू जाती है तो रूह तक में एक नई ताजगी सी उतर आती है। हाँ बहनों, ईश्वर ने प्रकृति के रूप में अनमोल धरोहर हमें सौंपी है और प्रकृति की ये खूबसूरती हमारे मन को सुकून देती है, शांति देती है। आज हर मन अवसाद, तनाव और निराशा से भरा है और हर कोई शांति चाहता है, सुकून चाहता है, और हमें ये सुकून

0: दूर रह सकते हैं। आज हम छोटे छोटे घरों, बालकनी या योगा सेंटरों तक सीमित हो गए हैं। काम के दबाव और समय की कमी ने हमें प्रकृति से दूर सा कर दिया है, तो चलिए थोड़ा सा समय ही सही खुद के लिए जरूर निकालें। तो चलिए फिर से एक बार प्रकृति की ओर लौटिए। खुला आसमान आपका इंतजार कर रहा है और सूरज, चांद, सितारे आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करेंगे। पंछियों की चहचहाट आपकी मेडिटेशन प्रक्रिया में सुधार करेंगे। खुले आसमान के नीचे ध्यान लगाने का अर्थ है प्रकृति की गोद में बैठकर ध्यान लगाना। दुनिया भर के विशेषज्ञ कहते हैं इस तरह ध्यान से तनाव कम होता है। यह आपके मन को स्थिर करने और एकाग्रता बढ़ाने में भी मदद करता है और वहीं यह प्रकृति के साथ आपका एक गहरा संबंध स्थापित करता है और यही दृष्टिकोण हमें सकारात्मक बनाता है और एक सकारात्मक सोच हमारे पूरे जीवन को सुंदर बनाती है। एक शांत और खुली जगह पर बैठें जहां आप प्रकृति को महसूस कर सकें। आंखें बंद करके चित्त को शांत होने दें, आसमान को महसूस करें, खुले विशाल आकाश के नीचे खुद के व्यक्तित्व को महसूस करें। हवा की सरसराहट, पंछियों की आवाजें, प्राकृतिक प्रतिध्वनियां, इन्हें जज करने की बजाय इन्हें अपने ध्यान का हिस्सा बनाएं। सुबह ध्यान में सूर्य की गर्माहट और रात में चांद की शीतलता को गहराई से महसूस करें। अब धीरे से आंखों को खोलें और आकाश की ओर देखें और महसूस करें कि मन को एकाग्र करना इतना भी मुश्किल नहीं है। तो रोज सूरज, चांद, सितारों पर ध्यान केंद्रित करें और प्रकृति से कहें धन्यवाद। कहीं बर्फ की चादर, कहीं हरियाली का नजारा है। कुदरत का हर एक रंग यहाँ कितना प्यारा है। धरती का श्रृंगार है वृक्ष, जीवन का आधार है वृक्ष। ऋषि मुनियों की इस धरती पर ईश्वर का अवतार है वृक्ष। हाँ बहनों, हमारी संस्कृति में वृक्षों को हमेशा से ही देव स्वरूप मानकर पूजा जाता रहा है। तो चलिए इसी विषय पर अधिक जानकारी के लिए हम आपको सुनवा रहे हैं यह वार्ता, वृक्ष हमारे पूज्य। वार्ताकार हैं सर्व मंगला रिचारिया।
1: बहनों, भारतीय संस्कृति में वृक्षों का विशेष महत्व है क्योंकि वे हमारे जीवन के प्राण हैं। पुराणों तथा धर्म ग्रंथों में पेड़ पौधों को बड़ा पवित्र और देवता के रूप में माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि में से सिर्फ पृथ्वी पर ही मानव जीवन है और उसकी वजह है पंच तत्वों से इसका निर्माण होना। पंच तत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व है वायु, और वायु हम प्राप्त करते हैं हरे भरे वृक्षों से। ईश्वर ने हमारी पृथ्वी को भरपूर प्राकृतिक वातावरण से सुसज्जित किया है। सारी धरती को हरियाली यानी हरे भरे वृक्षों की कीमती सौगात प्रदान की है, जिसकी बदौलत मानव एक स्वस्थ जीवन जी पाता है। जब से वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि पौधों में भी जीवन होता है, लोक विश्वासों में दृढ़ता आई है। इसलिए पाप और पुण्य की अवधारणा भी इसके साथ जुड़ गई और देवतुल्य वृक्षों का संरक्षण पुण्य व उनका विनाश करना पाप स्वरूप समझा जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो मनुष्य वृक्षों का आरोपण करता है, वृक्ष परलोक में उसका पुत्र होकर जन्म लेता है, और जो वृक्षों के पुष्पों को दान करता है वह समृद्धशाली होता है। आदि काल से ही मानव का प्रकृति के साथ गहरा संबंध रहा है। मनुष्य ने प्रकृति की गोद में ही जन्म लिया और इन वृक्षों के मीठे मीठे फलों को खाकर अपनी भूख को शांत किया और सूर्य की तपन से बचने के लिए इन्हीं वृक्षों को अपना आश्रय बनाया। सबसे महत्वपूर्ण प्राणदायिनी वायु यानी ऑक्सीजन भी इन्हीं वृक्षों से लेकर मानव ने अपनी निरंतरता को जीवित रखा। जैसे जैसे मनुष्य सभ्यता की सीढ़ियां चढ़ता गया, वैसे वैसे वृक्षों का उपयोग भी बढ़ता गया। संक्षेप में कहा जा सकता है कि वृक्षों की उपयोगिता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि अगर इस जगत में पेड़ पौधे न होते तो कुछ भी न होता। जी हाँ, वृक्षों के महत्व एवं गौरव को समझाते हुए हमारे पूर्वजों ने भी इसकी उपयोगिता एवं आराधना पर बल दिया है। बहनों, हमारी धार्मिक सभ्यता में हर वृक्ष की अलग अलग तरह से पूजा की जाती है। जैसे वट सावित्री के अवसर पर स्त्रियां अटल सौभाग्य देने वाले वट वृक्ष की पूजा करती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि वट वृक्ष की पूजा करने से परिवार के सदस्यों की आयु बढ़ती है। इसी तरह से पीपल के वृक्ष में भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पर जल चढ़ाने से व इसकी पूजा करने से संतान सुख मिलता है। इसके तने पर सूत लपेटना व परिक्रमा लगाने का विधान शास्त्रों में भी बताया गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे दीपक रखने से मानव जीवन में आने वाली सारी कठिनाइयां दूर होती हैं। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने भी इसे 24 घंटे ऑक्सीजन

0: देने वाला वृक्ष बताया है। बहनों, इसके अतिरिक्त तुलसी की नित्य पूजा करके जल चढ़ाना, उसके पास दीपक जलाकर रखना भारतीय नारियों का एक धार्मिक कृत्य है। तुलसी को विष्णु भगवान की प्रिया मानकर इसकी पूजा की जाती है। तुलसी दल का भी विशेष महत्व माना जाता है। यह अकाल मृत्यु तक को हर लेती है। यहाँ तक कि हम अपनी हर पूजा में तुलसी पत्र का उपयोग करते हैं। ऐसा भी कहा गया है, जब तक पूजा और प्रसाद में तुलसी पत्र न रखा जाए तो भगवान भी उस प्रसाद को ग्रहण नहीं करते हैं। बहनों, हम देखते हैं कि तुलसी का कितना महत्व है। इसके अतिरिक्त इसे औषधि के रूप में भी माना जाता है। तुलसी का उपयोग हम दवाइयों एवं लेप के रूप में भी करते हैं। प्रतिदिन 5 पत्ती तुलसी की खाने से हम बीमारी से दूर रहते हैं। सर्दी खांसी में भी तुलसी की पत्ती की चाय बनाकर पीने से खांसी सर्दी दूर हो जाती है। यहाँ तक कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में भी खाने की वस्तुओं एवं पानी में तुलसी डाल देने से अशुद्ध नहीं होता है। बहनों, हम देखते हैं कि हर वृक्ष का अपना अलग अलग महत्व है और हर जगह वृक्ष को अलग अलग तरीके से पूजा जाता है। जैसे गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इसके पत्ते पर भोजन करना शुभ माना जाता है। यहाँ तक कि केरल जैसे राज्य में भोजन थालियों में न परोसकर केले के पत्ते में खाना शुभ माना जाता है। इसी तरह से अशोक अष्टमी के दिन अशोक वृक्ष की पूजा दुख को मिटाकर आशा को पूर्ण करने के लिए की जाती है। बहनों, इसके अलावा आंवले के वृक्ष में भगवान का निवास मानकर कार्तिक मास में इसकी पूजा परिक्रमा करके स्त्रियां सुहाग का वरदान मांगती हैं तथा कार्तिक महीने में आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करना भी शुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त आम के वृक्ष के पत्ते, मंजरी, छाल और लकड़ी यज्ञ और अनुष्ठानों में उपयोग की जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि वृक्षों का उपयोग धार्मिक दृष्टि ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नीम। नीम एक ऐसा वृक्ष है जिसकी हर एक चीज उपयोगी है। जैसे नीम की पत्ती हम दवाई के रूप में करते हैं, ये कीटाणु नाशक होती है। साथ ही नीम की छाल एवं नीम की दातुन भी उपयोग में लाते हैं तथा नीम की पत्ती को चबाकर खाने से हमारे रक्त की शुद्धि होती है। अतः हम देखते हैं कि वृक्ष हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। औषधि के रूप में एवं धार्मिक दृष्टि से ये अपनी महत्वता बताते हैं। यहाँ तक कि ये हमें खाद्य पदार्थ तथा हमारे जीने के लिए उपयोगी प्राणवायु प्रदान करते हैं। अतः वृक्ष हर रूप में हमारे लिए उपयोगी है। बहनों, इन उपयोगों के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन वृक्षों का विनाश होता जा रहा है। आज मनुष्य अपनी जरूरतों के लिए वृक्षों की कटाई करता जा रहा है। कभी आपने ये सोचा है कि वृक्षों का दिन प्रतिदिन कटना हमारे लिए कितनी बड़ी समस्या बना सकता है? अगर प्राथमिक स्तर पर इसका परिणाम देखें तो हमारे लिए आवश्यक प्राणवायु ऑक्सीजन दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैस जिसे वृक्षों द्वारा अवशोषित किया जाता है वह वृक्षों के कटने से बढ़ती जा रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं और ऐसी ही समस्याएं आगे चलकर बहुत बड़ी हानि का कारण बन सकती है। जैसे हम देख रहे हैं कि वृक्ष के कटने से वर्षा भी अनियमित होती जा रही है, क्योंकि वर्षा का सबसे बड़ा स्रोत वृक्ष ही है। वृक्ष ही बारिश का काम करते हैं, को आकर्षित करते हैं, और जब वृक्ष ही न होंगे तो प्रकृति का असंतुलित होना स्वाभाविक है। अतः हम सभी यह जानते हुए भी अपनी शक्तियों को बढ़ावा देते जा रहे हैं और जिससे हमें जीवन मिलता है उसको हम काटते जा रहे हैं। बहनों, अपनी थोड़ी सी जरूरतों के लिए हम पृथ्वी का विनाश करते जा रहे हैं। आज जिस तरह से अपने लाभ के लिए वृक्षों को काट कर प्रकृति से खिलवाड़ किया जा रहा है, बिना यह सोचे कि आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम क्या होंगे। बहनों, जैसे जैसे हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वृक्ष लगातार कम होते जा रहे हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है तथा प्रदूषण, अनियमित वर्षा जैसे कई कारण सामने आते जा रहे हैं। अगर आज का मानव चाहे तो वह इस संतुलन को बिगड़ने से बचा सकता है, जैसे वृक्ष की कटाई कम करके, वृक्षारोपण करके। अतः वृक्ष हमारे जीवन के लिए अत्यधिक उपयोगी ही नहीं बल्कि हमारा जीवन ही है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम सभी लोगों को वृक्षारोपण के लिए जागरूक करें। अतः इसी प्रवृत्ति को प्रबल करके इसकी वृद्धि और संरक्षण में सहयोग करें। इसके अलावा हम हर माध्यम से बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी को वृक्ष आरोपित करने के लिए जागरूक करें और उन्हें इससे होने वाली समस्याओं के बारे में बताएं, जिससे आने वाले वक्त में हम अकाल तथा महामारी जैसे प्रकोपों से बच सकें। बहनों, अतः हम यह प्रण करें कि जितने वृक्ष काटे जाएं, उससे ज़्यादा लगाए भी जाएं, ताकि प्रकृति की सुरक्षा के साथ साथ प्रकृति की सुंदरता भी सुरक्षित रहे। कहा जाता है कि वृक्ष 10 पुत्रों के समान होता है, तो क्यों न हम वृक्ष लगाकर असंतुलित होते पर्यावरण और पृथ्वी के विनाश के संकट को कम करने में सहयोग करें। इसके अलावा हमारी हिंदू सभ्यता में ऐसे कई वृक्ष जैसे बेल, जामुन, महुआ, छेवला, पलाश की पूजा की जाती है और भी बहुत से उपयोग में लाया जाता है। इसलिए हमारा परम कर्तव्य है कि हम वृक्षों को काटने से बचाएं, ताकि हमारी प्रकृति फिर से वैसी ही सुंदर और सुसज्जित दिखे।
1: अभी बहनें सुन रही थी ये वार्ता वृक्ष हमारे पूज्य। वार्ताकार थी सर्वमंगला रिछारिया। और लीजिए अब सुनिए पहली फिल्म का ये गीत सोनू निगम, श्रेया घोषाल, मधुश्री और साथियों के स्वर में। गीत लिखा है गुलजार ने और संगीत दिया है MM करीम ने।

बहनों, हर किसी को साफ सफाई बेहद पसंद होती है। साफ सुथरा घर, सलीके से सजा हर सामान हमारे मन को खुश कर देता है और हम बहनों को तो साफ सफाई बेहद पसंद होती है, मगर आवश्यकता से अधिक साफ सफाई की आदत कभी कभी समस्या भी बन जाती है, या यूं कहें ओवर क्लीनिंग की आदत कभी कभी थकान और अवसाद का कारण बन जाती है। घरेलू महिलाएं हों या फिर कामकाजी, ये प्रभाव कई स्तरों पर दिखाई देते हैं, जैसे दिनचर्या पर प्रभाव, शारीरिक मानसिक थकान, तनाव, चिंता, साथ ही नींद और मनोदशा भी प्रभावित होती है, साथ ही परिवार से दूरी भी देखने को मिलती है। अधिक साफ सफाई की वजह से दूसरों को काम ना करने देना या किसी का भी काम ना पसंद आना, इसके अलावा ओवर क्लीनिंग की वजह से सामाजिक

गांव भी देखने को मिलता है, जैसे समारोह और यात्राओं से बचना क्योंकि घर गंदा ना हो जाए। ऐसी सोच हमारे मन पर हावी हो जाती है और अक्सर तनाव का कारण बनती है। इन आदतों से आत्मविश्वास भी कम होने लगता है। जो कभी सुकून का प्रतीक हुआ करता था, वही चिंता का कारण बन जाता है। घर की सफाई को लेकर बच्चों पर भी हम प्रतिबंध लगाते हैं, जिससे वे भी चिड़चिड़े हो जाते हैं। घर है, घर में लोग हैं तो गंदा तो होगा ही, तो साफ सफाई करें मगर तनाव न लें। सफाई जब मन की शांति छीनने लगे, तब रुक कर जरूर सोचें। घर तभी सुंदर है जब तक उसमें ऊर्जा, प्रेम और संतुलन है। यदि अधिक सफाई की आदत आपको उलझन में डाल रही है, तो मनोचिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। साथ ही अधिक समय सफाई को ना देकर परिवार के साथ समय बिताएं। योग, ध्यान, प्राणायाम के लिए भी समय निकालें। घर जीने के लिए होता है, दिखाने के लिए नहीं। थोड़ा बिखराव जीवन का हिस्सा है, विफलता का नहीं। बहनों, साफ सफाई तो बहुत जरूरी होती है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, मगर खुद को तनाव देकर नहीं। घर को स्वच्छ सुंदर जरूर बनाएं, मगर अपनों के साथ मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मुस्कुराने से मन के नकारात्मक विचार निकल जाते हैं और मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इसीलिए घर की साफ सफाई के साथ साथ मन की सफाई पर भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि मन और मकान को समय समय पर साफ करना जरूरी होता है, वरना मकान में बेमतलब का सामान और मन में बेमतलब की बातें जमा हो जाती हैं। इसीलिए बहनों, अच्छा सोचें, सकारात्मक सोचें, क्योंकि सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर, और तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसीलिए हमेशा अच्छा सोचें और खुश रहें। फिलहाल अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अगली मुलाकात तक के लिए अब अनुमति दीजिए हिमलता खरे को। नमस्कार।

0: अभी बहनें सुन रही थीं अपना कार्यक्रम महिला सभा, प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
5: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए। ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
5: आकाशवाणी है ना,
6: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
5: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
4: शाम सुहानी हो,
5: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
4: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भोले बिसरे पल, हर पल
5: सफर में
4: आपके साथ
5: आकाशवाणी।

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कुछ पर्यावरण गीत। पहले सुनते हैं चंद्रभूषण पाठक के स्वर में पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा ये गीत। प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की है।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे कुछ पर्यावरण गीत। प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की थी। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं सतीश भूतानी। प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की है। इनकी आवाज में आज आप सुनेंगे गीत, गजल और भजन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे सतीश भूतानी के गाए हुए कुछ गीत, भजन और गजल। प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर बाद।

0: कवि श्री राग तेलंग।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीतमय संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
3: किसकी चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास, बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी, धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत, चूचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे, बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात, हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल, पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर, नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी, आओ मिलकर पेड़ लगाए, धरती की खुशियाँ लाए।

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, जब पेड़ मुस्कुराते हैं तो ऋतुएं गुनगुनाती हैं, और जब नदियां बहती हैं तो जीवन का संगीत सजता है। हरियाली धरती का श्रृंगार है, नदियां उसकी धड़कन और आकाश उसका विस्तार है। प्रकृति का ये अनुपम काव्य जीवन के होठों पर गीत सजाता रहे, इसी कामना के साथ विश्व पर्यावरण दिवस पर सुनिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम।

पेड़ों की छाओं में शीतलता है, फूलों की खुशबू में जीवन का उत्सव है। जब वृक्ष खिलखिलाते हैं तब जीवन गुनगुनाता है। नदियों की कलकल, पत्तों की सरसराहट और पक्षियों का मधुर गान, यही तो वो संगीत है जिसके सुरों पर जीवन मुस्कुराता है।

0: telling lies? No, Papa. Open your mouth.
1: तो श्रोताओं, फूलों की सुगंध, बादलों की छांव और वृक्षों का स्नेह मनुष्य को मिलता रहे, इसी कामना के साथ

आइए संकल्प लें कि धरती को हम उतना ही सुंदर बनाकर रखें जितनी सुंदर ये हमें विरासत में मिली है। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर हैं। सूरत में वे 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क, बिजली और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और 220 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का लोकार्पण भी करेंगे। वहीं शाम को दमन में नामो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल और नामो अस्पताल सहित करीब 3,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के लिए 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एयर ट्रंक कंपनी भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करेगी। श्री मोदी ने कहा कि यह देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। उन्होंने कहा कि इससे भारत क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक केंद्र के रूप में और मजबूत होगा तथा रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने पहले समारोह में 66 लोगों को यह सम्मान दिया जा चुका है। इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कार स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार कला, विज्ञान, खेल, चिकित्सा और सामाजिक कार्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में विश्व पर्यावरण दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 8 श्रेणियों में 11 राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार भी प्रदान किए गए। यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा और रोपे गए पौधों की जियो टैगिंग कर उनकी निगरानी की जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में भी पौधरोपण, संगोष्ठी और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा,
1: आज के समय में पर्यावरण को लेकर हमारी सनातन संस्कृति की जो मूल अवधारणा या जीवन पद्धति थी, सृष्टि में हमारे कदम कदम पर हर शास्त्र में विस्तार से इसमें व्याख्या भी कही गई। अगर हम अपने इस चारों तरफ के वातावरण को देखें तो हमारी तो कोई भी पूजा पद्धति संध्या वंदन दीप प्रज्वलन के साथ, सूर्योदय देखेंगे तो सूर्य अर्घ्य देने के साथ, अगर भगवान को भोग भी लगाएंगे तो तुलसी दल के बिना भोग नहीं लगता है।
0: विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश के कई जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बैतूल में माचना नदी घाट पर केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री दुर्गादास उइके की मौजूदगी में पौधरोपण और जल संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं रायसेन में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृहद पौधरोपण किया गया, जबकि गुना में एनसीसी इकाइयों ने पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली। जबलपुर मंडल के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। वहीं सतना के बगहा में जिला स्तरीय वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंदौर में 9 जून से होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। कृषि विभाग के सचिव निशांत वरवड़े ने कल इंदौर पहुंचकर आयोजन स्थलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां आज भी जारी हैं। झाबुआ में सुबह तेज बारिश हुई, जबकि सीहोर, रायसेन और कई अन्य जिलों में भी मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने आज भोपाल और इंदौर सहित प्रदेश के 45 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नीमच, मंदसौर, श्योपुर सहित 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। केरल में मानसून 4 जून को पहुंच चुका है और प्रदेश में मानसून के 20 से 22 जून तक के बीच दस्तक देने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में मलेरिया निरोधक माह के तहत कल बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है संदेश के साथ एक प्रचार रथ को रवाना किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सदस्य प्रियंका नुंगो ने नर्मदापुरम प्रवास के दौरान विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए दिव्यांगजनों को कौशल विकास प्रशिक्षण तथा बैंक ऋण से जोड़ने के निर्देश दिए। प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी प्रोग्राम 3.0 के आवेदन आमंत्रित किए हैं। इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में स्नातक 18 से 30 वर्ष तक के युवा 16 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा 1 जुलाई को होगी। और प्रदेश में मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए 16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु घोषित की गई है। इस दौरान प्रदेश की सभी नदियों और जलाशयों में मछली पकड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। उसके उल्लंघन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि छोटे तालाब जिनका किसी नदी से कोई संबंध नहीं है उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया। और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्य जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खुण, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
0: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन SOCHM ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। SOCHM के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया

0: पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ. जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6.40 करोड़ पौधे लगाए गए हैं।
2: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ में जवानों ने लगभग 6.40 करोड़ वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40 लाख से 60 लाख वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉ. मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
3: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे यस एंड माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
4: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरण संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है, सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमेरिका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
5: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं। लोकल फॉर वोकल है, दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है, जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
6: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, दोपहर 2:30 का ये वक्त, जबकि कुछ फुर्सत जिंदगी चुरा ही लेती है, जी हाँ, तो इन फुर्सत के लम्हों में आइए कुछ सुरीले नगमे आपकी ही फरमाइश पर आप तक भेजते हैं। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है सरस्वती चंद्र फिल्म से, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की हैं, गीतकार इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। अनुरोध आप सबका है, चारमीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियानामल, पार्वती मोटवानी, राजेश, रेशम, मुकेश, भावना, सोमेश और यशराज। निम्भोरा से अशोक देशमुख, शरद देशमुख, बबन जोशी, शिवाजी चौक बुराला खुर्द से आदिनाथ वाघ, अमोग वाघ। जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट। घंटाघर चौक खंडवा से इसी गीत को पसंद करते हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया। और ये खत आया हुआ है सोनवा झारखंड से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी, वंदिनी, संतोषी, दीपक, संतोष, राहुल, अनु, तनु और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ओर से। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं सरस्वती चंद्र फिल्म का ये गीत। खतो किताबत की सदा रस्म को जारी रखना, भूल न जाना हमें, याद हमारी रखना।

आपकी फरमाइश की अगली पेशकश हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या और करिश्मा कामले, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता, गौरव और गरिमा शर्मा, नेपानगर से सुदर्शन शाह, ताविश शाह, कुंज शाह, पल्लवी, सुरभि, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम, गौतमनगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जूंधले और आरती जूंधले, और ये खत आया हुआ है मोटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल की ओर से। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं पालकी फिल्म का गीत। आवाजें मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की हैं। गीतकार हैं शकील बदायूनी और संगीतकार नौशाद। छिपाना था तुम्हें पहले ही रोज, अब किया पर्दा तो क्या पर्दा किया।

0: श्रोताओं, आपकी फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत बस कुछ ही पलों बाद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

इस अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपकी फरमाइश कार्यक्रम में। आइए कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है बहू बेगम। आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की हैं, बोल साहिर लुधियानवी के और धुन रोशन की। अनुरोध आप सबका है, ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, संगीता सरिता साहू, नेतराम और भूपेंद्र साहू। ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति, रियांश।

और गुड़िया ठाकुर। इसी गीत को पसंद करते हैं डोंडी लोहारा दुर्ग छत्तीसगढ़ से, देवशंकर तामुरिया, अजय रोशनी, बेबी पूजा, तुषार और प्रभा देवी तामुरिया। ग्राम सौगा मगरलोड धमतरी से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन और गजेंद्र कुमार चंदन। और प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से ये हमारे श्रोता हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूभाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति और अतुल। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं बहु बेगम फिल्म का ये गीत। ताउम्र तेरा इंतजार कर लेंगे, मगर ये रंज रहेगा कि जिंदगी

श्रोताओं, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ें उसके पहले एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस, निर्माता, अधिकार स्वामी, एग्रीगेटर, कंटेंट क्रिएटर्स को आमंत्रित करता है। ये कार्यक्रम सोर्सिंग, राजस्व साझाकरण या रेवेन्यू शेयरिंग, प्रायोजित अथवा स्पॉन्सर्ड एवं निःशुल्क या ग्रेटिस आधार पर किया जाएगा। ये सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए संशोधनों आदेशों के अनुरूप होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने से पहले प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों और आदेशों को

ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ये सभी दस्तावेज प्रसार भारती और आकाशवाणी की वेबसाइट्स पर उपलब्ध हैं। आकाशवाणी भोपाल से हिंदी, उर्दू अथवा सिंधी भाषा में रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग के लिए इच्छुक आवेदक ईमेल bhopal@prasarbharti.gov.in और hopairbhopal@gmail.com पर अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। सूचना समाप्त हुई। और अब आइए एक बार फिर गीत संगीत की ओर चलें। आपको सुनवाते हैं हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत। कमर कॉलोनी बड़वाह से ये चिट्ठी आई है प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली की ओर से। आदर्श नगर मलोट पंजाब से ये खत आया हुआ है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा इसके लिखने वाले हैं। सारणी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि, पंजाब राव और संदीप पाटिल की ये चिट्ठी है। सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन की भी यही फरमाइश है। बिलाईगढ़ से जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि देवांगन, जया, जानवी, तृप्तेश और इनके परिवार के सभी सदस्य। और ये चिट्ठी आई हुई है भाटापारा छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले श्रोता हैं सोहन जोशी, विष्णु साहू, अंकिता, अमृता जोशी और लोकेश जोशी। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी को फिल्म बॉयफ्रेंड में। गीतकार हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन। उनकी नजर की जुम्बिश से बन जाते हैं शोले शबनम, सारी दुनिया भूल गई है, याद करें अब किस किस को हम।

0: आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।
1: चुचू चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चुचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर हैं। सूरत में वे 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क, बिजली और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और 220 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एयर ट्रंक कंपनी भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और 5 GW डेटा सेंटर क्षमता विकसित करेगी। श्री मोदी ने कहा कि यह देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने पहले समारोह में 66 लोगों को यह सम्मान दिया जा चुका है। इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कार स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में विश्व पर्यावरण दिवस के राज्यस्तरीय समारोह में एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 8 श्रेणियों में 11 राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार भी प्रदान किए गए। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश के कई जिलों में पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बैतूल में माचना नदी के घाट पर केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री दुर्गादास उइके की मौजूदगी में पौधरोपण और जल संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इंदौर में 9 जून से होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। कृषि विभाग के सचिव निशांत वरवड़े ने कल इंदौर पहुंचकर आयोजन स्थलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। अब एक संक्षिप्त सा परिचय आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी छतरपुर द्वारा प्रस्तुत युववाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का प्रसारण समय है शाम 5:33, 6:30, रात 8:35 और रात 9:45। शाम 6:00 होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। रात 8:00 आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित कार्यक्रम। खेल जगत कार्यक्रम में रात 9:30 पर आप सुनेंगे नावेद इशरत की वार्ता फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026। आपकी फरमाइश प्रसारण समय रात 10:00 और राग रजनी कार्यक्रम में रात 10:30 हम आपको सुनवाएंगे पंडित राम स्वरूप रतौनिया का तबले पर बजाया रूपक ताल। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत शाम 7:21 पर किसान भाइयों के लिए ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण होगा। आज किसान भाई सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का निर्धारित क्रम आपकी पाती आपकी फिल्मी गीत। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज साथ ही DTH के ऑडियो चैनल वेब्स OTT और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। 3:02 हो चुके हैं मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब संपन्न होती है।

0: करना चाहिए और हर मुलाकात के लम्हों की अहमियत को समझना चाहिए, क्योंकि इन छोटी छोटी मुलाकातों की यादों से पूरा जीवन खुशबू से भर जाता है। तभी तो हमें भी रहता है ना इस छोटी सी मुलाकात का इंतजार, जो हेलो सहेली के माध्यम से हमें हमारी सखियों से मिलवाती है और दे जाती है यादों में सहेजने वाले ढेर सारे खूबसूरत पल। तो खत्म हुआ इंतजार, देखते हैं कौन और कहां से है आज की हमारी पहली कॉलर।
1: हेलो
0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रही हैं?
1: मैं भावना बोल रही हूँ, आदमपुर बिसार से, हरियाणा से।
0: अच्छा, हरियाणा से बोल रही हैं आप, तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैम मैं घर से ही अपना बुटीक है मेरा, सिलाई करती हूँ।
0: यानी आपका बढ़िया कपड़ों का है ना?
1: हाँ जी।
0: तो इस समय अच्छा चल रहा है?
1: तो, हाँ जी।
0: आप महिलाओं के कपड़े केवल बनाती हैं या सब मिक्स?
1: हाँ जी, महिलाओं के बनाती हूँ मैम, बच्चों के और महिलाओं के।
0: अरे वाह,
1: सारी गारमेंट्स बनाती हूँ मैम।
0: बहुत अच्छी बात है, आप अपना खुद का काम कर रही हैं। और बताइए आप आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहूंगी आज तेरा मेरा साथ है फिल्म का, तेरा मेरा साथ है।
0: बहुत प्यारा गाना है, तो चलिए सुनवाते हैं आपको ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, नमस्ते
0: नमस्ते, कौन बोल रही हैं आप और
1: मैम?
0: कहाँ से?
1: स्वाति सिंह बोल रहे हैं, मनकापुर गोंडा उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं आपसे।
0: जी अच्छा, तो आप बताइए अब कि आप क्या कर रही हैं?
1: मैम हम पढ़ाई तो पूरी कर चुके हैं, आईटीआई कर रहे हैं और मैम घर का काम करते हैं और आपका प्रोग्राम सुनते हैं। रेडियो सुनने का शौक बहुत ज्यादा है।
0: अरे वाह, बहुत ही अच्छा शौक है आपका। और
1: हाँ
0: तो आप जो पढ़ाई कर रही हैं उसमें आपको अच्छा पूरा इंटरेस्ट आता है, पूरी दिलचस्पी रहती है उसमें?
1: हाँ मैम रहती है, लेकिन इस समय गर्मी ज्यादा हो रहा है मैम, तो कहीं आना जाना नहीं हो पा रहा है, बस घर पे ही अपना तैयारी कर रहे हैं।
0: तो आपको मिल जाता है समय रेडियो सुनने का?
1: जी मैम मिल जाता है। मैम आज बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे तो आज आके मेरा कॉल लग गया, मेरा इंतजार खत्म हो गया। बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके।
0: बधाई हो आपको बहुत ज्यादा। और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए और साथ ही रेडियो भी सुनते रहिए। और आप अपने पसंद का कोई गीत बताइए जो आप सुनना चाहती हैं।
1: मैम मूवी का नाम है इज्जत और गाने की बोल है क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फिक्र छिपी रहे।
0: अच्छा, अरे वाह, बड़ी अच्छा गाना है।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, मैं
0: कौन बोल रहा है?
1: बरगढ़ जिला उड़ीसा से सन प्रभाकर बोल रही हूँ।
0: अरे वाह, उड़ीसा से बोल रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: जी मैं तो घर में हूँ, अभी तो शादी नहीं हुई और घर का कामकाज करती हूँ और
0: तो
1: सभी कार्यक्रम सुनती हूँ, आकाशवाणी के सभी केंद्र के कार्यक्रम सुनती हूँ।
0: पढ़ाई आपने करी है? पढ़ाई करती हैं
1: हाँ
0: आप?
1: पढ़ाई तो खत्म है, मेरे कब से मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है।
0: अच्छा, तो बताइए आपने क्या किया है?
1: मैं 10वीं पास हूँ जी,
0: अच्छा
1: 10वीं पास।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी अभी अभी तो हमारे जो सिंगर है सुमन कल्याणपुर जी, उनका निधन हो गया
0: जी
1: है,
0: जी
1: तो
0: हाँ
1: उनकी याद में गाना सुनेंगे। उनकी आवाज में तो जो भी उनके जो भी फिल्में हैं,
0: जी
1: मुझे तो याद नहीं फिल्मों के नाम, तो एक बढ़िया सा गाना उनकी याद में दे दीजिए।
0: बिल्कुल, मैं सुमन कल्याणपुर जी का ही मैं आपको एक गीत सुनवाती हूँ प्यारा सा।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। तो देखते हैं कौन और कहां से है हमारी सखी जिनका कॉल लगा है अभी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप पहले तो अपना नाम बताइए और फिर अपने शहर का नाम।
1: मैं इंदौर से ललिता मंडली।
0: अच्छा, ललिता जी इंदौर से बोल रही हैं। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं अभी हाउसवाइफ हूँ
0: जी। तो अभी इस समय गर्मियों के दिन चल रहे हैं, तो आप क्या करती हैं गर्मियों से थोड़ा सा राहत पाने के लिए?
1: गर्मियों से राहत पाने के लिए अपने पारंपरिक तरीके, नींबू शरबत।
0: बढ़िया।
1: और दिन में धूप में कम निकलना।
0: ये तो बहुत अच्छा।
1: ज्यादा जरूरत है धूप में निकलना तो फिर डॉक्टर जाना।
0: हाँ, तो आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में हम पति पत्नी और दो बच्चे हैं मेरे।
0: बच्चे छोटे हैं कि बड़े? बच्चे छोटे हैं आपके?
1: बड़े हो गए।
0: बड़े हैं, चलो तब सही है, परेशान नहीं करते होंगे आपको ज्यादा।
1: बड़े हो गए तो ज्यादा परेशान करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, ऐसा है। ऐसा भी होता है कि छोटे बच्चों के पीछे पीछे भागो और बड़े बच्चों के भी पीछे पीछे भागो। जी बिल्कुल। तो
1: आपसे बात करके बहुत आनंद आ रहा है मैम, आपसे पहली बार बात हो रही है।
0: अच्छा जी, तो आप बताइए कि आप जैसे कि अपने जो बच्चे हैं उनको आप जो गर्मियों के दिनों में बढ़िया बढ़िया नींबू के शरबत और बढ़िया बढ़िया चीजें बना बना के देती हैं?
1: देती हूँ, एक ऑफिस आता है तो उससे थोड़ा कम समय दे पाते हैं, 9 बजे निकल जाता है।
0: अच्छा,
1: तो रात को ही आता है 9 बजे। अच्छा, छोटा वाला रहता है तो हम दोनों माँ बेटे मजे करते हैं घर में।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। क्या नहीं क्या, अच्छा टाइम अपना निकलता होगा आपका। तो आप बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं अनिल कपूर की फिल्म है कसम, उसका शीर्षक गीत सुनना चाहती हूँ। कसम क्या होती है, कसम क्या होती है, जो तोड़ी ना जाए, जो छोड़ी ना जाए।
0: चलिए ठीक है, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: आप बताइए कौन बोल रही हैं और कौन से
1: मैं
0: शहर से?
1: रेखा वर्मा बोल रही हूँ। मैं उज्जैन से। जी
0: अच्छा, रेखा जी बोल रही हैं उज्जैन से। तो बताइए रेखा जी, आप
1: मैं
0: क्या करती हैं?
1: मैम हाउस वाइफ हूँ।
0: अच्छा,
1: जी
0: तो आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, एक लड़की है मेरी और एक बेटा है। अभी बेटे की शादी हुई है,
0: अरे
1: बहू
0: वाह,
1: भी।
0: यानी आप भी सासू माँ बन चुकी हैं ना?
1: जी जी मैम, अभी 2-3 महीने हुए हैं।
0: अरे वाह, तो आप कैसी सासू माँ हैं, कड़क वाली कि अच्छी वाली?
1: नहीं,
0: नहीं, आप अच्छी वाली होंगी, आपकी आवाज से मुझे लग रहा है ऐसा कुछ। तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है दिन में, मतलब अपने लिए जो समय बचता है उसमें आप क्या करना पसंद करती हैं?
1: मैम हम लोगों को तो घूमना अच्छा लगता है और शाम की टाइम तो हम रोज घूमने जाते हैं। मेरे साथ वाली फ्रेंड है बराबरी की,
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: हम रोज मतलब खाना खाने के बाद हम निकल जाते हैं साथ में घूमने के लिए।
0: चलिए, इतनी अच्छी बात है ना, क्योंकि अपने दोस्त का जब साथ मिल जाता है ना, तो समझिए फिर तो
1: जी
0: आप
1: मैम,
0: थोड़ा वॉक भी हो जाती है इस बहाने आपकी, और आपकी बातें भी हो जाती हैं, तो आपका जो तनाव भी
1: जी
0: थोड़ा बहुत रहता है ना, वो भी खत्म हो जाता है। तो बहुत
1: हाँ
0: बहुत ही
1: बिल्कुल।
0: अच्छा आप करती हैं जो ये वॉक करती हैं और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वॉक करती हैं।
1: इसलिए मैम अच्छा लगता है उनके साथ, और अब थोड़ा टाइम और मिल जाता है, घर पे बहू आ गई तो अब टेंशन फ्री है थोड़े से। जी
0: बिल्कुल, यानी कि आप किसी सास हैं और आप भी किसी की सास
1: हाँ
0: हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए आप कौन सा
1: जी
0: गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे राजा और रंग मूवी का सुनना है मैम। तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है। तू
0: अरे वाह, क्या प्यारी सी पसंद है आपकी, तो सुनवाते हैं आपको ये आपका पसंद का गीत।
2: कितनी

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: तो बताइए आपका नाम पहले और अपने शहर का नाम।
1: मैं बोल रही हूँ भगवती सोलंकी, दिल्ली से। हाँ
0: दिल्ली से बोल रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती
1: जी,
0: हैं।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, यानी आप जो चार दीवारें हैं ना उनको घर बनाती हैं।
1: हाँ जी
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपकी
1: तो संभालना जरूरी है ना, घर में तो सबसे, मैंने
0: बिल्कुल
1: सब बाहर ही जाएंगे तो घर को ही कौन संभालेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ना आप चार दीवारों को घर बनाती हैं। तो आपके परिवार में कौन कौन है।
1: मेरे परिवार में है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरे बेटे, दो बेटे हैं, बहू है, मेरी एक पोती है 6 साल की।
0: अरे वाह, यानी आप सास भी बन चुकी हैं और दादी भी बन चुकी।
1: हाँ जी, दादी भी बन चुकी हूँ।
0: जी, तो बताइए आप अपना जो समय रहता है, कोई खाली समय रहता है जो, उसमें आप अपना समय बिताने के लिए क्या करती हैं।
1: सबसे पहले तो मेरा का शौक है म्यूजिक सुनना, सुबह
0: अरे
1: से
0: वाह।
1: मेरा रेडियो चालू हो जाता है, रामायण से चालू होता है, भूले बिस्तर संगीत सरिता, भूले बिस्तर गीत, ये सारा प्रोग्राम चलता रहता है, सुन किचन में चलता रहता हूँ, मैं काम करती रहती हूँ।
0: बहुत बहुत अच्छी बात है ये। संगीत में अगर
1: हाँ
0: रुचि है ना
1: और
0: आपकी, तो समझिए आपका जीवन
1: हाँ
0: बहुत बहुत बहुत शांत है, बहुत अच्छा है।
1: हाँ और फिर गुनगुनाती भी हूँ और गाने भी सुनती हूँ। फिर मुझे घर का काम करना, साफ सफाई करना मुझे बहुत पसंद है।
0: ये अच्छी चीज
1: और
0: है।
1: हाँ, और दूसरा सबसे बड़ा है मुझे पौधे लगाना घर में। मैंने अपने आगे पीछे बालकनी में मैंने पेड़ ही करीब कम से कम 30-35 पेड़ लगाए हुए गमलों में सब में। सबसे
0: अरे वाह।
1: ज्यादा तो मैंने गुड़हल लगाया हुआ, मेरे घर में तुलसी इतनी है कि मेरे से भी बड़ी तुलसी का पेड़ है।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जिस तरीके से पर्यावरण दिवस भी है और आपने इतनी अच्छी
1: हाँ,
0: बात कही है कि आप पौधे लगा रही हैं, यानी कि सोचिए आप कितना अच्छा कर रही हैं।
1: मेरा पिया जो है जबलपुर का है, तो
0: जी
1: हाँ जबलपुर में है, तो जबलपुर में भी हम बचपन से इतने पौधे लगा के आए कि अब हम बाद में जाते रहे तो वहां पर हमें शरीफा इतना पेड़, अमरूद, शरीफा, सहजन की फलिया, इतने पौधे में पेड़ मतलब फल लगते रहे कि
0: जी
1: मुझे देख के खुशी होती थी। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज अपने आसपास हरियाली बना के रखो, जो समय हमारी जीवन देते बजवाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं।
1: गाना सुनूंगी जागो साइड खान का, नाचू तू बंसी बजा। हाँ
0: जी बिल्कुल, सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं यानी कि आरती श्रीवास्तव। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं पूर्णिमा बोल रही हूँ।
0: जी
1: पूर्णिमा सैगम, अभी तो तेलंगाना में रह रही हूँ।
0: अच्छा अच्छा,
1: गाने सुनती रहती हूँ।
0: आप बताइए क्या करती हैं आप?
1: कुछ भी नहीं, अभी तो सिर्फ मेरी बच्ची को संभालती हूँ।
0: कितना छोटा है आपका बच्चा?
1: अभी 2 साल की हुई है।
0: ओहो, इतनी छोटी सी है। तब तो आपको बहुत भाग दौड़ करते रहना पड़ता होगा उसके पीछे।
1: वो ज्यादा नहीं कर पाती पर मैं फिर भी उसके पीछे भागती हूँ।
0: जी बिल्कुल, छोटे बच्चों का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जी
1: हाँ, समझदार है, ज्यादा परेशान नहीं करती,
0: यानी अच्छी बच्ची है। जी तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम बचता है?
1: मुझे डांस करना अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है।
0: तो आप अपना डांस करती हैं या ऐसी अपनी मतलब आप छोड़ रखा है इस समय?
1: अभी ये छोटी है इसलिए छोड़ रखा है, बाकी मैं करती ही हूँ। मैं क्लासिकल डांस टीचर भी रह चुकी हूँ।
0: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो आपने सीखा हुआ यानी कि क्लासिकल?
1: जी मैंने कथक सीखा हुआ है, भरतनाट्यम भी सीखा हुआ है।
0: अरे अरे वाह, बहुत बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मुझे ये जो नृत्य की जो कला होती है ना, ये जो आप सीख लेते हैं तो हमको इतना एकदम तरोताजा रखती, कोई परेशानी हमें एकदम आसपास भी नहीं आती क्योंकि हम इतने ज्यादा उसमें खो जाते हैं ना, सारी परेशानियों का हल हमें अपने संगीत में मिल जाता है। तो
1: बीमारी सही कर दे डांस और म्यूजिक तो ऐसी चीज है।
0: जी एकदम फिट भी रहते हैं उसकी वजह से।
1: हाँ फिट भी रहते हैं बहुत।
0: जी तो आप बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
1: मैं कभी कभी मूवी का लता मंगेशकर की आवाज में मेरे घर आई एक नन्ही परी।
0: अच्छा, आपके घर एक नन्ही परी आई है। तो उसको सुनाने के लिए हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: जी।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, मैं रत्ना बोल रही हूँ,
0: हाँ
1: रत्ना सिन्हा,
0: अच्छा, रत्ना जी बोल रही हैं। कहाँ से?
1: बाराबंकी से
0: तो आप थोड़ा बताएंगे अपने बारे में, आप क्या करती हैं?
1: जी। मैं ऐसे तो हाउसवाइफ हूँ,
0: जी
1: मगर मेरा म्यूजिक के प्रति इंटरेस्ट काफी रहा है।
0: जी और वैसे तो हाउसवाइफ क्यों है यार, बड़ी गर्व से कही हाउसवाइफ है क्योंकि हाउसवाइफ का काम बहुत ज्यादा होता है, 24 घंटे का काम होता है
1: बिल्कुल, बिना रुके बिना थके जी
0: बिल्कुल, और काम करती रहती है और सब पूरे फैमिली, पूरा समझ लीजिए सारी फैमिली उनके पर निर्भर होती है।
1: और ऐसा कि पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए जो
0: बिल्कुल।
1: है।
0: आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, दो बेटे हैं, बहू है, पोती है छोटी
0: बहुत बढ़िया
1: सी
0: तब तो आप पोती के साथ खेलते खेलते आपका समय निकल जाता होगा अच्छे से
1: जी
0: तो
1: समय बीत
0: बताइए
1: जाता।
0: जी, तो आप बताइए, आपको पेड़ पौधों का शौक है?
1: जी बहुत बहुत पेड़ पौधों का शौक है, मतलब सुबह शाम पेड़ पौधों को निहारना, देखना, पानी वानी डालते
0: अच्छा
1: हैं
0: अच्छा आपने लगा
1: और
0: रखे हैं?
1: जी हाँ लगा रखे हैं, और चिड़ियों के लिए दाना है, पानी है, ये सब भी
0: अरे वाह, बहुत
1: रखते
0: बहुत
1: हैं
0: अच्छी बात है। गर्मियों के दिन में सोचिए वो चिड़िया पक्षी हैं, उड़ रहे हैं, उनको कहाँ से जो
1: हाँ
0: दाना पानी के लिए आपने उनका इंतजाम किया, बहुत अच्छी
1: जी
0: बात है
1: जी
0: ये।
1: जी
0: और साथ
1: चिड़ियों की चहचहाट जो है सुबह सुबह बहुत अच्छी लगती है
0: वही तो, हम जैसे अगर उनको पानी देते हैं या दाना कुछ उनको खाने के लिए रखते हैं ना,
1: जी जी
0: तो वो भी तो बदले में हमें
1: जी
0: अपनी चहचहाट देती हैं, अपनी खुशियां देती हैं ना
1: हाँ होती हैं,
0: तो
1: सब
0: बिल्कुल
1: आती हैं, सब खेलती
0: जी,
1: हैं, तो
0: जब
1: बड़ा
0: वो
1: अच्छा लगता
0: चहचहाती हैं तो हमारे आंगन में एकदम खुशियां बिखर जाती हैं, है ना?
1: है जी जी
0: तो
1: जी
0: आप बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: अभिमान फिल्म का गीत है, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी
0: बहुत अच्छा गीत है ये, और सुनवाते हैं आपको ये आपके पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली,
0: जी, तो आप बताइए पहले तो अपना नाम और अपने शहर का नाम।
1: मेरा नाम शीला निको से है। मैं
0: तो आप कहाँ से हैं?
1: चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट वरोरा महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, चंद्रपुर से बात कर रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउस वाइफ हूँ मैडम,
0: अच्छा,
1: घर में रहती हूँ और दृष्टिहीन हूँ मैं।
0: तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, जो आपको
1: मुझे
0: बहुत
1: गाना सुनना अच्छा लगता है।
0: गाना सुनना अच्छा लगता है आपको, और गाना गाना अच्छा लगता
1: जी
0: है?
1: हाँ, गाना गाना भी अच्छा लगता है, गाना सुनना भी अच्छा लगता है। मुझे
0: तो बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज?
1: जाफर फिल्म में का वो गाना सुनना है, तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है।
0: तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है, तो आपको सुनवाते हैं जानवर फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली।
0: जी, तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं।
1: मैं उड़ीसा गंजाम जिला से बोल रही हूँ।
0: जी, आप अपना नाम बताइए।
1: ममता दास मेरा नाम।
0: अच्छा, तो आप क्या करती हैं ममता जी?
1: मैं हाउस वाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो और आपके परिवार में कौन कौन है?
1: घर में मैं और मेरा हस्बैंड और मेरी दो बेटियां हैं।
0: अरे वाह, दो बेटी हैं आपकी, तो बड़ी हैं कि छोटी हैं?
1: हाँ, बड़ी हो गई है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं नर्सिंग की, बीएससी
0: अरे वाह,
1: नर्सिंग की।
0: बहुत अच्छी बात है। यानी सेवा वाली वो नौकरी कर रही है, वो पढ़ाई कर रही है जिससे कि वो सबकी सेवा कर सके, है ना? जी, तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है जब आपका खाली समय होता है तो?
1: मुझे सिलाई आती है तो मैं कभी खाली नहीं रहती। काम खत्म, घर की काम खत्म होने के बाद सिलाई कर लेती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है ये। आप अपना, ये अपना जो मनपसंद काम है वो आप करती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि

0: कि ना हमें, हम सभी को कोई ना कोई शौक होता है, कोई ना कोई हॉबी होती है, लेकिन क्या ना हम उसको
1: हाँ
0: पूरा नहीं कर पाते क्योंकि हम सोचते हैं अरे घर के काम है, ये सब कर लें फिर समय कहाँ मिलता है। लेकिन आपने उस चीज़ को अच्छे से किया है, तो आप क्या क्या चीज़ें सिल
1: बहुत
0: लेती हैं?
1: खुशी हो रही है कि आज सखी सहेली तो मेरी फोन लगी तो जून 5 में मेरी छोटी बेटी की बर्थडे है, जो जून 25 में मेरी बड़ी बेटी की बर्थडे है, तो
0: अरे वाह,
1: मुझे
0: जून में ही है दोनों बेटियों का
1: हाँ
0: बर्थडे।
1: हाँ और मेरी बहन की बेटी के जून 4 में है,
0: अच्छा,
1: तो कुछ हैप्पी बर्थडे की गीत सुनाई देंगे
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तरफ से भी उनको बहुत बहुत बर्थडे की, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो खूब आगे बढ़ें और आपका नाम रोशन करें। जी, तो आपने बताया कि आप सिलाई कर लेती हैं, तो आप क्या क्या सिलती हैं?
1: सलवार ब्लाउज सब सिलाई कर
0: अच्छा,
1: देती
0: सारी चीज़ें आप सिल लेती हैं। तो आपको बाहर के सिले हुए कपड़े खरीदने अच्छे लगते हैं, बाहर से शॉपिंग करती हैं, या अपने घर में आपको बनाना अच्छा लगता है?
1: हूँ। मुझे बनाना बहुत अच्छा
0: तो ये
1: लगता
0: तो बहुत अच्छी बात है, तो
1: है
0: बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे सुजाता फिल्म का गीत है ना,
0: सुजाता का कौन सा?
1: जियो 1000 साल की बात।
0: अच्छा ठीक है, तो चलिए सुनवाते हैं आपको, पसंद करिए ये गीत।

0: आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पंख लगाकर तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने तो हमें बांध ही लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी। चलते चलते आपको कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपकी कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं, जो हैं 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर फिर से एक बार 4002-4662 और एसटीडी कोड है 022। अब आप दूसरा नंबर भी नोट कर लीजिए, जो है 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और ध्यान रहे, लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी ना कभी तो कामयाब होते ही हैं, और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल नहीं लगाइए और अपनी सखियों को भी अवसर दीजिए अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक का और संपादन में हमारी सहयोगी बनी नम्रता टिकोड़े, और साथ ही विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का। आप आ गए? मुझे तो पता ही नहीं चला, भावना ने रसोई घर से निकलते हुए संदीप से कहा। अभी आया हूँ बस, माँ ने दरवाजा खोला। पता है तुम्हें, घंटी बजाने ही वाला था कि माँ ने दरवाजा खोल दिया, संदीप ने कहा। हाँ, खाना खिला दिया उन्हें, कह रही थी कि आप आओगे तो साथ में बैठकर खाएंगे, पर मैंने आपका ही नाम लेकर कह दिया कि उन्होंने कहा है कि माँ को जल्दी खाना खिला दिया करो, माँ के लिए लेट खाना खाना ठीक नहीं। मैंने खाना खाकर घूमने का और कह दिया, इसीलिए गई हैं शायद थोड़ा नाराज होकर। तुमने अच्छा किया भावना, ऐसी नाराजगी सर आंखों पर, शुगर में जल्दी खाना घूमना फिरना जरूरी है और माँ इस मामले में बेहद लापरवाह है। तुमसे नाराज होती हैं तो मैं ही कह दिया करूंगा। नाराजगी में क्या कह कर गई हैं पता है? कह रही थी जो हुक्म, अब तो जैसा आप कहेंगी वैसा ही करना पड़ेगा, भावना ने हंसते हुए कहा और फिर नाटकीय अंदाज में कहने लगी, सोचो जरा क्या क्या सुनना पड़ता है हमें। खैर कैसा रहा आज का दिन? भावना ने संदीप को पानी देते हुए पूछा। रोज की तरह ही था, बहरहाल मेरा एक सरप्राइज फेल हो गया। सोचा था इस बार तुम्हारा बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे, शादी को 2 साल हो गए पर तुम्हें कोई सरप्राइज ही नहीं दे पाया। एक पेमेंट मिलने की उम्मीद थी पर वो अब अगले महीने के लिए टल गई, और अगले ही हफ्ते तो तुम्हारा बर्थडे है। पता नहीं क्यों जो सोचता हूँ हो ही नहीं पाता, सैलरी में तो घर का खर्च ही मुश्किल से निकल पाता है और तुम्हें ज़्यादा खुशी नहीं दे पा रहा, क्या करूँ? संदीप ने गहरी सांस ली। अरे ऐसा क्यों कहते हो आप? आप इतना सोचते हो वही काफ़ी है, मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरा जन्मदिन आ रहा है। आपको तो याद भी था, कई सारे पतियों को तो अपनी पत्नी के जन्मदिन तक याद नहीं रहते। याद है वो दीपेश जी, अपनी पत्नी से ही पूछ बैठे तुम्हारा जन्मदिन कब पड़ता है, भावना हंसकर कहने लगी। बर्थडे फिर मन जाएगा, आपका साथ है तो सब बढ़िया है।

सब बढ़िया तो है भावना, लेकिन इस मन का क्या करें? तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा अगला बर्थडे बेस्ट होगा। मम्मी ने बताया था तुम्हें चंदेरी साड़ी लेने की बहुत इच्छा है। देखता हूँ बजट में बिठाते हैं, बर्थडे में ना सही बाद में ही सही, समझो वही तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा रहा। क्या कहा? भावना ने आश्चर्य से कहा, मम्मी जी ने बताया कि मुझे चंदेरी साड़ी लेनी है। आपको पता है मैंने जिक्र किया नहीं और मम्मी ने पहले ही कह दिया कि दीदी के लिए चंदेरी साड़ी लेनी है सबसे पहले। मम्मी जी के लिए तो हर चीज पहले उनकी बेटी के लिए आएगी, फिर बहू के लिए। बहू दिन भर उनका ध्यान रखे पर उनका मन तो अपनी बेटी में ही लगा रहता है। और तो और आजकल तो उनकी एक नई सहेली बन गई है, पड़ोस में नई किराएदार आई है ना मुक्ता, उससे आजकल मम्मी जी की खूब पट रही है। दो दिन से लगातार आ रही है और जब आती है तो मम्मी जी अपने कमरे के गेट भी बंद कर लेती हैं। कल मैं चाय लेकर पहुंची तो जाने क्या बात कर रही थी, मुझे देखकर बिल्कुल चुप हो गई, जैसे मेरी बुराई कर रही हो। और मैं पहुंच गई, इतने में दरवाजे की घंटी बजी। भावना अब छोड़ो ये बात, लगता है माँ आ गई, मैं दरवाजा खोलता हूँ तुम खाना लगाओ। लो मैं तो टहल कर आ भी गई और यहाँ खाना भी नहीं लगा मेज पर, और कोई हमसे कहता है कि खाना जल्दी खाया करो आप, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बेटा मैं बूढ़ी हूँ तो क्या हुआ, अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत तो तुम दोनों को भी होनी चाहिए, माँ ने थोड़ा डांटते हुए कहा। हाँ माँ आप सही कह रही हो, आगे से ध्यान रखेंगे, संदीप ने बात को संभालते हुए कहा और भावना से चुप रहने का इशारा किया। भावना को मम्मी जी की ये बातें ताने जैसी चुभ गई और उसके मन का रेडियो ये गीत गाने लगा। ससुर जी

और संदीप खाना खाने लगे। माँ अपने कमरे में सोने चली गई थी। भावना का मूड खराब हो चुका था। संदीप को पूरा एहसास था कि ज्वालामुखी फटने ही वाला है। वो तैयार था। देखा आपने क्या गलत कहा था मैंने? उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही तो कहा था ना। फिर भी कितना सुना दिया मुझे। इतना ध्यान रखती हूँ फिर भी कोई कदर नहीं मेरी। अरे वो भी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए कह रही थी, और तुमसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो तो मुझे कह रही थी भावना, संदीप ने बचाव में कहा। हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ, वो अक्सर ऐसा ही करती हैं। कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, मेरी कमियां ही बताती रहती हैं और दीदी की हर जगह तारीफ। मुझे तो लगता है मुक्ता से भी मेरी बुराई ही करती होंगी। भावना ऐसा क्यों सोचती हो? नजरिया बदलो अपना। नजरिया बदलने से कई बार पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तुम्हें क्यों लगता है कि माँ तुम्हारी बुराई ही करती हैं? तुम माँ को लेकर अपने पूर्वाग्रहों से बाहर तो निकलो, तुम्हें बेहतर लगेगा। घर में थोड़ी बहुत बातें तो होती ही रहती हैं, अब इसमें इतना बुरा मानने वाली बात क्या है? माँ भी तो तुम्हारा ध्यान रखती हैं, बस उनके तरीके थोड़ा अलग हैं। अब सोचो तुम्हारी मम्मी भी तो तुमसे कितना प्यार करती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो अपनी बहुओं से प्यार नहीं करती। तुम परीक्षा की तैयारी कर सको इसलिए तो माँ तुम्हारा काम में हाथ भी बटा देती हैं, और इस पर थोड़ा बहुत डांट भी देती हैं तो टाल दिया करो, संदीप ने समझाते हुए कहा। मुझे पता था आप यही कहोगे हमेशा की तरह। आजकल तो मम्मी जी अपनी सहेली के साथ व्यस्त रहती हैं, तो पूरा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। पढ़ाई कैसे हो?

तो पढ़ाई होगी भी कैसे? पूरा ध्यान तो तुम्हारा माँ पर ही लगा रहता है। हाँ, मुझे जो लगा कह दिया, भावना गुस्से में बोली। अच्छा अच्छा, तुम नाराज मत हो मेरी प्रिये, तुम गलत सोचती हो। सही सोच रखो, जब तुम्हारी मम्मी घर पर कहती हैं कि पहले मेरी बेटी के लिए ये चीज़ आएगी, तब तो तुम खुश होती हो, और माँ वो बात कहें तो बुरी लगती हैं। मेरी मम्मी की बात तो आप ही ना करें, वो ऐसी नहीं है, वो तो मेरी भाभी का बहुत ध्यान रखती हैं, पलकों पर बिठाती हैं उन्हें। ऐसा तुम्हें लगता है, थोड़ी बहुत बातें तो उनकी भी होती ही होंगी। छोड़िए इस बात को, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, ये तो मन की बात है, प्यार तो दिल तक पहुंच ही जाता है। अगर उनके मन में मेरे लिए स्नेह होगा तो पहुंचेगा। भावना, आज तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक दिन जरूर तुम्हें एहसास होगा कि मैं सही कह रहा था। बस समय रहते तुम्हें एहसास हो जाए।

अगले दिन भावना ने अपने मूड को ठीक किया। नया दिन, नई शुरुआत। मम्मी जी को चाय नाश्ता दिया। संदीप नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल चुका था। सब्जी अक्सर मम्मी जी ही बनाया करती थी, रसोई में भावना का पूरा साथ देती, लेकिन आज सुबह से ही उन्होंने मना कर दिया था। भावना, जो मन हो वो सब्जी बना लेना, मैं नहीं बना रही। और नाश्ता करके अपने कमरे में चली गई। और तो और, आज तो पूजा भी उन्होंने जल्दी जल्दी कर ली थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक सुनाई पड़ी। मम्मी जी अपने कमरे से तेजी से आईं, जैसे वो इस आने वाले का इंतजार ही कर रही थीं। दरवाजा खोला, भावना ने देखा मुक्ता। लो, आज तो ये सुबह से ही आ गई। दोनों अंदर कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। भावना का सिर चकरा गया। ऐसी भी क्या बात, मम्मी जी का पूजा पाठ में भी मन नहीं लग रहा, इतनी गपशप की लालसा। हे राम, ये मम्मी जी को जाने क्या होता जा रहा है। उस दिन शाम की चाय पीकर ही मुक्ता अपने घर गई। देर शाम जब संदीप घर आया तो समझ गया कि आज भी भावना का मूड कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। जैसे ही उन्हें एकांत मिला, उसने भावना से पूछ लिया, अब आज क्या हो गया। आज तो मुक्ता सुबह से ही घर आ गई थी, शायद मम्मी जी ने ही बुलाया था, और शाम की चाय पीकर ही घर गई। आज भी मम्मी जी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। दोपहर के समय तो खाना खाने के बाद मैं और मम्मी जी रोज रेडियो पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनते हैं। तुम्हें पता है, मम्मी जी का साथ देते देते मुझे भी रेडियो सुनने की आदत हो गई है। रेडियो सुनते सुनते मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। पर आज तो वो सखी सहेली सुनने भी नहीं आई। मैंने उन्हें बुलाया, फिर भी नहीं आई। कहा रात में सुन लूंगी या फिर कल सुनेंगे। तुम मुझे पहले बताओ, तुम्हें क्या बुरा लग रहा है, मुक्ता का आना या माँ का तुम्हारे साथ समय नहीं बिताना, या सखी सहेली उनके साथ नहीं सुन पाना। संदीप ने शरारत भरी मुस्कुराहट से पूछा। सब कुछ, मम्मी जी ने ऐसा अब तक कुछ नहीं किया। हम एक दूसरे पर कितना ही नाराज हों, पर हमें एक दूसरे की आदत हो गई है। तुम्हें कहीं मुक्ता से जलन तो नहीं हो रही है, संदीप ने चुटकी ली। मेरी जीवन संगिनी, ओ मेरी अर्धांगिनी, अपने दिल को बड़ा करो, संदीप ने नाटकीय अंदाज में कहा। और माँ से नहीं, मम्मी जी से कहो, जाइए मम्मी जी, जी लीजिए अपनी जिंदगी। और फिर थोड़ा संजीदा होकर कहने लगा, वैसे माँ के प्रति तुम्हारा ये स्नेह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, मैं कोई उनके दुश्मन थोड़े ही हूँ, आखिर उन्होंने मुझे

अगले दिन रोज की ही तरह संदीप ऑफिस के लिए निकल गया। मम्मी जी कुछ शांत सी थीं, अपने रोजमर्रा के कामों में लगी हुई थीं। भावना को उनकी शांति चुभ रही थी। वह कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात निकलवाती, पर मम्मी जी हाँ हूँ सा छोटा सा जवाब देकर चुप हो जाती। फिर वही शांति। दोपहर के बाद मम्मी जी के फोन की घंटी बजी और वो फोन लेकर अंदर चली गई। जब बाहर आई तो भावना ने कौतूहल से पूछा, क्या दीदी का फोन था? पर मम्मी जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। भावना को बड़ा बुरा लगा, ये मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? खैर अब मैं भी इन पर ध्यान नहीं दूंगी, अपना काम कर दिया, बाकी उन्हें जो करना है करें। मैं तो मन लगाकर पढ़ाई करूं जिससे मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, फिर इन्हें मेरी कदर होगी। और भावना ने ये सोचकर अपने सारे काम निपटा कर पढ़ाई करने बैठ गई। अगले कुछ दिन घर का माहौल ऐसा ही रहा। दिन गुजरे और वो खास दिन आ गया। आज भावना का जन्मदिन है। माँ ने सुबह सुबह भावना के बेडरूम का गेट खटखटाया, भावना जाओ दरवाजा खोलो, लगता है माँ आई है तुम्हें विश करने। इतने सुबह कौन विश करता है, बर्थडे के दिन भी चैन से सो नहीं सकते, भावना ने खींचते हुए कहा। संदीप ने नींद में ही कहा, तुम्हें पता है ना माँ हमें यूं ही सुबह सुबह चाय पिलाकर विश करती हैं। देखना तुम्हारे लिए स्पेशल वाली चाय भी लाई होंगी, मैंने कहा तो था तुमसे माँ हम में फर्क नहीं करती। ठीक है मम्मी जी के श्रवण कुमार, खोलती हूँ दरवाज़ा, भावना ने उठकर दरवाज़ा खोला। अरे मम्मी जी आप इतनी सुबह, हैप्पी बर्थडे बेटा, हमेशा खुश रहो, मैंने सोचा रोज तुम चाय पिलाती हो तो आज तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं चाय पिला दूं तुम्हें, ये लो गर्मा गर्म चाय, संजू के लिए नहीं बनाई, सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई है। भावना ने मुस्कुराकर चाय की प्याली अपने हाथ में लेकर टेबल पर रख दी और मम्मी जी ने भावना को प्यार से गले लगा लिया। फिर उन्हें भावना थोड़ी असहज लगी तो वो कहने लगी, अरे बेटा माफ़ करना, तुम्हें विश करने की उत्सुकता में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने तुम्हें बहुत जल्दी

दादिया, ठीक है तुम आराम करो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो उठ ही गई थी, आशीर्वाद दीजिए। और भावना ने ये कहकर उनके पैर छू लिए। मम्मी जी ने आशीर्वाद दिया।

माँ, मेरी स्पेशल वाली चाय कहाँ है? बस भावना को पिला दी, संदीप ने माँ को छेड़ते हुए कहा। वो तुम्हारे जन्मदिन पर मिलेगी, माँ ने हंसते हुए जवाब दिया। इतने में भावना चाय और नाश्ता लेकर आ गई। मम्मी जी, वाकई आपकी स्पेशल वाली चाय का कोई जवाब ही नहीं, और संदीप को देखकर बोली, लीजिए आप ये चाय पीजिए। पारिवारिक खुशनुमा वातावरण में सबने मिलकर चाय नाश्ता किया। भावना आज खुश थी, एक तो जन्मदिन की खुशी और उस पर मम्मी जी का प्यार भरा बर्ताव, जिसकी उसे हमेशा से चाह थी। मन ही मन सोच रही थी, बस आज दिन भर मम्मी जी ऐसी ही प्रेम वर्षा करती रहें और वो मुक्ता ना आए, बस मन गया मेरा जन्मदिन। इससे ज़्यादा कि मुझे उम्मीद भी नहीं है, यही बहुत है। संदीप को छुट्टी नहीं मिल पाई थी, सो वो ऑफिस के लिए चला गया। इधर भावना अपने कामों में लग गई, पर मम्मी जी का ध्यान दरवाजे की घंटी पर ही लगा था। और दोपहर ढलते दरवाजे की घंटी बजी। भावना कुछ काम कर रही थी, सो उसने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी कोई है दरवाजे पर, क्या आप देख लेंगी? लेकिन मम्मी जी जानबूझकर अपने कमरे में चली गई, जैसे कुछ सुना ही ना हो। अब भावना को गुस्सा आना लाजमी था। मन ही मन बुदबुदाई, काम कर रही हूँ पर नहीं कि दरवाजा भी मैं ही खोलूं, बाकी सब तो बहुत बिजी हैं। उसने दरवाजा खोला, उसके चेहरे का गुस्सा मुस्कुराहट में तब्दील हो चुका था। एक फूलों का गुलदस्ता और एक पार्सल, दोनों साथ में। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी दूर से उसे ताक रही थी। भावना बेहद खुश थी, खुशी खुशी मम्मी जी को बताया, मम्मी जी देखिए इन्होंने तो इतना बढ़िया सरप्राइज।

दिया है सुंदर फूलों का गुलदस्ता और ये गिफ्ट पार्सल। शायद इसीलिए आज ऑफिस चले गए हैं कि ये सरप्राइज दे सकें। बढ़िया है बेटा, गिफ्ट तो देखो क्या है। हाँ मम्मी जी। और उसने गिफ्ट को खोला और वो लगभग उछल पड़ी। चंदेरी की साड़ी, मम्मी जी याद है आपको, हम उस दिन देख रहे थे तो यही साड़ी मैंने ऑनलाइन पसंद की थी। इन्हें कैसे पता चला? उफ, मुझे ये साड़ी इतनी पसंद आई थी और उन्होंने पता नहीं कैसे पर मुझे मेरे बर्थडे पर ही ये गिफ्ट कर दी। मैं तो आज बहुत खुश हूँ मम्मी जी। कितनी बातें बना रहे थे कि इस महीने नहीं हो पाएगा, बजट नहीं है, और देखिए माँ भी उसकी खुशी देखकर खुश हो रही थी। भावना साड़ी लपेट कर नाच ही रही थी और उसके मन के रेडियो पर एक बार फिर से गीत बज रहा था। वो गीत था ये।

श्रोताओं नमस्कार। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ एवं न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। श्रोताओं शाम के 5 बजने को है। हमारे आज के प्रसारण की दूसरी सभा अब प्रारंभ होती है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे भोपाल केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत पहुंच गए हैं, जहां वे आज 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने आज हजीरा का दौरा किया और औद्योगिक तथा अवसंरचना कार्यों की समीक्षा की। वे आज एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पौधा लगाया और लार्सन एंड ट्रूबो के आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से विश्व पर्यावरण दिवस पर जल, जंगल और जमीन के संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में कहा कि पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत और वन्य जीव हमारे जीवन के आधार हैं। प्रदेश में मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए 16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु घोषित की गई है। इस दौरान प्रदेश की सभी नदियों और जुड़े जलाशयों में मछली पकड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके उल्लंघन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी प्रोग्राम 3.0 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में स्नातक 18 से 30 वर्ष तक के युवा 16 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां आज भी जारी हैं। मौसम विभाग ने भोपाल और इंदौर सहित प्रदेश के 45 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत है युवा मित्रों के लिए कार्यक्रम युववाणी। आज का यह कार्यक्रम आकाशवाणी
1: को मनाया गया था। यह दुनिया भर में सबसे बड़ा पर्यावरण जागरूकता मंच है, जिसमें 140 से अधिक देश आधिकारिक रूप से भाग लेते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि स्वच्छ हवा, पानी और सुरक्षित जैव विविधता के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, प्लास्टिक प्रदूषण और वनों की कटाई जैसी गंभीर समस्याओं को नियंत्रित करने पर इस दिन विशेष मंथन होता है। हर वर्ष एक खास थीम निर्धारित की जाती है, जैसे प्लास्टिक प्रदूषण का अंत, ताकि एक निश्चित लक्ष्य पर काम किया जा सके। पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए इस दिन व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाए जाते हैं और लोगों को पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह सिर्फ सरकारों का नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य तय करता है कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करें और कचरे का उचित निपटान करें। यह दिन हमें वनों, प्राकृतिक संसाधनों और लुप्त प्राय जीव जंतुओं के संरक्षण के प्रति अपना कर्तव्य निभाने का संदेश भी देता है। स्कूलों, कॉलेजों और कॉरपोरेट कार्यालयों में रैलियों, निबंध प्रतियोगिताओं और सेमिनारों के माध्यम से लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाता है। इसका मूल मंत्र आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और हरा भरा ग्रह बचाना है, ताकि वे भी सुरक्षित वातावरण में सांस ले सकें। साथियों, ये तो थी हमारी एक छोटी सी चर्चा विश्व पर्यावरण दिवस पर। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लेकर चलते हैं आपको वार्ता की ओर। वार्ता का विषय है रील्स बनाम रियल और हमारा युवा। वार्ताकार हैं अदिति शुक्ला। आइए सुनते हैं ये वार्ता।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अदिति और आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 675 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो आज हर युवा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, रील्स की दुनिया, जो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं। यही रील्स की दुनिया का हमारे रियल लाइफ में क्या असर पड़ता है, आज हम बात करेंगे रील्स वर्सेस रियल की। दोस्तों, आज का समय डिजिटल युग का समय है। मोबाइल फ़ोन अब केवल बातचीत का साधन नहीं रह गया है, बल्कि हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन गया है। सुबह आँख खुलते ही लोग सबसे पहले मोबाइल खोलते हैं और रात को सोने से पहले आखिरी बार भी मोबाइल ही देखते हैं। इन सब के बीच जो खाली समय मिलता है वो भी मोबाइल देखने में ही चला जाता है। और इस सब में सबसे ज़्यादा अगर युवाओं को कोई चीज़ आकर्षित कर रही है तो वो है सोशल मीडिया रील्स। कुछ सेकंड की छोटी छोटी वीडियोस आज लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। मनोरंजन, फैशन, डांस, कॉमेडी, फिटनेस, शिक्षा, यात्रा, खाना बनाना, हर तरह की जानकारी अब रील्स के माध्यम से ही मिल रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम रील्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर रील्स धीरे धीरे हमें नियंत्रित करने लगी हैं? क्या यह केवल मनोरंजन है या फिर हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रही हैं? आइए आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। श्रोताओं, अगर हम कुछ साल पीछे जाएं, तो लोगों के पास खाली समय में करने के लिए अलग अलग चीज़ें हुआ करती थीं। कोई किताबें पढ़ता था, कोई दोस्तों के साथ समय बिताता था, कोई खेल खेलता था या फिर परिवार के साथ बैठकर बातें किया करता था। लेकिन आज की स्थिति काफ़ी बदल गई है। जैसे ही लोगों को खाली समय मिलता है, वे तुरंत मोबाइल खोलकर रील्स देखने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि केवल 2 मिनट के लिए मोबाइल खोलते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता कब 1 घंटा निकल गया। यही रील्स की सबसे बड़ी ताकत है।

रेडियो इतनी तेजी से बदलती है कि हमारा दिमाग लगातार नई चीजें देखने का आदी हो जाता है। वैसे रील्स का सकारात्मक पक्ष भी है। आज बहुत से युवा अपने हुनर को दुनिया के सामने ला पा रहे हैं। छोटे शहरों और गांवों के युवा भी अपनी प्रतिभा दिखाकर पहचान बना रहे हैं। कोई गाना गाकर लोकप्रिय हो रहा है, कोई डांस से लोगों का दिल जीत रहा है, तो कोई शिक्षा से जुड़ी जानकारी देकर दूसरों की मदद कर रहा है। आज कई शिक्षक भी रील्स के माध्यम से कठिन विषयों को आसान भाषा में समझा रहे हैं। फिटनेस ट्रेनर्स स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दे रहे हैं। छोटे व्यवसाय करने वाले लोग अपने काम का प्रचार कर रहे हैं। यानी रील्स केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि रोजगार और अवसर का भी मंच बन चुकी है। कई युवाओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना करियर बनाया है। कुछ लोग कंटेंट क्रिएटर्स बने, कुछ वीडियो एडिटर्स, तो कुछ डिजिटल मार्केटर्स और सोशल मीडिया मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इससे यह साफ है कि अगर सही तरीके का उपयोग किया जाए तो सोशल मीडिया युवाओं के लिए नए अवसर के दरवाजे खोल सकती है। लेकिन दोस्तों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। रील्स की दुनिया जितनी आकर्षक दिखाई देती है, वास्तविक जीवन उतना आसान और परफेक्ट नहीं होता। सोशल मीडिया पर अक्सर लोगों की जिंदगी का केवल एक अच्छा हिस्सा दिखाई देता है। महंगे कपड़े, शानदार होटल्स, घूमना फिरना, लग्जरी गाड़ियाँ, हमेशा खुश रहने वाले चेहरे, ये सब देखकर कई युवाओं को लगता है कि उनकी जिंदगी दूसरों से कम अच्छी है। धीरे धीरे तुलना करने की यह आदत आत्मविश्वास को कमजोर करने लगती है। लोग सोचने लगते हैं कि वो दूसरों जितने सफल या सुंदर नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली जिंदगी पूरी सच नहीं होती। कैमरे के पीछे का संघर्ष, तनाव और मेहनत भी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। आज कई युवा केवल लाइक्स और व्यूज पाने के लिए अपनी असली पहचान बदलने लगे हैं। कुछ लोग ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो केवल लोगों का ध्यान खींचे, और दूसरों की नकल करते करते वो अपनी असली पहचान खोने लगे हैं। दोस्तों, आपने शायद ध्यान दिया होगा कि अब लोग किसी भी खूबसूरत जगह पर या तो घूमने जाएं या फिर परिवार के साथ बैठें, कैमरा पहले खुल जाता है। धीरे धीरे हम अपने पलों को जीने की जगह उसे रिकॉर्ड करने में ज्यादा व्यस्त हो रहे हैं। इसका असर हमारे रिश्तों पर भी पड़ रहा है। पहले परिवार के लोग साथ बैठकर बातें किया करते थे,

0: ना तनाव और चिंता को बढ़ा सकता है। कई युवाओं में अकेलापन की भावना भी बढ़ रही है। श्रोताओं, हमें यह समझना होगा कि तकनीक हमारे लिए ही बनी है, हम तकनीक के लिए नहीं। मोबाइल और सोशल मीडिया का उपयोग तभी तक अच्छा है जब तक वह हमारी जिंदगी को आसान बनाए, ना कि हम पर हावी हो जाएं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम सोशल मीडिया का उपयोग संतुलित तरीके से करें। अगर आप रील्स देखते हैं तो अपने समय की सीमा तय करें। हर समय फ़ोन हाथ में रखने की आदत को कम करें। दिन का कुछ समय मोबाइल के बिना बिताने की कोशिश करें। दोस्तों और परिवारों के साथ आमने सामने बैठकर बातचीत करें, किताबें पढ़ें, खेल कूद में हिस्सा लें, संगीत सुने और प्रकृति के बीच में समय बिताएं। अपनी वास्तविक जिंदगी को सोशल मीडिया की दुनिया से ज़्यादा महत्व दें। और सबसे ज़रूरी बात, खुद की तुलना किसी और से मत करिए। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है, हर किसी का संघर्ष अलग होता है। सोशल मीडिया पर दिखने वाली चमक हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होती। दोस्तों, रील्स की दुनिया हमें मनोरंजन, जानकारी और अवसर देती है, लेकिन हमें यह तय करना होगा कि हम उसका उपयोग समझदारी से करें। तकनीक तभी फायदेमंद है जब हमारे नियंत्रण में रहे। हमें डिजिटल दुनिया और वास्तविक जीवन के बीच सही संतुलन बनाना सीखना होगा, क्योंकि असली खुशियाँ लाइक्स और व्यूज में नहीं, बल्कि परिवार के साथ बिताए समय, सच्ची दोस्ती, अच्छे स्वास्थ्य और मन की शांति में होती है। तो आइए हम सब भी यह संकल्प लें कि सोशल मीडिया का उपयोग करेंगे, लेकिन उसे अपनी जिंदगियों पर हावी नहीं होने देंगे। रील्स देखेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे, लेकिन अपने वास्तविक जीवन और रिश्तों को कभी नहीं भूलेंगे। इसी संदेश के साथ मैं अदिति आप सभी से विदा लेती हूँ। यह कार्यक्रम सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार
1: दोस्तों, अभी हमने सुनी ये वार्ता जिसका विषय था रील्स बनाम रियल और हमारा युवा, जिसमें वार्ताकार थीं अदिति शुक्ला। आइए साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको लेकर चलते हैं हमारी अगली चर्चा की ओर, जिसका विषय है प्राकृतिक खेती। यह खेती रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और बाहरी आदानों यानी इनपुट्स पर निर्भरता को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य रखती है। इसका मुख्य उद्देश्य जैविक कचरे और प्राकृतिक पोषक तत्वों का उपयोग करके मिट्टी के स्वास्थ्य और सूक्ष्म जीवों को पुनर्जीवित करना है। इसमें फसलों की वृद्धि और कीट नियंत्रण के लिए गाय के गोबर, गौमूत्र, गुड़ और बेसन से बने जीवामृत तथा बीजामृत का प्रयोग होता है। यह प्राकृतिक दृष्टिकोण किसानों की खेती की लागत को लगभग शून्य कर देता है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है। यह विधि पर्यावरण के अनुकूल है, जो भूमिगत जल को प्रदूषित होने से बचाती है और जैव विविधता को बढ़ावा देती है। खेत की नमी को बनाए रखने और खरपतवार को रोकने के लिए मिट्टी को कार्बनिक पदार्थों से ढकने की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रणाली में पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, जिसमें वर्षा जल का अधिकतम और कुशल उपयोग सुनिश्चित होता है। प्राकृतिक तरीके से उगाई गई उपज रसायन मुक्त, पौष्टिक और मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक होती है। इसमें कम से कम जुताई की जाती है, जिससे मिट्टी की प्राकृतिक संरचना और केंचुए जैसे मित्र जीवों को नुकसान नहीं पहुंचता। इसमें मुख्य फसल के साथ अन्य सहायक फसलें और पेड़ भी उगाए जाते हैं, जो मिट्टी की नाइट्रोजन क्षमता को प्राकृतिक रूप से बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये तो थी एक छोटी सी चर्चा प्राकृतिक खेती पर। आइए श्रोताओं, आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

साथियों, अभी हमने जो ये गीत सुना ये था फिल्म रश से, जिसके गायक थे ऐश किंग, मुअज्जम और रिजवान अली खान, जिसके गीतकार थे आशीष पंडित और संगीत से सजाया था प्रीतम ने। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको लेकर चलते हैं हमारी अगली चर्चा की ओर, जिसका विषय है गांव के विकास में युवाओं की भूमिका। युवा किसान वैज्ञानिक तरीकों, जैविक खेती और ड्रम सीडर या ट्रैक्टर जैसे उन्नत उपकरणों का उपयोग करके कृषि उत्पादन को कई गुना बढ़ा सकते हैं। गांव में युवाओं द्वारा ग्रामीणों को डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन सरकारी सेवाओं जैसे आधार अपडेट, बिल भुगतान के बारे में जागरूक किया जा सकता है। शिक्षित युवा अपने गांव के बच्चों को मुफ्त ट्यूशन और मार्गदर्शन देकर शिक्षा का स्तर ऊपर उठा सकते हैं और ड्रॉपआउट दर को कम कर सकते हैं। युवा बढ़ईगिरी, सिलाई, कंप्यूटर जैसे प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करके अन्य ग्रामीणों विशेषकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। युवा स्वच्छता अभियान चलाकर शौचालय निर्माण को प्रेरित करके और स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर गाँव को बीमारियों से मुक्त रख सकते हैं। वृक्षारोपण, जल संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त गांव का अभियान चलाकर युवा पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। स्थानीय उत्पादों जैसे हस्तशिल्प, शहद, अचार को ऑनलाइन माध्यमों और सोशल मीडिया से जोड़कर युवा उन्हें उचित बाजार दिला सकते हैं। गांव में खेल के मैदानों का विकास करके और टूर्नामेंट आयोजित कर युवा पीढ़ी को नशे और गलत आदतों से दूर रखा जा सकता है। युवा ग्राम पंचायत और सरकारी अधिकारियों के बीच की कड़ी बनकर ग्रामीणों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिला सकते हैं। युवा वर्ग बाल विवाह, दहेज प्रथा और लिंग भेद जैसे सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ

आवाज उठाकर समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। किसी भी प्राकृतिक आपदा या संकट के समय युवा दल वॉलंटियर के रूप में आगे आकर गांव की सुरक्षा और राहत कार्यों में भी अहम योगदान दे सकते हैं। कुछ इन कार्यों के द्वारा गांव के विकास में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बन सकती है। युवाओं को इस बारे में सोचना चाहिए। साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी गांव के विकास में युवाओं की भूमिका विषय पर। आइए अब आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

साथियों, अभी हमने ये जो गीत सुना ये था फिल्म बॉबी से, जिसमें आवाज़ थी शैलेंद्र सिंह की, जिसके गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए साथियों, अब आपको दे देते हैं रोजगार सूचना भी। एसएससी सीजीएल यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन योग्य उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम है ग्रुप बी एंड सी। पदों की संख्या है 12,256, जिसमें आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 32 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी, जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है, जिसकी शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट यानी www.ssc.gov.in पर विजिट भी कर सकते हैं। ना चाहते हुए भी वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। दीजिए अनुमति अपने मित्र अनुपम खरे को। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। इसके अंतर्गत लीजिए सबसे पहले सुनिए धुरंधर द रिवेंजर से ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप गीत सुन रहे थे फिल्म नायक से। यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। इस गीत के जो इस गीत में संगीत दिया था वो था एआर रहमान का और बोल थे आनंद बख्शी के। श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म ओम शांति ओम से। इस गीत को गाया है शान, उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान ने और बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने, विशाल शेखर का संगीत।

आकाशवाणी जबलपुर से श्रोता आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म न्यूयॉर्क से, जिसे गाया है केके ने, संगीत दिया है प्रीतम ने और बोल हैं संदीप श्रीवास्तव के।

कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं, ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म नो एंट्री से। सोनू निगम का गाया ये गीत, इसे संगीत में पिरोया है अनु मलिक ने और बोल हैं समीर के।

0: लीजिए, अब सुनिए आकाशवाणी जबलपुर से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। श्रोताओं, शाम 6:30 बजे आप सुन सकेंगे लोक संगीत में मन्नूलाल सेन के गाए लोकगीत। शाम 7:21 पर सुनिए किसान मित्रों का पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत। रात 9:00 समय होगा न्यूज एट 9 में समाचार प्रसारण का। रात 9:30 सुनिए फिल्म संगीत। रात 10:00 होगा शास्त्रीय संगीत का प्रसारण, जिसके अंतर्गत सुनिए पंडित भीमसेन जोशी की ख्याल गायकी भीम पलासी। और श्रोताओं के भेजे गए पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन सुनिए रात 10:30। आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: प्रदेश है, आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया अभूतपूर्व चुनौतियों के दौर से गुजर रही है। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा है और गैस सप्लाई चेन चरमरा रही है। मुझे इस बात का संतोष है कि 140 करोड़ भारतीयों की साझा प्रयासों से देश ऐसे हर संकट का मजबूती से सामना कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में अधोसंरचना विकास को पर्यावरणीय संवेदनशीलता और दीर्घकालिक सतत विकास की अवधारणा के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश सरकार की प्राथमिकता आधुनिक सड़क एवं परिवहन नेटवर्क के निर्माण के साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और हरित विकास को बढ़ावा देना है। भारत के यात्री वाहन बाजार में मई माह में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री दर्ज की गई है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद यह वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन अगले महीने की 31 तारीख तक खुले रहेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं जो 15 मार्च से शुरू हुई हैं, वे केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। और प्रदेश में मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए 16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु घोषित की गई है। इस दौरान प्रदेश की सभी नदियों और इनसे जुड़े जलाशयों में मछली पकड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और उल्लंघन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: श्रोताओं, हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:00 श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शब्दांग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
3: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
2: ऊपरकोट मोहल्ला चकुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
3: और डोंडी दोहरा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
2: और मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
3: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना, कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहाँ रेती हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
2: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शैडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है?
3: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
2: जी,
3: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं।
2: जी,
3: यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
2: जी,
3: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
2: श्रोताओ, जहाँ तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है, मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
3: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाशगंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते हैं।
2: क्या बात है!
3: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
2: क्या बात है! श्रोताओं, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कौमिक गांव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
3: और श्रोताओं, ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता
2: जी।
3: है। यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
2: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बच्चे भूटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
3: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गांव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता
2: जी।
3: है। यहाँ आज भी लोग पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं।
2: जी,
3: इस डाकघर की स्थापना 5 नवम्बर 1983 को हुई थी।
2: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओ, सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है, यहाँ के डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
3: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाक घर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाक घर किस गांव में पड़ता है?
3: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
2: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
3: कक्षा 4 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: खास ऐलान।
3: शांत शांत, आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
4: हाँ हाँ महाराज, महाराज बताइए, हम आपकी
3: सेवा में सदैव तत्पर।
4: हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
3: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
5: जी महाराज, पूछिए, क्या प्रश्न है आपका?
3: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
1: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
0: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
3: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
0: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।
6: जी महाराज,
7: महाराज की जय हो।
8: महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो।
3: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
0: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
3: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
4: महाराज ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
3: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
4: इसमें संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़कर थे।
3: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
4: धन्यवाद महाराज।
0: अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
4: भाई क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा
9: हुआ? मेरे साथ मिला, मुझे भी कैसे हो सकता है
4: यार, क्या सबको नकली मिला? तुम भी नकली, तुम क्या कुछ नकली कराया था?

0: नकली हीरा दे सकता है?
1: नकली कैसे आ गया?
2: अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया,
0: सच में भीम ने
2: बोला कि नकली है।
3: महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय।
4: शांत, क्या समस्या है?

0: पूछने महाराज।
1: कहिए, मेरी आज्ञा है, आप सभी निसंकोच कहिए।
0: धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। महाराज, हमने इन हीरो की जांच जौहरी से करवाई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली है महाराज।
1: क्या? और कोई शंका?
0: जी जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है, बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
1: ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए। पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
2: महाराज की जय! महाराज की जय! महाराज की जय!
3: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
5: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलारू मैं चल चलू।

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। ये संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। ये जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है, तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी

संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है।

0: चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं, लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में ये तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओं, हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उमंग। श्रोताओं, हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही देर में, कीजिए बस जरा सा इंतजार।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी जबलपुर है। शाम के 6:30 बज चुके हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है लोक संगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए मन्नूलाल सेन के गाए हुए ये लोकगीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ लोक संगीत का एक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। इस कार्यक्रम के तहत सुनिए मानस राय चौधरी के गाए ये गीत।

0: राग मेरे।
1: श्रोताओं, इसी गीत के साथ सुगम संगीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य के विकास को गति मिलेगी और लोगों का जीवन बेहतर होगा। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे जहां वे लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया।

0: जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक रही है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से जबरन कब्जा कर रखा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% रहने का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत को SU-57 लड़ाकू विमान कार्यक्रम में शामिल करना चाहता है। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मेगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has launched various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat today. Addressing a public gathering on the occasion, Prime Minister Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. He said the current global energy crisis highlights the critical importance of self-reliance in energy.
2: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city. He lauded Surat's circular water economy model and the Waste to Wealth initiative, which has turned into a mass movement over the last 12 years. The Prime Minister is scheduled to visit Daman later today to inaugurate and lay the foundation stone for various projects worth around 2,970 crore rupees. These projects include major healthcare and aviation infrastructure. He will also lay foundation stone for crucial maritime projects for the Union Territory of Lakshadweep. India's economy has maintained strong momentum in 2025-26 with real gross domestic product or GDP estimated to grow by 7.7% as compared to 7.1% in 2024-25. The Ministry of Statistics and Program Implementation today released the provisional estimates of annual GDP for the financial year 2025-26 and quarterly estimates of January to March this year. Prime Minister Narendra Modi has said that it reflects the inherent strength of Indian economy, the success of reforms and the hard work of 140 crore Indians. In a social media post, Mr. Modi said, government will leave no stone unturned to further ease of living, ease of doing business and increase opportunities for the youth. Union Home Minister Amit Shah has said, Prime Minister Narendra Modi is working with the goal of building a developed India by 2047. Addressing the Prahari Sammelan at the Lankamura border outpost along the India-Bangladesh international border in Tripura today, the Home Minister emphasized that making the nation safe and secure is absolutely essential before achieving complete development. He highlighted that it is equally crucial to keep the youth away from drug abuse and to thwart all attempts to damage the national economy through fake currency. Minister for Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri today announced that natural gas has been discovered at the Sri Vijayapuram 3, about 15 kilometers off the east coast of the Andaman Islands. In a social media post, Mr. Puri said the discovery reinforces the vast energy potential of the Andaman Sea and marks another success in the ongoing exploration campaign in the basin. Nepal Foreign Affairs Minister Shishir Khanal arrived in New Delhi today on a three-day visit to India. He is visiting India at the invitation of External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. Briefing media in New Delhi this afternoon, External Affairs Ministry spokesperson Ranjit Jaiswal said that Dr. Jaishankar will hold talks with his Nepalese counterpart tomorrow.
3: With Nepal, we have an expansive agenda from development cooperation to people-to-people ties to trade and investment. So all these ties together will be discussed when the two foreign ministers meet. But on our side, we are keen to further strengthen this multifaceted partnership that we have with Nepal.
1: India today lodged a strong protest with Pakistan regarding the neighbouring country's plans to hold general elections to the so-called Gilgit-Baltistan Assembly in the Indian territories illegally and forcibly occupied by Pakistan. The elections are scheduled for 7th of this month. In hockey, India has defeated Pakistan 5-3 in the semi-final of the Men's Under-18 Asia Cup 2026 in Kakamigara, Japan today to set up a title clash against host Japan. In a high-scoring contest, India held its nerve against its arch rival to seal its place in the final. And that is the end of this news bulletin.
4: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और सात हजार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में 18,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री ने वन मंत्री भूपेंद्र यादव का लेख साझा किया। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरगन ने आकाशवाणी परिसर में पौधा लगाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में किया एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ। और इंदौर में 9 जून से होगा अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन, तैयारियां अंतिम चरण में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर सूरत पहुंचे श्री मोदी ने कहा कि गुजरात ने नवीकरणीय ऊर्जा में कई साल पहले ही बड़े कदम उठा लिए थे और देश का पहला सौर ऊर्जा पार्क भी यहीं के पाटन जिले में लगाया गया था।
1: दुनिया अब हरित युग की तरफ, ग्रीन फ्यूचर की तरफ बहुत ही सावधान हो चुकी है। भारत भी ग्रीन ग्रोथ पर बहुत अधिक काम कर रहा है और इसमें भी गुजरात राज्य है जिसने इस शताब्दी के प्रारंभ में ही सरकार में क्लाइमेट चेंज का

0: अलग डिपार्टमेंट बनाया था और गुजरात के चारणका गांव में भारत का पहला सोलर पार्क भी बनाया गया था।
1: सूरत के बाद श्री मोदी दमन भी जाएंगे, जहां करीब 2,970 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य और विमानन क्षेत्र की परियोजनाओं का उद्घाटन होगा।

0: वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने नई दिल्ली के आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधा लगाया। इस मौके पर उन्होंने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में विश्व पर्यावरण दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 8 श्रेणियों में 11 राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार भी प्रदान किए गए। यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा और रोपे गए पौधों की जियो टैगिंग कर उनकी निगरानी की जाएगी। डॉक्टर यादव ने भोपाल स्थित अपेक्स बैंक परिसर में हरित सहकार अभियान की भी शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कोलारस की चीनी फैक्ट्री को दोबारा चालू करने और किसानों को MSP से अधिक दाम दिलाने का ऐलान भी किया।
1: हॉर्टिकल्चर को प्रोत्साहन देने के लिए मंत्री और बाकी लोग भी सहकारिता के माध्यम से किसानों की समृद्धि का मार्ग खोज रहे हैं। ऐसे में जब हमारी सरकार आगे बढ़ रही तो कोलारस में शकर की फैक्ट्री क्यों नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगेगी और चलेगी भी सही। एक नहीं दो दो लगाएंगे। आप गन्ना भी लगाओ और अब तो पार्वती कालीसिंह चंबल के माध्यम से उधर का क्षेत्र और हरा भरा होने वाला है। लगातार हमारी सरकार किसान समृद्धि के लिए काम कर रही है।
0: वहीं विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश के कई जिलों में पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बैतूल में केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके की मौजूदगी में माचना नदी के घाट पर पौधरोपण और जल संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो झाबुआ में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया की अध्यक्षता में वन विभाग परिसर में वृहद पौधरोपण किया गया। वहीं बुरहानपुर के शाहपुर में नगर परिषद ने 2000 से अधिक पौधे लगाए, जबकि रायसेन में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया गया। नीमच में विधायक दिलीप सिंह परिहार ने ग्रामीणों से खेतों की मेड़ों पर पौधे लगाने की अपील की। गुना में NCC ने जागरूकता रैली निकाली और सिंहवासा तालाब परिसर में जिला प्रशासन ने पौधरोपण किया। जबलपुर मंडल के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसान बताए गए। वहीं देवास, अशोकनगर, इंदौर, शिवपुरी और धार में भी जिला प्रशासन की अगुवाई में पौधरोपण और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने पहले समारोह में 66 लोगों को यह सम्मान दिया जा चुका है। इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कार स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है और अगले महीने की 31 तारीख तक आवेदन किए जा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगरतला के ऐतिहासिक पुष्पबंता पैलेस को हेरिटेज होटल में बदलने की परियोजना का शिलान्यास किया। इस मौके पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह और पूर्व राजघराने के सदस्य प्रद्योत विक्रम माणिक्य भी मौजूद रहे। इस परियोजना से त्रिपुरा और पूरे पूर्वोत्तर में पर्यटन को नई गति मिलेगी। बुजुर्गों के अधिकारों और सम्मान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 जून को प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ जन दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए सामाजिक न्याय विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं। वृद्धाश्रमों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर रैली, नुक्कड़ नाटक, स्वास्थ्य शिविर और सम्मान समारोह जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। युवाओं और बुजुर्गों के बीच संवाद बढ़ाने के लिए अंतर पीढ़ी संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। डिंडौरी के पाटनगढ़ गांव के गोंडी चित्रकारों की कला अब अमेजन ई कारीगर प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया भर तक पहुंचेगी। इसके लिए आजीविका ग्राम संगठन और डॉट्स एंड डैशेस संस्था के बीच MOU साइन किया गया है। गांव के 157 परिवार सीधे इस कला से जुड़े हैं, जिसमें 85 महिला और 72 पुरुष कलाकार शामिल हैं। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि इस कला को GI टैग दिलाने के लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। भोपाल में बाल कल्याण समिति के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए 13 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों के 134 प्रतिभागी 4 बैचों में हिस्सा लेंगे। प्रशिक्षण में किशोर न्याय अधिनियम, मिशन वात्सल्य योजना और संकटग्रस्त बच्चों की पहचान जैसे विषयों पर व्यावहारिक जानकारी दी जा रही है। रायसेन जिले के सेमरी गांव की बेटी अंजना यादव ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। आज उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से समत्व भवन में मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस अद्भुत उपलब्धि के लिए अंजना को बधाई दी और उनके हौसले की तारीफ की। इंदौर में 9 जून से शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। कृषि विभाग के सचिव निशांत वरवड़े ने कल इंदौर पहुंचकर आयोजन स्थलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं

समयबद्ध ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए। इस सम्मेलन में इंदौर को वैश्विक स्तर पर अपनी कृषि और नवाचार उपलब्धियां प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा। प्रदेश में मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए 16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु घोषित की गई है। इस दौरान प्रदेश की सभी नदियों और उनसे जुड़े जलाशयों में मछली पकड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और उल्लंघन पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि ऐसे छोटे तालाब जिनका किसी नदी से संबंध नहीं है उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर में मलेरिया निरोधक माह के अंतर्गत जिला चिकित्सालय परिसर में जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कलाकार्मी द्वारा दो दिवसीय पंडित कुमार गंधर्व समारोह का आयोजन 6 और 7 जून को देवास में किया जाएगा। अशोकनगर कलेक्टर साकेत मालवी ने आज जिले में खाद वितरण व्यवस्था, ई टोकन प्रणाली और जैविक खेती को बढ़ावा देने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। आगरमालवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने वृद्धाश्रम में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया और झाबुआ में 7 जून को समान नागरिक संहिता पर उच्च स्तरीय समिति की जन परामर्श बैठक का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में 18,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री ने वन मंत्री भूपेंद्र यादव का लेख साझा किया। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरगन ने आकाशवाणी परिसर में लगाया पौधा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भोपाल में किया एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ और इंदौर में 9 जून से होगा अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन, तैयारियां अंतिम चरण में। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 7:10 पर। नमस्कार।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनवे बारे हमारे सभी किसान भैया बिन्ना जिज्जी भौजी हरन को रजनी बहन की दो ही हाथ जोड़ के राम राम। भैया हरो, आज है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। आप सभी जनों के विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत ही सारी शुभकामनाएं। आज तो भैया भंसारी से खूब ही बदरा छाए हते। सवेरे जब देहरी झार बुहार के चौका में गए, गैस पे चाय चढ़ाई, तभी तुम्हारे जीजा टहल के आ गए और उतई छज्जा में कुर्सी डार के बैठ गए और बोले, काय बन गई चाय, और अखबार पढ़न लगे। ऐसो नौनो लग रहा हो तो कि का बताएं, हमने मुड़ेर पे नेक चावल के दाना बिखेर दए, सकूरा में पानी भर दाओ, देखो झट्टई चिड़ैया मुनैया आ गई और दानों खान लगी, पानी पियन लगी। घर के सामने आम के पेड़ लगो है, सुबह पे खूब तो कोयलें बोल रही थी और अच्छे बढ़िया हवा चल रही थी, सो आम सोई टपक रहे थे। और सामने शर्मा जी के मकान में तो गुलमोहर को पेड़ लगो है, बाकी तो छटा देखते ही बन रही है। ऐसे फूल खिले तो सुंदर लगा, सवेरे जब हवा चल रही थी उसे ऐसे झूम झूम के नाच रही थी सबरी डाली, और वे जो फूल बिखर रहे थे उनकी देरी पे, सो ऐसा लग रहा हो तो ऊपर से छत पे ऐसे देख के जैसे कि कोनू ने फूलन की रंगोली बना दी हो उनकी छत पे। हमने चाय छानी और जाके छज्जा में बैठ गए, तुम्हारे जीजा के संगे चाय पियन लगे। तभी देखो कि नीचे आंगन में

बड़ी भौजी बेसोई नहा के आ गई और उनने सूरज भगवान को जल चढ़ाओ, तुलसा माता में जल चढ़ाओ, और आंगन में लगे पीपल में भी जो गमला में लगाए हैं सुबह में जल चढ़ाओ, और फिर भागे आंगन में बंदी डोरी पे भी धुल धुलाए कछु उन्ना कपड़ा फैलान लगी। तभी बड़े भैया की कछु बड़बड़ावे की आवाज आई, बोले काय कहाँ चली गई सवेरे से। बोली इतना ही है आंगन में, अब कहाँ जाने हमें, इतना ही जीने इतना ही मरने। बोले तनक चाय तो बना लो एक कप, और बस कछु काम धाम है नहीं है, बैठ गए सवेरे से मोबाइल अखबार लेके, है और चाय बना लो चाय बना लो। सो भैया कहने लगे अब देख लो भैया, रिटायर आदमी की कछु फकत नहीं है, एक कप चाय के लाने भी चार बातें सुनने पड़ती। कौन सी चार बातें सुना दी हमने तुम्हें, भौजी बोली। फिर कपड़ा सुखान लगी, भैया बोले काय जे इतने बड़े बड़े थैला काय की बना ले तुमने। तो बोले अरे तुम जो तुम आओ वो एक नीलो पेंट नहीं रखो तो साल भर से तुमने पैरों नहीं है, सो हमने सोची कि ले आओ जाके अच्छे थैला बना दे, सो सब्जी भाजी ले आवे के लाने, बाजार से सामान ले आवे के काम में आए। बोले जो तुमने हमारे पेंट को थैला बना दो, काय काय बना दो। बोले अरे पर्यावरण के लाने अच्छे है गो, प्लास्टिक पन्नी को उपयोग नहीं करने, देखो ना टीवी पे रेडियो पे सब जने बता था, हमारे प्रधानमंत्री जी तो सोई कहते हैं कि प्लास्टिक को उपयोग नहीं करो, अपने घर के बने कपड़ा के थैला लेके जाओ। सो हमने तुम्हारा जो पेंट रखो तो सो तुमने 4-6 महीना से पैरों नहीं हो तो सो हमने वाके थैला बना दे। भौजी बोली काय तुम ऐसे काय देख रहे हैं हमें। भैया बोले हे भगवान तुमने हमारे अच्छे भले पेंट को थैला बना डारे। भौजी बोली हम कछु पागल नहीं है कि तुम्हारे अच्छे भले पेंट को थैला बनाए। अरे जे तो भी हमारे जो पनागर वाले मौसा जी के मोड़ा के ब्याह में नहीं तुम्हें पेंट शर्ट को कपड़ा में लो तो वही को तुमने 3-4 साल तो पहन लो और अब धरो तो 100 साल से महीना से सो हमने सोची पैरा थो नहीं है सो जाके थैला बनाए दे रहे। भैया बोले हाँ हाँ वैसे भी वो कपड़ा तो बेकार ही सो हतो, अच्छी रहेगी तुमने वाके थैला बना दे। अच्छा तो मतलब जो हमारे मायके से मिलो तो बेकार है तो है ना, अब तुम कह रहे कि बेकार ही है तो अच्छी रही थैला बना रहे। सो भैया हंसन लगे, बोले नहीं नहीं तुम्हारे मायके से मिली सबरी चीज़ें खराब नहीं निकली, एक आध चीज़ें तो बहुत अच्छी निकली। सो भौजी बोली हैं क्या कह रहे, हम जो कह रहे हैं कि तुम्हारे मायके से मिली सबरी चीज़ें खराब नहीं निकली, एक आध चीज़ तो बहुत अच्छी निकली जो 35 साल में भी नई की नई हैगी। और इतने में भौजी मुस्कुराने लगी और भैया से बोली बैठो आते हैंगे चाय बना के।

0: सो भैया बहुत ही इन्होंने जो लोकगीत सुना हमें विनोद सेन भैया ने, सो अबे बातें तो हमारे बहुत सारी करें, लेकिन पहले सुनाते हैं जी संदेश।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: भैया हरो परसों भंसार है गांव में टहल भी करे, सो देखो कि मोहल्ला पुरा के कछु भैया हरे हैं, तालाब किनारे जा रहे थे मछलियाँ पकड़ के लाने, तभी होते बब्बा ने आवाज दी, बोले कायरे मुन्ना कितने जा रहा हो सवेरे से, सो बोले मछलियाँ पकड़ भी जा रहे से, बब्बा बोले तो को समझ नहीं आते का है, अरे तो को मना करी थी ना कि अब हमें जब समय मछलियाँ नहीं पकड़ने हैगी, बोले काय बब्बा काय नहीं पकड़ने हैगी मछलियाँ, अरे बोले तो को बताई थी ना कि जा समय मछलियाँ अंडा देत हैगी, और जा समय अगर मछलियाँ पकड़ ले हो है तो फिर अंडा नहीं दे है तो फिर और मछलियाँ कहाँ से बने है कि नहीं, अरे भैया कोनो बातचीत समझाई जाते हैं, बड़े बूढ़े बताते हैं तो बाको मानने चाहिए, काय से कि हम और उनको पतो है कि जा समय अगर हम मछलियाँ नहीं पकड़े मछलियाँ रहे पानी में, सुबह की वंश वृद्धि हुई है और मछलियाँ बढ़े, और फिर ऐसे ही करे से तो जो हमारो पानी के अंदर जो तंत्र चलत है जाखो की हमारे वैज्ञानिक भैया हरे हो पढ़े लिखे सब जने नहीं क्या जलीय पारिस्थिति की कहते हैं, सो वो सब संतुलित बनी रहते हैं कि जाके लाने हमें ध्यान रखना चाहिए। और भैया वैसे भी सरकार की तरफ से कही गई है कि 16 जून से 15 अगस्त तक हम और उनको मछलियाँ आखिट नहीं करने हैं, मछलियाँ नहीं पकड़ने हैं, और सभी प्राकृतिक नदी नाले बड़े बड़े जलाशय हैं उनमें मछली पकड़ने के लाने उनके खरीद फरोख्त के लाने रोक लगा दी जाते हैं कि जैसे कि हमारी जो मछलियाँ हैंगी वे अच्छी तरह से होते उनके अंडा होए और उनकी वंश वृद्धि होए। सो भैया हरो हमारे बड़े बूझे जो कानून बात बताते हैं सो भी अपने तजुर्बा पे बताते हैं, और भाई खुद तो हमें सीख देते हैंगे, और फिर वही से हमारा भलो होते हैं गो, काय से कि हम देखो विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैंगे आज, काय के लाने मना रहे कि हमारी प्रकृति में हमारे पर्यावरण में एक संतुलन बनो रहा है। हम अपने बड़े बूढ़न को देखाते हैं, हम अपने घर में देखाते हैं सब है कि देखो ना हमारी जो रोज की दिनचर्या आती है, हमारा जो सवेरे से उठवे के जो काम काज को तरीका आता सो वही तो हमें पर्यावरण से जोड़ भी हमेशा जोड़े रखो माने, और बाकी लाने हमें कौन साल में एक दिना मनावे की जरूरत नहीं होती, हम तो हर दिना समर्पित होते अपने पर्यावरण के लाने, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलो और हम दूसरी चीजन पे निर्भर होते गए और हमने

0: जो नहीं सोची कि हम अपने आप को ज्यादा आधुनिक बनावे के चक्कर में अपनी प्रकृति के अपने पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैंगे। अरे हमारे तय तो पूरे जन्म से, जैसी हम औरन को कहते हैंगे कि बच्चा को जन्म होता है सुबह चांद तारे दिखाए जाते हैंगे, हैं फिर कहते हैं कि मांस के सूपा में पारो जाते हैं गो, फिर बाकी बाद जब 10-12 दिन को हो जाते हैं बच्चा सो कहने लगा कि अब हमें वाय प्राकृतिक चीज जो है सबसे पहले जो बच्चा की माँ है बाको हमें देने हैगी, और हमारे तय तो कहने लगा कि कुआ की पूजा करी जात हैगी। फिर हमारे जो बड़े बूढ़े हैंगे देखो सवेरे से सब जने नहा के सूरज भगवान को जल चढ़ाए, हर घर में हमारी तुलसा माता बैठी हैं, सवेरे से उनको जल चढ़ाओ और शाम के उनको दिया रखो, पीपल के वृक्ष लगे हैं उनकी हम औरें पूजा करत हैंगे, बरगद की पूजा करें हम औरें, आंवले के वृक्ष की पूजा हम औरें करें। तो ये सब तो हमारी प्रकृति ने हम जो जोड़वे के लाने हमको प्रकृति से, हमारे बड़े बुरन ने ऐसे नियम ही बना दिए हैंगे कि कछु ना कछु हम पूजा पाठ के माध्यम से अपनी प्रकृति से जुड़े रहें जाके लाने। हमें कोनो एक दिना मनावे की जरूरत नहीं है, जो एक दिना तो हम उनके लाने मना रहे हैंगे कि जो उनको याद नहीं है कि जो प्रकृति हम ही के लाने हैगी। अरे भैया जब हम जब प्रकृति में संतुलन नहीं रख पे हैं, वृक्ष नहीं हुई हैं तो हम सांस के तैसे ले हैं, और जो हम अपनी नदियां गंदी करें, हम अपनी मिट्टी में प्रदूषण करें है कि नहीं, और हम प्लास्टिक को उपयोग करें, प्लास्टिक माने ऐसी चीज की जो सालन बरसन जीखों कितों भी खत्म नहीं होने हैं वो तुम कितों रख दो भाई, तो हमें ऐसी चीजन को उपयोग अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने हैं, अपनी रोजमर्रा की जीवन में बढ़ाने हैं जो कि मिट्टी में मिलके और खत्म हो जाएं। प्लास्टिक के लाने तो बिल्कुल से अब उपयोग करने ही नहीं है। सो भैया सब जने जा बात को ध्यान रखो और संकल्प लो कि हमको अपने पर्यावरण को बचाने हैं। और भैया बाकी बात एक सबसे बड़ी बात और जो कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगाने हैंगे। अब हम इनको संकल्प कैसे ले सकते हैं, मान लो कि हम आज एक पौधा को संकल्प लें, आप जैसे सोचो कि हमारे परिवार में 8 जने हैं 10 जने हैं, अगर हर साल सब जने केवल एक एक पौधा भी लगाए ना तो सोचो जरा अपने जीवन भर में कितने पौधा लग जाए। और पेड़ पौधे लगाओ कौन बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा संकल्प हमें अपने मन में लेने हैं। हम जाके भी तरीका आवे बताए आपको कि कितना सरल है और हम खूब पेड़ पौधा लगा सकते हैं और अपनी धरती माता की चूनर को हरो बना सकते हैं। भैया समय पे बहुत सारी तरह तरह की बातें हम और कराते हैं और अलग अलग विषय पे आपको जानकारी भी दे देंगे। सो पहले तो एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है औषधीय पौधों का प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन, जो विषय है हमारी आज की भेंट वार्ता को, और जहाँ में हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र तिवारी साहब। सो भैया चलो पहले इनसे सुनाते हैं कि औषधीय पौधों का प्रसंस्करण एवं मूल संवर्धन कहा है।
1: भैया रो आज दुनिया भर में औषधीय पौधों और उनके उत्पादों की मांग बड़ी तेजी से बढ़ रही है, जिसकी पूर्ति के लाने कच्चे माल की पूर्ति वनों से पूरी नहीं हो पा रही। इसे इन पौधों को कृषिकरण करके क्षेत्र और उत्पादन दोई में तेजी से बढ़ोतरी तो हो रही है, अकेले हम किसानन को इसकी उचित जानकारी नहीं है। सो यही से उचित प्रसंस्करण मूल्य संवर्धन और व्यापार संबंधी जानकारी देवे आज अपनी चौपाल में आए हैं औषधीय खेती प्रसंस्करण एवं विपणन के विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञानेंद्र तिवारी जी, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से पधारे हैं। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले आपको हमारी चौपाल में स्वागत है और हमारी और हमारे सभी किसान भैया बिन्नुहरन की तरफ से आपको दो ही हाथ जोड़ के राम राम।
2: राम राम सभी किसान भाइयों के हमारी तरफ से राम राम।
1: डॉक्टर साहब वर्तमान में आज औषधीय पौधों की खेती के लाने हमारे किसान भैया हरों को कृषक समूह और कॉर्पोरेट जगत को रुझान काफी बढ़ गया है, फिर भी इन पौधों के उत्पादन को सही मूल्य उन्हें मिल नहीं पा रहा हो, सो इको का कारण हो सका था डॉक्टर साहब?
2: ये बात बिल्कुल सही कह रही हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं लेकिन मुख्य कारण ये है कि हमारे किसान भाइयों को एक तो गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में जानकारी का अभाव है, जो प्रसंस्करण तकनीकें हैं जिनसे कि इसके उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ सके उसकी ट्रेनिंग की कमी है, और सबसे ऊपर ये है कि विपणन संबंधी समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, इनका ये नहीं मालूम है कि कौन सी मंडी में और कैसे हमको बेचना है।
1: और डॉक्टर साहब औषधीय पौधों के उत्पादों के उचित प्रसंस्करण से मूल्य संवर्धन और विपणन से क्या लाभ हो सका था?
2: कटाई के समय उस पौधों के जो पार्ट्स होते हैं जो औषधीय रूप से उपयोगी हैं उसमें नमी की मात्रा 70-85% तक होती है। अब इनको अगर हम बिना प्रसंस्करण किए अगर मंडी में लेके जाते हैं तो पहली चीज तो इसका जो आयतन बहुत सारा घेरेगा जिसके कारण उसकी परिवहन की व्यय ज्यादा आएगी, भार भी

0: ज्यादा होता है। दूसरा ये है कि चूंकि इतनी नमी है, इतनी नमी में उसके फसल के सड़ने की संभावना होती है, ज्यादा समय तक रख नहीं पाते, और उसको अगर हम अपने भंडारण में भी करते हैं तो जगह भी ज्यादा घेरता है और जल्दी खराब हो जाता है। तो अगर हम इसको सही ढंग से प्रसंस्करण करें, धुलाई छिलाई सुखाई जो आपके प्राथमिक प्रसंस्करण है, तो उसकी गुणवत्ता ज्यादा समय तक टिक सकती है और जो उसका उत्पादन और भंडारण का जो व्यय है उसमें भी कमी आती है। और चूंकि ये प्रसंस्करित उत्पाद है तो बाजार मूल्य भी ज्यादा मिलता है। जैसे अभी नहीं बिक पाया तो 6 महीने भी रख सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, का सभी औषधीय जो पौधा होते हैं उन पौधों को कटाई के बाद प्रसंस्करण एक ही तरीके से करो जाते हैं?
0: नहीं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी किसी में पत्ती काम आती है, किसी में तना काम आता है, किसी में बीज काम आता है, किसी में उसकी जड़ काम आती है, और फिर जड़ पत्ती और सारे पार्ट्स का अलग अलग पौधों में अलग अलग तरह के होते हैं। किसी में मोटे होते हैं, किसी में नमी की मात्रा ज्यादा होती है, किसी का छिलका बहुत मोटा होता है, तो सबका एक तरह से प्रसंस्करण नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम एक उदाहरण लेके बताएं, अपनी अश्वगंधा फसल है, सर्वगंधा फसल है, इनकी जड़ें जो होती हैं ये मांसल नहीं होती हैं, तो इनको हमने केवल पानी से अच्छे से धो करके और उसको धूप में डाल के साफ कपड़े में उसको सुखा लेते हैं। लेकिन इसके अलावा जैसे हम सफेद मूसली या दूसरी फसलें लेते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि उनको ज्यादातर समय के लिए उसमें पहले उसकी छिलका जब तक नहीं निकालेंगे तो सूखेगा नहीं, और बेसिक कंडीशन में अगर उसको सुखाने के लिए डालते हैं तो उसके छिलके के अंदर भी फंगस लग जाती है और उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो जाती है।
1: डॉक्टर साहब, सफेद मूसली और सतावर की जड़ों को छिलाई के बाद कैसे सुखाव जाते हैं, इको का कारण है?
0: ये दोनों जो जड़ें होती हैं ये मांसल होती हैं, पानी की मात्रा भी 85-90% तक होती है और इनकी जो ऊपर की परत होती है बहुत मोटी होती है। तो अगर हम उस कंडीशन में इसको धूप में डाल देंगे तो हमको ऊपर से लगेगा कि ये सूख रही है, लेकिन अंदर ही अंदर उसमें जब छिलका छोड़ेगा तो उसके छिलके और उसकी जो मेन जड़ के बीच में फंगस लग जाती है, और फंगस लग जाने से वो काले पड़ जाते हैं, और जब उसको आप मार्केट में लेके जाएंगे तो समझिए कि 1/10 में भी उसको खरीदने को कोई भी मतलब व्यापारी तैयार नहीं होता। इनका छिलका पहले निकालना पड़ता है, उसके बाद फिर इसको धूप में सुखा देते हैं।
1: डॉक्टर साहब, बीज है, पत्ता है और तने हैं, इनके जो उपयोगी भाग हैं, इन उपयोगी भागों वाली फसलों के लाने सोई छिलाई करना जरूरी है का?
0: आमतौर पर जो बीज और पत्ती के जो तने होते हैं, पत्ती होती हैं, इनमें इस तरह की समस्या नहीं होती। इसको अगर बड़ी पत्ती है तो उसको आप काट के सुखा सकते हैं, अदरवाइज ना इनको छीलना पड़ता है ना कुछ करना होता है, इनको सीधे आप पानी से अच्छे से धो करके साफ कपड़े में डाल के और इसको धूप में सुखा सकते हैं। जैसे काल मेघ हो गई, ब्राह्मी, स्टीविया जिसकी मीठी तुलसी कहते हैं, ये 1 दिन धूप में सुखा लें और उसके बाद फिर उसको छाया में सुखाना है। क्यों? क्योंकि पत्तियों का जो हरा रंग जब तक नहीं बना रहेगा तो जब मार्केट में लेके जाएंगे तो उसमें सारी क्वालिटी सब बढ़िया है, लेकिन अगर उसमें हरा रंग नहीं दिख

0: रहा है तो आमतौर पर व्यापारी उससे छिड़कता है कि नहीं नहीं इसकी हम अच्छी कीमत नहीं दे पाएंगे। जो पत्ती वाली हरी पत्ती वाली जो फसलें हैं इनको सुखाने के लिए एक दिन धूप में सुखाएं ताकि उसका पानी मर जाए, उसके बाद फिर उसको छाया में अच्छे से सुखा लें।
1: डॉक्टर साहब का सभी पौधों को प्रसंस्करण के लाने धूप घामे में सुखाव जरूरी है?
0: जो पौधे ऐसे होते हैं जिनमें सुगंध होती है जैसे तुलसी हो गई, लेमन ग्रास हो गई, तो इनको अगर हम धूप में सुखाएंगे तो इनकी जो सुगंध है ये उड़ जाएगी। अब पूरी सुगंध उड़ गई तो इस पत्ती और जो आपकी नीम की पत्ती और दूसरी पत्ती में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, तो सुगंध नहीं रहेगी तो उसका कीमत बिल्कुल ही कम मिलेगी। तो इसलिए ऐसे पौधों को जिसमें सुगंध होती है उनकी पत्तियों को, उनके तनों को, उनकी जड़ों को छाया में और कम तापमान में सुखाना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, छोटे बड़े किसानों को अपने उत्पादों के विपणन के लाने कौन से उपाय करो चाहिए?
0: मध्य प्रदेश के लिए तो एक बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर एक नीमच जिला है, वहाँ की मंडी शासकीय मंडी है और उसमें पूरे भारत के जितने किसान हैं और सब तरह के औषधीय पौधों के, सुगंधित पौधों के उत्पाद को लेके आते हैं, वहाँ सब कुछ बिकता है। इसके अलावा एक मंडी शहादतगंज लखनऊ में है जहाँ पर सतावर और चार पांच और फसलें अच्छे से बिकती हैं, ललितपुर की मंडी है। और एक आज छत्तीसगढ़ में मंडी है, सुगंधित पौधे हैं उनके लिए कलकत्ता में है, बेंगलोर में है, कन्नौज में है, इनकी मंडियां हैं। लेकिन अब छोटे छोटे किसान भाई, अब उनका माल मान लीजिए कि एक टन है तो एक टन के लिए वो कहाँ तक लेके जाएंगे, उनका जो परिवहन व्यय बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो उसके लिए ऑनलाइन ऐप भी हैं, तो एक शासकीय हमारे राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड ने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ई चरक नाम का एक प्लेटफॉर्म दिया है, उसमें किसान भाई अपना नाम, अपनी फसल कौन सी उगाई है इनको और पूरा अपना पता लेके और उसमें डाल देते हैं। तो जितने जो बायर हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो खुद ही संपर्क करके और उनके माल को खरीद लेते हैं, वो सैंपल बुलाते हैं। पहले तो आपको बोलेंगे कि आप इसमें व्हाट्सएप में कर दीजिए कैसा दिख रहा है, उसके बाद फिर आप थोड़ा सा सैंपल भेज दीजिए और उसको भेज के उनके घर से ही, यानी कहना चाहिए कि खेत से ही उनका माल बिक जाता है। इसके अलावा दो तीन और ऑनलाइन ऐप हैं, एक हर्बिकल है, ये भी जो भारत के में जो मंडियां हैं इनसे जुड़ा हुआ है, एक ई नैम है, एक इंडियन हर्ब ऑनलाइन IHO। तो ये दो तीन प्लेटफॉर्म है जो प्रसंस्करण हम कर रहे हैं और मंडी तक लेके जा रहे हैं, चाहे ऑनलाइन में ले जा रहे हैं चाहे ऑफलाइन में ले जा रहे हैं। इनमें मूल्य संवर्धन कैसे करना है इसके लिए भी हम थोड़ा सा किसान भाइयों को बताना चाहेंगे। जिस जिस स्तर से हम इसका मूल्य संवर्धन के लिए करते हैं वैसे वैसे इसकी कीमत बढ़ती जाती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताएं कि अगर हमने अश्वगंधा की जड़ों को सुखाया और एक वैसी की सुखा के जड़ें जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी लंबी छोटी पतली मोटी सब तरह की जड़ को लेके जाते हैं तो उसकी कीमत मिलती है 200 रुपये प्रति किलो। और यही जो हमने उगाया था इसी के तीन चार ग्रेड कर दिए, एक वो जो लंबी और मोटी जड़ें हैं और सीधी सीधी हैं उनको हमने कर दिया, तो वो वाली जो जड़ है वो 350 से 400 रुपए किलो बिकती है। और उसके बाद जो दूसरा ग्रेड आया तो वो तो ज्यादा नहीं रहता है, पहली ग्रेड की ज्यादा रहती है, तो उस ग्रेड की भी जड़ आपकी 300 से 350 के बीच में बिकती है। उसके बाद ग्रेड सी में वो वाली जड़ें हैं जो थोड़ी सी तिरछी मिर्ची होती हैं, वो भी आपके 200 से 250 बिकती हैं। और एक वो जड़ें जिसमें पतले पतले तार टाइप के भी होते हैं, मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो अनुपयोगी हो, वो भी आपकी 100 से 150 रुपए में बिक जाती है। तो जब हम इस तरह से ग्रेडिंग करते हैं, किसान भाई अगर उगाया उसने एक एकड़ में और उसको 35,000 मिलना चाहिए तो उसकी जगह हम उसको 60-70,000 रुपए मिल जाते हैं केवल इतना ही कर देने से। इसी तरह से अगर उसको पाउडर बना दिया तो लगभग 50% उसकी कीमत बढ़ जाती है, 400 की जड़ 600 में बिकने लगती है। और अगर आपने उसमें पैकेजिंग, लेबलिंग, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन और हमने कहाँ से उत्पाद किया, उसका पूरा कब लगाया था, कब उखाड़ा था, क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं, गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो किया है कि नहीं किया है, ये सारी चीज़ें लगा के जब करते हैं तो 1,000 रुपये से 1,200 रुपये में बिकने लगती है।
1: तो डॉक्टर साहब, जात जात हम सोच रहे हैं और चाह भी रहे हैं कि आप हमारे किसानों को इन औषधीय पौधों के संबंध में और कछु जानकारी दे, वो चाहत हो तो जरूर दे।
0: बिल्कुल, औषधीय पौधों की खेती के लिए जब आप खेती करने जाएं तो उसके गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ये पूरा निर्धारित है कि पूरी दुनिया में किस हिसाब से बिकता है, कि हमने कैसी जमीन यूज की थी, उसका सॉयल टेस्टिंग कराई थी कि नहीं कराई थी, हल कैसा यूज किया था, हसिया इन्फेक्टेड तो नहीं था, हमने उसको निकालने के दौरान उसको किस तरह के बोरे, खाद की बोरी में तो नहीं रख दिया। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत मायने रखती हैं। इनका पालन करना है, प्रसंस्करण, श्रेणीकरण, मूल्य संवर्धन, मानकीकरण और ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में उपयोग करके जब आप करते हैं तो आपके उत्पाद का विपणन अच्छी तरह से हो पाता है। इसके साथ में हम एक सलाह और देंगे कि इससे संबंधित औषधीय पौधों की खेती संबंधित किसी भी तरह की समस्या आपको उसके लगाने से लेके उसके क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल से लेके उसकी प्रसंस्करण से लेकर और उसके विपणन तक कोई भी समस्या आती है तो हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड का

0: जो सात पूरे भारत में सात क्षेत्र हैं
1: जी
0: उसमें सेंट्रल क्षेत्र जो है हमारे विश्वविद्यालय में है
1: जी
0: जहाँ पर उस समस्या का त्वरित निदान किया जा सकता है। आप किसी भी समय आके छुट्टी के दिन को छोड़ के आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट भी है,
1: जी
0: उसका भी यूज़ कर सकते हैं, और हमारे यहाँ पर आके आप देखिए तो हम आपको ई चरक के बारे में भी आपको डिटेल में विस्तृत जानकारी दे देंगे।
1: तो डॉक्टर साहब, आप हमारे चौपाल में आए और हमारे किसान भैयानों को इतनी उम्दा जानकारी दी, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद किसान भाइयों।
2: जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से डॉक्टर ज्ञानेन्द्र तिवारी साहब ने हमें बताई औषधीय पौधों का प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन। और भैयारों अभी सुनत हैं जे कछु संदेश, फिर करें और खूब सारी बातें।

0: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
1: यारो देखो, मौसम और जलवायु जाके बारे में तो हमने जानकारी ले ली, लेकिन जो मौसम और जो जलवायु जा सब में संतुलन बनो रहे, जाके लाने जरूरी है। सबसे ज़्यादा काय की लाने जरूरी है, पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। पर्यावरण संरक्षण का है, पर्यावरण संरक्षण माने जो जो प्रकृति हमें मिली है, जो पेड़ पौधा हैं, हमारी धरती है, हमारे पशु पक्षी हैं और खुद हम और भी हैं, हमारी नदियां हैं, तालाब हैं, तालाब में रहने वाले जीव हैं, मतलब सबको संरक्षण करवो, सबको स्वस्थ रखवो, सबको बचावो, जो ही है पर्यावरण संरक्षण। सो जो कौनू अभियान नहीं है कि जो कौनू सरकारी अभियान है कि हम और अन्य कही कि चलो एक झंडा ले लो हाथ में और लेके हमने कर गए कि हमें पर्यावरण को बचाने, हाँ जो कौनू जो तो एक संकल्प है, जैसे हमें जीवन अपनो बचावे के लाने, जिंदा रहवे के लाने, हर पल सांस लेने हैं। बस ऐसे समझ लो कि हर पल हमारे अंदर हम कौनों भी काम करते हैं तो हमें जो ध्यान रखने हैं कि हम जो भी कछु करवे जा रहे हैं, सो जैसे हमारे पर्यावरण को फायदा होने कि नुकसान होने है कि नहीं। जैसे कि मान लो हम कौनों भी चीज़ है अपने घर के, अब अगर हम बात करें मान लो कचरे की बात करें, अपने घर के कूड़े की बात करें, तो हमें जो सोचने हैं कौनों भी कूड़ा इतने उतने फेंकने नहीं है, हमें पहली बात तो बाहर निर्धारित स्थान पर डालने हैं, फिर बाकी बात हमें जो भी ध्यान रखने हैं कि हमारे घर से ऐसा कौन सा कचरा निकल रहा होगा, ऐसा कौन सा कूड़ा निकल रहा होगा जो वापस हमारे काम में आ जाए। अब आप कहोगे बिना कूड़ा का काम ही आए भैया, आप और उनसे ज़्यादा को जाना थे, अरे हमारे घर के फल सब्जी के छिलका निकलते हैंगे रोज, और हम जौन पूजा में फूल से चढ़ाते हैंगे वे हमारे रोज के निकलते हैंगे, फिर बाकी बात हमारे आंगन में पेड़ लगे हैंगे पौधे उनकी निकलती हैंगी, तो जो सब हमें फेंकने नहीं है, हम तो अपने घर में हमारे कच्चे घर हैं, जमीन है हमारे पास, हम कौन ऐसी जगह बनाएं कि होता गड्ढा खोद के ये सभी चीज़ें गाड़ जाएं, दबा जाएं, है कि नहीं। और बाकी बात फिर कौनों भी प्लास्टिक पन्नी का उपयोग नहीं करने, जैसे कि हम कार्यक्रम की शुरुआत से ही बता रहे, भौजी ने थैला बना रहे सो आप और भी बनाओ, लेकिन भैया को कि नए कपड़न के ना बना लगे थैला, है कि नहीं। और बाकी बात फिर कौनों भी हमें ऐसी चीज़ को उपयोग नहीं करने हैं कि जो उनकी हमारे पर्यावरण को नुकसान हो, जैसे कि हमारे खेतन में है तो हमें कौनों रासायनिक खाद को उपयोग नहीं करना, जैविक खाद को उपयोग करने हैं। फिर बाकी बात हम अब जो खोदा बिजली की बात करें हम, है ना, तो हमें बिजली की बचत करने हैं। फिर बाकी बात हमें जल की, पानी की तो भैया बहुत ही बचत करने हैं। कब तक हम धरती माता को जो है धरती को खोद खोद के

बोरिंग कर करके पानी बहाते रहें। जब हम जल को बचाएं, हम वृक्ष को बचाएं और नए वृक्ष लगाएं, तब जाके हमारे पर्यावरण की रक्षा हुई है। अब नए वृक्ष कैसे लगाएं? देखो, बहुत छोटी सी और बहुत सरल बात है, बस बात सिर्फ संकल्प करने की। एक छोटी सी बात बता रहे, पिछली साल है की बात है, गर्मियों में बेल को शरबत बनाता थे। सुबह बेल के जितने भी बीज बच्चे निकलते, छानो शरबत, और जो बीज और गूदा बनो, सो ऐसो ही हमने वहां निकाल के और कूड़ा कचरा के संगे धर दो। अबे तुम्हारे जीजा चले, सो उनने वे का करो, वे सबरे बेल के जो बीज आते वे उठाए और एक खाली गमला धरो तो घर में, और सो वे बीजा वहां में डार दें, ऊपर से वहां में मिट्टी पूर दें। एक बरसात में जब पानी आनी बरसो, सो हमने देखो जो ये खाली गमला रखो तो जामे काय के अंकुर फूटे दिख रहे। हमने की काय जी, जामे का लगा दो, ये छोटे छोटे अंकुर दिख रहा है। सो ही हंसन लगे, बोले वो जो तुम खूब बेल को शरबत बनाती ना, बेल के बीजा निकलते, सो बोले तुमने तो फेंक रहे थे कचरा में जी, हमने सबरी देखो जा गमला में डाल रहे थे, अब भी छोटे छोटे से अंकुर आ गए बेल के, जो तो बहुत ही अच्छो काम करो। फिर वे अंकुर थोड़े से और बड़े दिखने लगे। सो फिर उनने बड़ी होशियारी से खुरपी से वे बाजार से कछु बगीचा में लगा के लाने पौधा ले आए थे, सो उनके भी काले काले पैकेट में नर्सरी के भी हो गए थे खाली। सो उनमें मिट्टी भर के उनने भी सबरे एक एक एक एक एक एक करके वे पूरे बेल के अंकुर जितने आए थे, वे छोटे छोटे पौधा बड़ी सावधानी से होशियारी से लगा के वो एक कोने में धर दे, वो बढ़िया उन्हें सींचत रहे साल भर के। आज सांची बता रहे भैया, सवेरे हमने देखी कम से कम 20-22 बेल के पेड़ तैयार हैंगे घर में, इतो नौनो लगो देख के। तो हमने कही खा जी, तो कितने सुंदर हो गए, हम तो बहुत दिन से देख ही नहीं आती जाता। पे बोले तो ही नहीं होगा, बोले तुम जैसे मंदिर में ढारवे जाती ना शंकर जी, बोले जाके देखिए वो तो क्यारी में, बोले तुम्हारे बीज हम उतरे भी डार के आए थे। साँचो हम तो सोच रहे थे बेलपत्री के पेड़ कहाँ से हो गए आए, बोले जी तो अपने ही घर के सबरे बेल के जो बीज बचते हुए डाले आते हम। हमने देखो जो तो छोटी से कछू नहीं करने पर हो और बैठे ठाणे, देखो जरा बेल के कैसे 20 पेड़ तैयार हो गए हैंगे। भैया छोटी सी बात है, अरे सब जने आम खा रहे हैंगे, अरे एक एक गुठली जो है वो देख लो, बगीचा है हमारे घर में, खाली गमला रखी उन्हें लगाओ, जितने भी मान लो मंदिर बन रहा हो कि तू नई कॉलोनी बन रही है, क्यारियन में जाओ लगवा दो, और बस जो ध्यान रखना कि उतने उन्हें पानी डलत रहा है, खाद पानी मिलत रहा है, खुद भी इतने होते घूम में जाते हैं। अरे मैं हफ्ता में एक चक्कर होते लगाया होगी हमने जो पौधा लगाओ, तो बाकी का हालत है जो पर्यावरण दे, बस पौधा लगा के फोटो खिंचवावे के लाने भर नहीं है, जो जाके लाने हैं कि हम जो पौधा लगा रहे बाकी रक्षा भी हो। सो भैया हमने तो आपको तरीका बता दो, अबे बरसात आ रही जामुन क्या हो, सो बाकी गुठली भी निकले, सो भैया बचा लगा जाइयो पौधा, हो देखियो फिर अगले साल के कितने सारे पौधा हो जाए, है कि नहीं। और देख लो जी हमारी सारिका नायक बिन्नू है, जो ये तो खुद बता रही हैंगी कि हम और उनको खूब ही पौधा लगाने हो कैसे लगाने।

सो भैया देखो, सारिका बिन्ना ने तो हमौरन को कितने अच्छे से बताई कि हमौरन को नए वृक्षा लगाने हैं, और नए वृक्षा लगा के कैसे हमौरें अपनी धरती को, अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो भैया हरों, आज को जो कार्यक्रम है आप औरन ने इतने प्रेम से सुनो, और आप औरन ने कौन कौन सी बातें सीखी और समझी हमें चिट्ठी लगा लिख के जरूर बताइयो। और हमें बहुत खुशी हुई है कि जब अगले साल पर्यावरण दिवस के दिन आप हमें बताए हो चिट्ठी करके, लिख के और फोन करके हमें बताए हो कि आप और हमने कितने नए वृक्ष लगाए हैंगे, और अपने पर्यावरण को बचावे के लाने कौन कौन से प्रयास करे हैं। अब विदा देव रजनी बिन्ना को, आप सभी को हमारी राम राम, जय जवान जय किसान।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष महिला सशक्तिकरण।
1: This is Akashwani. In the special series, 12 Years of the Modi Government, now we bring you an exclusive interview with Bharat Kheda, Secretary, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, on major reforms and initiatives for the growth and empowerment of MSMEs.

0: नमस्कार,
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
2: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए

0: विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इसे गंदे

0: पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि BSF जहां जहां है, SSB जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट दिए जाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर

0: भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
1: The negotiating team which came from
2: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
1: With Nepal, we have an expansive agenda.
2: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपने इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुग्यानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए। शाहरुख अली ने

0: एक गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर कर्नाटक महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects in Gujarat and Daman. Prime Minister emphasizes on self-reliance in energy sector, says India actively leading towards green future by balancing economic growth and ecological preservation. Country's GDP growth rate estimated at 7.7% in 2025-26 following strong momentum by the economy. Home Minister Amit Shah says smart border project in its final execution stage, pilot rollout to be introduced next year at sensitive border locations. Southwest monsoon advances further into more parts of Arabian Sea, Goa and Karnataka. And in hockey, India enter final of men's under 18 Asia Cup, beating Pakistan 5-3 in semi-final at Kakamigahara in Japan. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat today, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial one-fifth of the nation's green energy share. He said the current global energy crisis highlights the critical importance of self-reliance in energy. He said the world is gradually progressing towards a greener future and India is actively contributing to this transition.
2: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था। आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city.
2: Surat sirf swachhta aur circular economy tak hi simit nahi hai, balki green growth ke dusre madhyamon ka bhi abhutpurva gati se vistar ho raha hai. Surat aisi vyavastha banane mein juta hai jahan sadkon par chalne wali sari basein electric hongi. Saath hi yahan Surat metro ka bhi vistar ho raha hai. ये सारे कदम हरित शहर के रूप में सूरत की पहचान को और सशक्त करेंगे।
1: After reaching Surat this afternoon, the Prime Minister first visited Hazira and reviewed the ongoing industrial and infrastructure operations. Later in the evening, Mr. Modi launched various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. These projects include major healthcare and aviation infrastructure.
2: आज भी यहाँ कनेक्टिविटी, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसे जुड़ी अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। विकास के ये काम दमन और पूरी यूनियन टेरिटरी के लिए यहाँ के लोगों के जीवन को आसान बनाएंगे। इनसे युवाओं के लिए नए अवसर तैयार होंगे।
1: Prime Minister Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a robust 7.7% growth in the fiscal year 2025-26 despite a global economic crisis.
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: India's economy has maintained a strong momentum in 2025-26 with real gross domestic product GDP estimated to grow by 7.7% in comparison to 7.1% in 2024-25. The Ministry of Statistics and Programme Implementation today released the provisional estimates of annual GDP for the financial year 2025-26 and quarterly estimates of January to March this year. It said the primary sector has observed 3.2% growth rate, mainly driven by the performance of agriculture and fisheries sectors. Addressing a press conference in New Delhi today, Secretary, Ministry of Statistics and Programme Implementation Saurabh Garg said, gross fixed capital formation recorded a robust growth of 8.2% in 2025-26.
3: Gross fixed capital formation, which represents the investment in the economy, that has been remarkable 8.2% in 25-26, increasing from 6.4% in 24-25. And gross fixed capital formation indicates that perhaps future growth should also be robust because it signifies the investment in the economy.
1: Speaking on the occasion, Chief Economic Advisor Dr. V. Anant Nageshwaran said the government has taken several proactive measures to maintain macroeconomic stability amid global uncertainties.
4: We are obviously very pleased with the growth outcome. It only confirms what we believed on February 27, that the Indian economy was actually in a pretty strong Goldilocks situation with good growth, moderating inflation and a fiscal deficit coming down, etc. So these numbers show that there is an underlying strength and resilience to India's macroeconomic trends. And we are heartened to see that the high frequency data have confirmed that this momentum has continued into the new financial year so far.
1: The Reserve Bank of India has kept key interest rates unchanged for the second consecutive monetary policy review in the current financial year. Announcing the bi-monthly monetary policy today, RBI Governor Sanjay Malhotra said the Monetary Policy Committee has unanimously decided to retain the repo rate at 5.25% while maintaining a neutral policy stance. The RBI has revised its GDP growth projection for the current financial year downward to 6.6% from the earlier estimate of 6.9%. The central bank has also raised its inflation forecast to 5.1% from 4.6%. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneair.gov.in and download the News on AIR app. Union Home Minister Amit Shah has said that the Smart Border project is in its final execution stage, with a pilot rollout planned next year at 7 to 8 sensitive locations along borders guarded by the BSF and SSB. Addressing the Prahari Sammelan at Lankamura border outpost in Tripura today, Mr. Shah said the project will integrate advanced technology, Jawans and local civil administration to create an impenetrable border management system.
5: We have decided to develop smart borders wherever the BSF and the SSB are deployed under a four-pronged security.

ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। श्रोताओं, रात के 9:30 हुए हैं। लीजिए, आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। इसके तहत सबसे पहला गीत हम आपको सुना रहे हैं फिल्म मेरा साया से, लता मंगेशकर की आवाज़ है और मदन मोहन का संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं फिल्म सागर से। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं, संगीत है आर डी बर्मन का।

श्रोताओं, फिल्म संगीत में अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म सलामी से। कुमार सानू की आवाज, साथ में है अलका याग्निक, नदीम श्रवण का संगीत।

आकाशवाणी जबलपुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, अगला गीत हम आपके लिए लाए हैं फिल्म 1-2 का 4 से। लता मंगेशकर और सोनू निगम की आवाजें हैं, महबूब के बोल हैं और संगीत है AR रहमान का।

आकाशवाणी जबलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म नायक से। उदित नारायण और अलका याग्निक ने इसे गाया है, ए आर रहमान का संगीत है और आनंद बख्शी के बोल।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। रात के 10 बजे हैं, हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है आपके लिए शास्त्रीय संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत, हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात के 10:30 बजने वाले हैं कुछ ही देर में, कार्यक्रम मन भावन का प्रसारण बस कुछ ही देर में।

कार्यक्रम मन भावन आप सुन रहे हैं, ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म ओम शांति ओम से सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ें थीं, जावेद अख्तर के बोल थे, विशाल शेखर का संगीत था। और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद थे ग्राम पंचायत बठेना से बालकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, रेखा वर्मा, साथ ही चटौदा सारा गांव से सुजान वर्मा, सुहाद्र वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा। चलिए बढ़ते हैं आगे कार्यक्रम में। अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं फिल्म हेलो ब्रदर से। उदित नारायण, अलका याग्निक ने इस गीत को गाया है।

इस साजिद वाजिद का संगीत है, बोल है फैज़ अनवर के, और सुनना चाहते हैं इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। लीजिए आप सबकी फरमाइश पर यह गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम मन भावन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जबलपुर से। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म नसीब से। उदित नारायण, अलका याग्निक ने इस गीत को गाया है नदीम श्रवण के संगीत में, बोल है समीर के। सुनना चाहते हैं गढ़िया मौजे उस्तु से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन मंडल, करीना कुमारी, पूजा कुमारी, आरती कुमारी और सुनीता देवी।

कार्यक्रम मन भावन आप सुन रहे हैं श्रोताओं, यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसको सुनना चाहते हैं रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, संजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल, विवेक, सपना, शिवी, सलोनी, राजू और पेंटर बाबू, श्री तुलजा भवानी माता वार्ड खंडवा से अनिल, मंगला, शोभित, उदयनगर से मोहित, स्वाति, मानसवी। आप सभी श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म ओम शांति ओम का ये गीत, जिसे गाया है केके ने, विशाल ददलानी का संगीत है। और इस गीत को जो है संगीत से संवारा है विशाल शेखर और शेखर रमजियानी ने। लीजिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनिए फिल्म पाप से, राहत फतेह अली खान ने इसे गाया है। सुनने के ख्वाहिशमंद कुंदानगर खरगोन से ध्रुवास, सुनीता, खुशी, प्रियांश, आशीष, पूनम, कृष्ण और शुभम।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जबलपुर से कार्यक्रम मन भावन। कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म हेलो ब्रदर से, और इस गीत को गाया है कुमार सानू, अलका याग्निक ने, हिमेश रेशमिया का संगीत है, सुधाकर शर्मा के बोल हैं। गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं खंडवा से शिवांश कुमार, सुभाष, राजेश कुमार, अंजलि, संदीप कुमार, माधुरी, पिंटू कुमार एवं जयश्री। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर लीजिए, सुनिए ये गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम मन भावन अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही समय में रात्रि के 11 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: मेरी पायल।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एक

एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: depth of 5 kilometers. Due to the shallow depth, the tremors were distinctively felt in and around the region. There are no immediate reports of any loss of life or damage to property. Authorities are closely monitoring the situation and further details are awaited. And that is the end of this news bulletin.
1: Frequency modulation 102.9 MHz, medium wave 374.5 meter, अर्थात 801 kHz एवं न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। श्रोताओं, रात के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की अंतिम प्रसारण सभा के कार्यक्रम अब समाप्त होते हैं। हम आपसे फिर मुखातिब होंगे कल सुबह 5:55 पर हमारी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ। जब तक दीजिए इजाजत,

प्राइमरी स्टूडियो प्राइमरी ऑन एयर मिल रहा है। प्राइमरी स्टूडियो की घड़ी में अभी 5:16, 5:17, 1, 2, 3, 4 सेकेंड हो रहे हैं। कंसोल की घड़ी में 5:16, 36, 37, 38 सेकेंड हो रहे हैं। वर्क स्टेशन नंबर 1,

0: వర్క్ స్టేషన్ నెంబర్ 2.
1: क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है?
0: मिल रहा है, ऑन एयर मिल रहा है.